मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी इंदौर है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि तदनुसार 8 मई 2026 है। 5:57 होने को है हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं 6 बजा चाहते हैं समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है।

0: उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

जब प्रातःकाल की पहली किरण आकाश के द्वार पर दस्तक देती है तो केवल दिन का आरंभ नहीं होता, एक नई आशा जन्म लेती है। जब मंदिरों की घंटियां बजती हैं, जब पक्षियों का कलरव सुनाई देता है, जब मन कुछ क्षण शांत होकर स्वयं को सुनने लगता है, तभी जीवन की वास्तविक लय प्रारंभ होती है। भारतीय संस्कृति ने हर प्रभात को केवल समय नहीं माना, बल्कि एक वरदान माना है। कहा गया है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात प्रभात का प्रत्येक क्षण समृद्धि, ज्ञान और ईश्वर स्मरण का अवसर है।

मनुष्य को ईश्वर ने अनेक वरदान दिए हैं, पर उनमें सबसे अनमोल है वाणी। वाणी से हम हृदय जीत सकते हैं और वाणी से संबंध तोड़ भी सकते हैं। एक मधुर शब्द किसी टूटे हुए मन को संभाल सकता है। एक कठोर वचन बरसों की निकटता को दूर कर सकता है। इसीलिए संतों ने कहा, पहले बोलो नहीं, पहले सोचो। जहाँ वाणी में करुणा है, वहाँ ईश्वर की उपस्थिति है। यदि हमारे शब्द किसी को साहस दें, प्रेरणा दें, शांति दें, तो वही सच्चा जप है।

जीवन में आने वाली कठिनाइयां सदैव बाधा नहीं होती, कभी कभी वही हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती है। बीज यदि मिट्टी में दबे नहीं तो अंकुर नहीं बनते, पत्थर यदि तराशा न जाए तो प्रतिमा नहीं बनता, मनुष्य यदि संघर्ष न करे तो उसका सामर्थ्य प्रकट नहीं होता। कठिन समय हमें तोड़ने नहीं गढ़ने आता है, इसलिए जब जीवन में चुनौती आए तो घबराइए नहीं, समझिए कि ईश्वर आपको और ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहे हैं।

आज का मनुष्य सब कुछ तुरंत चाहता है, फल तुरंत, सफलता तुरंत, उत्तर तुरंत। पर प्रकृति हमें सिखाती है कि महान चीजें समय लेती हैं। फल पकने में समय लगता है, ऋतु बदलने में समय लगता है और व्यक्तित्व निखरने में भी समय लगता है। यदि प्रार्थना का उत्तर देर से मिले तो ये मत समझिए कि उत्तर नहीं मिलेगा। कभी कभी ईश्वर देर इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमें उससे भी बेहतर देने की तैयारी में होते हैं। प्रतीक्षा कमजोरी नहीं, परिपक्वता है।

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसने कभी केवल अपने लिए नहीं सोचा। हमारे ऋषियों ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, यह संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। जब सोच सीमित होती है तो संघर्ष जन्म लेता है, जब सोच व्यापक होती है तो शांति प्रकट होती है। यदि हम अपने परिवार से आगे बढ़कर समाज के लिए सोचें, समाज से आगे बढ़कर राष्ट्र के लिए सोचें और राष्ट्र से आगे बढ़कर मानवता के लिए सोचें, तो यही सच्चा धर्म है। आज संसार को अधिक शक्ति नहीं, अधिक संवेदना की आवश्यकता है, अधिक संपत्ति नहीं, अधिक सद्भाव की आवश्यकता है।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: ये आकाशवाणी इंदौर है, प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
2: समायोजन है दो या अनेकों के बीच में बेहतर तालमेल। हम भी खुश रहें, आपकी भी खुशी बनी रहे और हम सब आपस में एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते रहें, यही समायोजन का सूत्र है। ये सूत्र हमारे जीवन को सुखद एहसासों से ओतप्रोत करते हैं, हमारे रिश्तों संबंधों में समरसता पैदा करते हैं और हमारे निजी व आंतरिक जीवन में उमंगों के पुष्प खिलाते हैं। सामंजस्य के अभाव में पारिवारिक विघटन, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, कलुषता, वैमनस्यता आदि का विश्वपन होता है और जीवन इतना दुर्लभ हो जाता है कि न तो जिया जा सकता है और न इससे बचा ही जा सकता है। सामंजस्य एक कला है, इस कला से व्यावहारिक जगत तथा आंतरिक जीवन दोनों में सफलता पाई जा सकती है। जिंदगी में सामंजस्य का महत्व बहुत है। जिंदगी को नदी की मर्यादित धारा के समान बहना चाहिए, इस धारा में हमें बहना ही पड़ेगा। इसे मोड़ना मरोड़ना असामान्य कार्य है जो असामान्य के लिए कठिन है। हमें जिंदगी के साथ चलना पड़ता है, जिंदगी अपनी शर्तों पर नहीं चलेगी, इन शर्तों को निभाना ही सामंजस्य है। अगर यह निभती नहीं है तो इसका मुख्य कारण है हमारा कठोर अहम और सघन स्वार्थपरता। ये दोनों तत्व सामंजस्य की कोमल एवं उर्वर भूमि को बंजर बना देते हैं और इस बंजर भूमि में मानवीय रिश्तों के प्रति संवेदनशील पहलू जरा जीर्ण अवस्था में पहुंच जाते हैं। सामंजस्य के इस हरितिमा संवर्धन के लिए हमें धैर्य, क्षमा, सहनशीलता, उदारता, सहयोग, सहकार जैसे गुणों की आवश्यकता पड़ती है। सहनशील व्यक्ति किसी के साथ भी निभा सकता है, जिसे सहना आता है वह तालमेल कर सकता है। सहनशीलता आंतरिक गुण है, अनेक कष्ट कठिनाइयों के धैर्यपूर्वक सहने पर आंतरिक समरसता पैदा होगी, क्योंकि मन की पीड़ा एवं भावनात्मक चोट से व्यक्ति तिल मिला उठता है और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वह उत्तेजित हो जाता है। व्यवहार में उत्तेजना अर्थात अनमोल एवं निरर्थक बातें करना तथा कटुक्ति करना, इससे संबंधों में खटास आती है, रिश्ते बिखरने लगते हैं। इसी प्रकार के व्यवहार का सामना हमें औरों से करना पड़ सकता है, अतः ऐसे व्यवहार को हमें क्षमा करना आना चाहिए, क्योंकि हम अपने व्यवहार के लिए दूसरों से क्षमा की अपेक्षा रखते हैं तो हमें भी उसे क्षमा करना चाहिए। क्षमा से उदारता पनपती है, उदार व्यक्ति क्षमाशील होता है। सामंजस्य के मामले में सबसे पहले स्वयं अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं से तालमेल बैठाना पड़ता है, मन का इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का देह के साथ और उच्च स्तरीय अवस्था में देह, इंद्रिय और मन का उच्च स्तरीय चेतना के संग तालमेल रखना पड़ता है। सुने ऐसा जो हमारे बड़प्पन के योग्य हो, फिर अप्रियजनों के प्रति अपने जिह्वा से निंदा रस के प्रवाह के लिए भी अवसर की तलाश की जाती है। अमर्यादित ढंग से इंद्रियों के इस क्रिया व्यापार में बेमेल मन की तरफदारी करते ही समस्याओं का मेला लग जाता है, इससे आंतरिक तालमेल में व्यतिक्रम आता है। इसके ठीक विपरीत सुनियोजित संभव हो तो व्यक्ति बाहर भी समायोजन कर सकता है। व्यक्ति रिश्तों एवं परिस्थितियों से सुमेल बाह्य समायोजन कहलाता है। रिश्तों को निभाने के लिए आवश्यक है रिश्तों की सौदेबाजी न की जाए, स्वार्थपरक सौदेबाजी से रिश्तों में स्थायित्व नहीं रहता है, ये जल्दी ही टूटते बिखरते हैं, क्योंकि रिश्तों को हम अपनी शर्तों पर चलाना और थोपना चाहते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, समायोजन का महत्व, इस विषय पर आलेख के वाचक थे मुकाम सिंह चौहान। ये आकाशवाणी इंदौर है।
0: Thank you. एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: ये आकाशवाणी इंदौर है, खेती की बातें। लीजिए इस कार्यक्रम में सुनिए मूंग की देखभाल। इस विषय के आलेख की वाचन कर रही है अनुराधा शर्मा।
3: सभी किसान भाई बहनों का डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों ने आज अपन बात कराएं मूंग की देखभाल का बारे में। 60 से 65 दिन की अवधि में पकने वाली मूंग की फसल बंपर मुनाफो देने वाली एक दलहनी फसल छे। अपन मानी ने चला कि 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ का हिसाब से एक ही पैदावार किसान भाई बहन का मिली जाए न। गर्मी का मौसम में जिन्ना भाई बहन ने 15 मार्च का बाद से एक लगाई दीज अमा उनकी देखभाल करने की बात छे। अभी हमारा किसान भाई बहन की फसल 20 से 25 दिन की हुई गई है न एकालय उनका वहाँ सिंचाई की आवश्यकता छे। फूल आने से पहले 12 से 15 दिन का अंतराल पर 4 से 5 हल्की सिंचाई की आवश्यकता रहे। फूल आने की अवस्था जगह अपन फ्लावरिंग स्टेज कवाज उना समय पानी देनु बहुत आवश्यक छे। लेकिन जब फली न पकना लगी जाए तब सिंचाई अपन का बंद कर देनु चाहिए। खरपतवार नियंत्रण की बात करा तो बुआई का 15 से 20 दिन के बाद पहली निंदाई न 40 से 45 दिन के बाद दूसरी निंदाई गुड़ाई बहुत आवश्यक छे। बदी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तो खरपतवार नाशक नो को प्रयोग करो, नहीं तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हाथ से निंदाई गुड़ाई आवश्यक रहेगा। मूंग का पौधा दलहनी परिवार से संबंधित छे न। आमतौर पर एक पौधा 2.5 फीट से ऊंचा हुई सकज न कभी कभी अलग अलग किस्म न ये ऊंचाई कम ज्यादा भी हुई सकज। अमा बात करांज अपनी बढ़ती हुई मूंग की फसल की देखभाल की ना तरीका सी करा ओका बारा में, क्योंकि अमा 3 महीना में अपुन का भरपूर फसल मिलना वाली छे। एका लेना एक देखभाल बहुत आवश्यक छे। अपुन जानान की मूंग की फसल गर्म मौसम की फसल छे। एका लेना इना समय ये को लेना अनुकूल मौसम छे। 6 से 7 घंटा की धूप मूंग की फसल का लेना आवश्यक छे। पर एका ज्यादा यदि रहेगा तो अपना पौधा झुलसी सकज। अपन जानान की मूंग की फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसल छे। एका पौधा जी छे वातावरण से नाइट्रोजन का लेना ना जमीन में स्थिर कर दे। एका लेना एका नाइट्रोजन उर्वरक न की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। फिर भी यदि अपन भरपूर पोषक तत्व न सी जैविक खाद को उपयोग करांगा तो अपना खेत का लेना ही अच्छो रहेगा। ये हमारा किसान भाई बहुत अच्छी तरह से जाना जी इन्हीं बात का कि मूंग की खेती का लेना पानी की आवश्यकता रज। लेकिन अच्छी बात ये भी छे कि एका में मध्यम स्तर की सूखा सहनशीलता भी रज। एकासी सूखा मौसम में भी हमारा ये पौधा अपना साथ दे देज न। छोटा छोटा परिपक्व पौधा की तुलना में अपन देखी रज कि बड़ा पौधा का थोड़ा सा पानी की ज्यादा आवश्यकता रज। पर सूखा सहनशील होने का कारण कम पानी में भी अच्छो उत्पादन देज। जब मूंग का पौधा नखा पानी देना की बात आवज तो इन्हीं बात का किसान भाई बहन का बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पानी पत्ती न पर जमानी होए, क्योंकि पत्ती न में जमा होएगा तो कम फफूंद रोग न की संभावना बढ़ जाए। तो किसान भाई बहन इन्हीं बात को ध्यान रखी न कि पौधा की जड़ में सीधो पानी ना खा। एका लेना वो अच्छा तरीका की जी सिंचाई व्यवस्था छे कि भाई ड्रिप सिंचाई को उपयोग भी करी सकज, ये भी एक अच्छो विकल्प छे। कुल मिलाना ना अपन का ये समझना की बात है कि मिट्टी का नम बनाई ना रखनु पर उसका बहुत ज्यादा गीलो नहीं करनु है। तापमान की बात करा तो मूंग की फसल उच्च तापमान का भी सहन कर ले, मतलब अपन आसो समझी सकान कि 36 डिग्री से लेन ना 46 डिग्री तक को तापमान जी छे वो मूंग की फसल में सहन हुई जाए। पर एकासी कम तापमान में उको उत्पादन गिरी जाए। मूंग की छटाई करनु बहुत आवश्यक छे। आप इन्हीं बात का समझो कि सूखा न क्षतिग्रस्त जी पत्ता ओका पर लगेल रहेगा ओको हटाउनु न की छटाई करनु एकासी काई होएगा कि पौधा न की आवश्यक जी उपज छे वो अपन न का मिली जाएगा। फसल कटाई की बात करा तो जब मूंग की फली न लगभग 5 इंच या 12 सेंटीमीटर लंबी हुई जाए तो उनको रंग पीलो भूरो या कालो हो जाए तो अपन समझी जावा कि अपनी मूंग की फसल कटाई करना वह तैयार छे। पकी हुई फली न करना जो काम रोआ छे वो अलग हो जाएगा। अगर हरी छे तो अभी थोड़ो अरु समय उनका लगेगा। हमारा किसान भाई बहन इन्हीं बात का जाना कि मूंग की सब फली ने एक साथ नहीं पकना की पकना में उनका समय लगेगा, अलग अलग समय पर पकड़ेगा तो एक लेना उनका तोड़ी लेवा या अपन पूरी बेल का भी उखाड़ी ना एक ठंडी सूखी जगह पर उल्टी लटकाई सकाज। फली नमसी बीज गिरना लगी जाएगा उनका पकड़ना का लेना उनका अवेयर ना का लेना नीचे कपड़ों या अखबार बिछाई देवा। कुछ फली ना अभी भी पाकी रही एका माँ उनको थोड़ो सो समय लगी सकज। ठीक से सूखेल मूंग या अपन अच्छे तरीके से उसको सुखाड़ी ली तो उनका संग्रहित करना रखी देवा ये कई वर्ष तक चली सकज। किसान भाई बहन गर्मी की मूंग की फसल का सर्दी नमो भी उपयोग करी सकज। आज हमारो किसान भाई बहन नसी योज कहनु छे।
1: मूंग की देखभाल अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर डॉक्टर अनुराधा शर्मा की ये बातचीत। ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

पक्षीराज गरुड़ को काकभुशुंडी अपने एक पूर्व जन्म में शाप मुक्ति की कथा सुना रहे हैं। हजार योनियों में जन्म लेकर उन्हें भटकना तो पड़ा, किंतु कृपालु शंकर ने उस दुस्सह दुख से मुक्त कर दिया जो जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त होने में होता है। उन्हें ये भी वरदान मिला कि किसी योनि में भी जन्म लेकर उनका ज्ञान लुप्त नहीं होगा, किंतु साथ ही चेतावनी भी मिली कि वे फिर कभी किसी द्विज का अपमान न करें, क्योंकि विप्रद्रोह उसे भी भस्म कर देता है जिसे इंद्र का वज्र, स्वयं शंभु का त्रिशूल या हरि का चक्र भी नहीं मार सकते।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए प्रस्तुत है आज की तीनों सभाओं के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

सुर्खियों में ये कार्यक्रम रात 8 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में बसंत काबरा का गिटार पर बजाया राग झिंझोटी आप सुन सकते हैं रात 10:30 बजे और राग अहिर भैरव हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:30 बजे। प्रेम सिंह मोहन सिंह दीपालपुरिया और साथियों की गाई लोक रचनाएं सुनिएगा शाम 6:45 पर और सुबह 9:00 बजे।

फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन आप सुनेंगे सुबह 10:05 से। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 आज के कलाकार होंगे हिमांशु शर्मा और सुबह 9:15 पर आज की कलाकार होंगी शीला वर्मा।

आपके फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन हम आपको सुनवाएंगे। रात 9:30 बजे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, ये होगा रात 8:15 बजे से।

हर रोज की तरह शाम 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये हम आपको सुनवाएंगे शाम 6 बजे से। युवा साथी अपना मनपसंद कार्यक्रम युवा वाणी सुनेंगे शाम 5 बजे से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वित्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल अबुधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्ययोजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी

0: रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी इंदौर है।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
1: क्या?
0: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: पर सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: ये आकाशवाणी इंदौर है। 7:10 हुए हैं। प्रादेशिक
4: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ। राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है सोमनाथ, कहा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का पहला जत्था कल रवाना। आज प्रदेश के ग्वालियर समेत 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कल 9 रन से हराया। आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। भारी खरीद, अच्छी फसल और किसानों के पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित और सुरक्षित भविष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के पहले जत्थे के 1100 श्रद्धालुओं को ट्रेन से रवाना किया। ये जत्था आज सोमनाथ पहुंचेगा। जत्थे को रवाना करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सोमनाथ हमारी प्राचीन विरासत, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। सोमनाथ साक्षी है कि सृजन शक्ति हमेशा विनाशकारी शक्ति से प्रभावी होती है।
1: गुजरात भगवान श्री कृष्ण के काल से जब द्वारकाधीश ने अपने जीवन काल में अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो पूरा देश अलग दौर में पहुंचा। और हम सब जानते हैं 1000 साल पहले भारत को काली छाया ने ग्रहण के रूप में ढसा तो बाबा सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ ये स्वाभिमान के साथ भी जुड़ा हुआ है। सोमनाथ हमारे देश के विकास का पर्याय भी है।
0: संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित ये गौरवशाली यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत निकाली जा रही है। वियतनाम के राष्ट्रपति तुलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है। उच्च शिक्षा विभाग के ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कराने की अंतिम तारीख 15 मई है। पंजीयन 1 और 2 मई से शुरू हुआ था और कल तक विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और एनसीटी पाठ्यक्रमों में कुल 60,000 से ज्यादा पंजीयन हो चुके हैं। प्रथम चरण की आवंटन सूची 20 मई को ई प्रवेश पोर्टल पर जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल सफाई मित्रों को पीपीई किट प्रदान की। पीपीई किट में रेनकोट, फुल बॉडी ड्रेस, हेलमेट, ग्लव्स, मास्क और रिफ्लेक्शन जैकेट शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्मीबाई और काजल सटोरिया को आवंटन आदेश पत्र और मकान की चाबी प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दिनेश मौर्य को 50,000 रूपये की ऋण राशि का चेक प्रदान किया। डॉ. यादव ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पूजा गिरी गोस्वामी को सहायता समूह के लिए 2 लाख रूपये से अधिक की ऋण राशि का भी चेक प्रदान किया। राज्य सरकार ने डॉ. निवेदिता शर्मा को मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कल अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार डॉ. निवेदिता शर्मा का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पूरे होने तक रहेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। भोपाल स्थित भारत भवन में आज से माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ शुरू हो रहा है। ये कार्यक्रम हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने के जश्न में आयोजित किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर के 60 से ज्यादा जाने माने पत्रकार, संपादक और विचारक शिरकत करेंगे। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज सुबह 8:30 पर भोपाल में एक खास वॉकेथॉन का आयोजन किया जा रहा है। श्यामला हिल्स स्थित आकाशवाणी भोपाल केंद्र के दफ्तर से इस वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह आयोजन रेडियो की इस ऐतिहासिक यात्रा को सलाम करने का एक अनोखा तरीका है। प्रदेश में कुछ हिस्सों में कल आंधी और बारिश होने से तापमान में गिरावट आई और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार कल रीवा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया, जबकि ग्वालियर, नौगांव, सीधी और सतना में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ग्वालियर समेत 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 34 जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान 40 डिग्री या इसके आसपास बना रह सकता है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कल 9 रन से हरा दिया। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बारिश होने से बाधित इस मुकाबले में 213 रनों के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में कल विश्व एथलेटिक्स दिवस के अवसर पर माधवराव सिंधिया जिला खेल स्टेडियम में विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स पर तत्काल सुरक्षा सुधार कार्य किए जाएं। सतना में जिला पशु कल्याण समिति की बैठक में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार ने गौशालाओं की विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आगर मालवा में जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत मकानों की गणना और स्वगणना कार्य को 100% पूरा कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 प्रगणकों को एसडीएम द्वारा सम्मानित किया गया। झाबुआ में आज सांसद अनीता चौहान की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति की बैठक आज आयोजित की जाएगी। मंडला जिले के आकांक्षी विकासखंड नारायणगंज में नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की कल संभागायुक्त धनंजय सिंह द्वारा समीक्षा की गई। शाजापुर जिले और शुजालपुर तहसील में कल नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। धार में वन विभाग द्वारा कर्मचारियों की कार्य क्षमता वृद्धि के लिए प्रदेश की पहली एआई ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा।
1: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा।
2: नमस्कार श्रोताओं, इंदौर परिक्रमा के साथ मैं मुकाम सिंह चौहान। श्रोताओं, मालवा उत्सव 2026 का शुभारंभ बुधवार दिनांक 6 मई की संध्या दशहरा मैदान में हुआ। 6 मई से 12 मई तक चलने वाले इस उत्सव में देश के 21 राज्यों के लगभग 400 कलाकार और 450 शिल्पकार भाग ले रहे हैं। इंदौर के माननीय सांसद शंकर लालवानी ने दीप प्रज्वलित कर 7 दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ की शुरुआत की। मालवा उत्सव का ये 25वां वर्ष है और इसके संरक्षक और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी इस उत्सव के माध्यम से देश के कलाकारों को स्थान देते हैं। इस संदर्भ में लालवानी साहब ने हमें ये जानकारी दी।
3: पिछले 25 वर्षों से लोक संस्कृति मंच द्वारा मालवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और लगातार 25वां वर्ष है। बीच में कोविड वर्ष कारण नहीं हो पाया था, लेकिन ये 25वां वर्ष है। इस 25वें वर्ष में लगातार लोक संस्कृति मंच द्वारा जो लोक कलाकार हैं, उनको देश भर के लोक कलाकार, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि वो अपनी कला की प्रस्तुति देते हैं। विभिन्न प्रदेशों के लोक कलाकार यहाँ आते हैं, वो अपनी प्रस्तुति देते हैं, तथा यहाँ के भी जो हमारे स्थानीय लोक कलाकार हैं वो भी अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो एक कलाकारों का एक कुंभ लगता है। लगभग 450 से ज़्यादा कलाकार इस बार भी आ रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है, 17 राज्यों के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए आ रहे हैं और संभावना है कि ये और बढ़ेंगे। और यही नहीं, इसके साथ साथ लोक कलाओं के साथ साथ शिल्प मेला भी है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, जहाँ हजारों शिल्पकार अपनी कला की प्रस्तुति भी देते हैं और प्रस्तुति के साथ यहाँ बिक्री भी होती है। और खास करके माता बहनों को तो इंतजार रहता है इस मालवा उत्सव का, क्योंकि देश के विभिन्न प्रांतों से, अलग अलग प्रांतों से शिल्पकार आते हैं, अपनी प्रस्तुति देते हैं और स्थानीय लोग भी अपनी प्रस्तुतियाँ जो है वो भी देते, शिल्पकार अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। इस वजह बच्चों के लिए झूला भी है और व्यंजन, हमारा मालवा का व्यंजन प्रसिद्ध है वो भी है। तो एक प्रकार से एक 6 से 12 तक इस बार यह कार्यक्रम दशहरा मैदान पर होने जा रहा है। संस्कृति प्रस्तुतियाँ ये 7 बजे शुरू होगी और बाकी जो कार्यक्रम रहेगा शिल्प मेला वो 4 बजे से प्रारंभ होगा। विशेष आपको बहुत सारा दिखने को मिलेगा, जो इस बार जो कलाकार आ रहे हैं वो अपनी प्रस्तुतियाँ विशेष देंगे और मुझे इस बात की खुशी है कि स्थानीय कलाकारों ने भी बहुत अच्छी तैयारी की है। और स्थानीय लगभग 34, ये अभी तक का इतिहास है कि 34 दल अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि समय का अभाव है और प्रस्तुतियाँ बहुत देश भर की आ रहे हैं तो बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ होगी, देखने को मिलेगी।
2: पहले दिन मंच पर मालवा, गुजरात, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की लोक परंपराओं ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मालवा की माटी की खुशबू से जुड़े मालवी मटकी नृत्य से हुई। रंग बिरंगी पारंपरिक पोशाकों से सजे कलाकारों ने सिर पर मटकी और हाथों में छतरियां लेकर आकर्षक प्रस्तुतियां दी। उत्सव परिसर में शिल्प बाजार प्रतिदिन शाम 4 बजे से आमजन के लिए खुला है। यहाँ देश भर के हस्तशिल्प, पारंपरिक कलाएं और लोक संस्कृति से जुड़ी वस्तुएं आकर्षण का केंद्र है। छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने बांस की ऊंची गेंडी पर संतुलन बनाते हुए लयबद्ध नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया।
4: इंदरदेव की पावन एवं ऐतिहासिक नगरी इंदौर जिला की पावन माटी के साथ साथ दर्शक दीर्घा में बैठे आप प्रबुद्ध नागरिकों का मैं अनिल कुमार गढ़ेवाल लोक

भारती गेड़ी लोक नृत्य दल की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत एवं सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि अभी बताया गया कि गेड़ी लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाना है, इस लोक नृत्य के संबंध में दो शब्द आप लोगों को बतलाना चाहूंगा कि गेड़ी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य की पुरातन प्राचीन लोक संस्कृति में से एक है, जिसे हमारे राज्य में हरेली पर्व के उपलक्ष्य में किया जाता रहा है। यह नृत्य पूर्णतः पुरुष प्रधान लोक नृत्य है और इस नृत्य में जो प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसे मांदल, झान, झुमका, खंजरी, टिमकी, हारमोनियम और बांसुरी वाद्य यंत्र कहते हैं। और आप देख पा रहे हैं वेशभूषा के रूप में कौड़ियों, चीनी मिट्टी की माला, पटसन वस्त्र, सिख बंगमयू पंख धारण करके इस नृत्य को करने की परंपरा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के विद्वानों एवं हमारे पूर्वजों की ऐसी मान्यता रही है कि गेड़ी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में पुरातन प्राचीन रामायण काल से भी अधिक पुराना परंपरा है, जिसे हम लोग श्रृंगार भारती के कलाकारों ने फिर से पुनर्जीवित किए हैं। गेड़ी चंचल चाप के संग

0: श्रोताओं, हमारे इंदौर में शिक्षा, साहित्य और संस्कृति के साथ साथ अन्य गतिविधियां निरंतर आयोजित होती रहती हैं, जिसमें न केवल इंदौर अपितु मध्य भारत के लोग सम्मिलित होते हैं। इन दिनों हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ अवश्य आयोजित हो रहा है। इसी श्रृंखला में शिशु एवं बच्चों की शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए विद्या भारती मालवा प्रांत द्वारा शिशु वाटिका आचार्य सामान्य वर्ग प्रशिक्षण सत्र का आयोजन माणिकबाग इंदौर में हो रहा है। इसके उद्घाटन अवसर पर मध्य क्षेत्र के अध्यक्ष विवेक शेंडे, मध्य क्षेत्र की सहमंत्री डॉक्टर हिना नीमा, नगरीय शिक्षा प्रमुख पंकज पवार, सह संयोजक सत्यनारायण शर्मा, जगदीश राठौड़, डॉक्टर पिंकी हार्डिया और कीर्तिश धामारीकर प्रमुखता से उपस्थित रहे। इस संदर्भ में विशेष जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं मध्य क्षेत्र के शिशु वाटिका सह संयोजक।
1: मैं सत्यनारायण शर्मा, विद्या भारती का पूर्णकालिक कार्यकर्ता। शिशु शिक्षा की दृष्टि से जो मध्य क्षेत्र है, इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को मिलाकर के विद्या भारती का मध्य क्षेत्र है, इसका सह शिशु शिक्षा विशेषज्ञ के नाते कार्यकर्ता हूँ। और मध्य प्रदेश शासन में टास्क फोर्स जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बनी है, उसका भी मैं सदस्य हूँ। यहाँ माणिकबाग इंदौर में जो अभी 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन वर्ग चल रहा है, इसमें शिशु शिक्षा को लेकर के 15 दिन तक संपूर्ण मालवा प्रांत से आई हुई 15 जिलों की जो शिशु शिक्षा की शिक्षिकाएं हैं, दीदियां हैं, उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो जैसा कि विद्या भारती ने कहा है कि शिशु शिक्षा की भारतीय संकल्पना क्या थी और वर्तमान में भारत के अंदर जो शिक्षा का स्वरूप विकृत हो गया है, उस विकृत स्वरूप को व्यवस्थित करने के लिए या भारतीय दर्शन के अनुसार बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 से जो परिवर्तन हुए हैं, यानी हमारी जो शिक्षा पद्धति का स्वरूप भारत में विकृत कैसे हुआ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय देशों में कई सारे लोग मारे गए और मारे जाने वाले लोगों के बच्चे अनाथ हो गए। उन अनाथ बच्चों को शिक्षित करने के लिए छोटी छोटी नर्सरियां, छोटे छोटे स्कूल्स प्रारंभ हुए और उनमें यूरोपीय शिक्षा पद्धति के आधार पर यानी अनाथ बच्चों को एकत्रित करके उनको शिक्षा कैसे दी जाए, तो उनके लिए नर्सरी, किंडरगार्टन पद्धति और मॉन्टेसरी पद्धति मंदबुद्धि बच्चों के विकास के लिए, और धीरे धीरे उसी को हमारे देश में भी लागू कर दिया गया। उसके कारण क्या हुआ कि हमारे देश की जो शिक्षा का स्वरूप था कि घर ही 5 वर्ष तक के बच्चों को हम घर में रह करके और माँ ही उसकी गुरु होती थी और 5 वर्ष तक उसकी 10 इंद्रियों का विकास, उसके पंचकोशों का विकास होता था, और जब वो परिपक्व होकर के और 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता था, उसके पश्चात ही वह बालक फिर औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालयीन शिक्षा में प्रवेश लेता था। तो इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्तमान में जो परिवर्तन किया गया है, फाउंडेशन स्टेज, इसमें +5, +3, +3, +4 यानी फाउंडेशन स्टेज में नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड, इस प्रकार से +5 में हम उन बच्चों को पंच महाभूतों से परिचय कराते हैं, और पंच महाभूत जिसमें हम कहते हैं क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि, इन पंच तत्वों से छोटे छोटे शिशुओं का, क्योंकि मानव शरीर भी पंच तत्वों के आधार पर बना हुआ है, इसलिए उनसे उनकी अनुभूति कराना और पंच तत्वों का परिचय करा के और प्राकृतिक रूप से, व्यावहारिक रूप से उनको कैसे हम धीरे धीरे 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं बना करके, जैसे हमने चित्र पुस्तकालय बनाया तो चित्रों के माध्यम से शिक्षा देना, वस्तु संग्रहालय बनाया तो कई प्रकार की, हजारों प्रकार की वस्तुओं से धीरे धीरे उनका परिचय कराते जाना। जैसे जैसे उसकी उम्र आगे बढ़ती जाती है, उसके स्तर के अनुसार हम चित्र पुस्तकालय है, वस्तु संग्रहालय है, चिड़ियाघर है। अब चिड़ियाघर में बहुत सारे पशु पक्षियों का परिचय कराना, वन्य प्राणियों का नहीं, उनको जंतु विज्ञान से, प्राणी शास्त्र से उनका परिचय कराना, इस प्रकार से उनका ज्ञान वर्धन होते होते और फिर वो अभिनय की क्लास में जाते हैं, तो रंगमंच एक व्यवस्था है, तो रंगमंच, फिर स्विमिंग पूल जिसको हम तरणताल कहते हैं, तरणताल के माध्यम से उनको शिक्षा देना। फिर हम कहते हैं कि विज्ञान प्रयोगशाला, छोटे छोटे शिशुओं में पारदर्शी अपारदर्शी, घुलनशील अघुलनशील, किस प्रकार से हम छोटे छोटे व्यावहारिक प्रयोग करके और उनको खेल खेल में वैज्ञानिक शिक्षा दे करके और भारत के भाग्य विधाता वैज्ञानिक बन सके, ये प्रारंभ से ही नींव से ही, जिसको सीखने की नींव कहते हैं हम, फाउंडेशन स्टेज। तो इस प्रकार का शिशु शिक्षा में कई सारे नवाचार किए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नया स्वरूप में बनाया, जिसमें प्राचीन ज्ञान की परंपरा, भारतीय प्राचीन ज्ञान की परंपरा को लेकर के आए, खोज खेल पर आधारित छोटे छोटे क्रियाकलापों के माध्यम से शिशुओं का कैसे तैयार किया जाता है। हमारी शिशु शिक्षा की भारतीय संकल्पना में ये कहा जाता था कि पहली पाठशाला उसकी घर होती है और माँ उसकी पहली गुरु होती है। तो पाठशाला के अंदर माँ शिक्षक के रूप में छोटे छोटे गतिविधि, खेल कूद के आधार पर आनंददायी शिक्षा, जिसमें उसको आनंद भी आए, मौज मस्ती भी मनाए, और धीरे धीरे धीरे उसका ज्ञानवर्धन होते होते और वो बालक अनौपचारिक शिक्षा से औपचारिक शिक्षा की तरफ कैसे बढ़ता है, इस प्रकार का हम उसमें जो है उसको ज्ञानवर्धन करते हैं। और यहाँ पर 15 दिवस के अंदर इस ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण में साक्षात उनको साक्षात शिशु वाटिका में बच्चों के साथ किस प्रकार से क्रियाकलाप कराते हैं, एक एक पारा शैक्षिक व्यवस्थाओं में, एक एक व्यवस्थाओं में ले जा करके, और दीदियां किस प्रकार से उनको व्यवहारिक प्रयोग प्रैक्टिकल के द्वारा उनको वनस्पति विज्ञान का परिचय कराने के लिए बगीचे में ले जाया करता है, बगीचे में ले जा करके मिर्ची का पौधा कैसे उगता है, मिर्ची में पौधे में अंकुरण कैसे होता है, टमाटर कैसे फलता है, आलू कैसे होता है, इस प्रकार से वनस्पति विज्ञान का परिचय कराना। फिर उनको चिड़ियाघर में ले जा करके पशु पक्षियों का चित्र कराना, तरणताल में ले जा करके जल तत्व की अनुभूति कराना, इस प्रकार से कार्यशाला में मिट्टी के खिलौने कैसे बनाना, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे अपनी उंगलियों को मोड़ करके इंद्रियों का विकास करके और कार्यशाला में काम करते हैं। फिर मिट्टी के खिलौनों को रंगीन कैसे करना, पेंटिंग के द्वारा रंग भरो प्रतियोगिता आयोजित करके उनको कार्यशाला में, कलाशाला में, फिर उनको रंगपंच पर ले जाकर गीत कहानी और बढ़िया संगीत के मधुर मधुर छोटे छोटे गायन के माध्यम से नृत्य की शिक्षा भी दी जाती है। इस प्रकार से उनको चित्र प्रदर्शनी में

भेजा करके हम उन बच्चों का मनोरंजन करते हैं, और उसमें मूल रूप से जो हमारा पंचकोशात्मक शरीर है और पंचकोशी शिक्षा है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश, इन पंचकोशों का विकास करके और छोटे छोटे बच्चों का विकास, पंचकोशात्मक विकास और पंच तत्वों के साथ उनका उनकी अनुभूति कराना, उनका साक्षात्कार कराना, इस प्रकार से आनंददायी शिक्षा के माध्यम से हम इन 15 दिनों के अंदर इन पूरे मालवा प्रांत की 108 दीदियां हमारे यहाँ आई है, 108 शिक्षिकाओं को हमारे प्रांत के जो शिशु शिक्षा संयोजक है, इन सब लोगों के साथ इनके मार्गदर्शन में हम इन 108 शिक्षिकाओं को शिक्षित करके और आने वाले समय में शिक्षा का एक सुंदर स्वरूप छोटे छोटे बच्चों का आगे बढ़ेगा, इस कामना को लेकर ये 15 दिवसीय वर्ग हमारा आयोजित किया गया है।

0: इसी के साथ आज का इंदौर परिक्रमा का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। आपके मित्र मुकाम सिंह चौहान को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: इंदौर परिक्रमा।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा, ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल।

सुनहरे पल। लीजिए, इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार, उषा खन्ना और साथियों की आवाज में इंदिवर की रचना। धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आनंद, ये है फिल्म का नाम, आवाज मन्ना डे की। शब्दकार हैं योगेश, संगीतकार सलील चौधरी।

0: कभी तो हंसाए।
1: मशाल, इस फिल्म के लिए किशोर कुमार का गाया गीत सुनिए। इसे लिखा है जावेद अख्तर ने, धुन बनाई है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

आंखें। इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर का गाया गीत सुनिए। शब्दकार हैं साहिर, संगीतकार रवि।

राजा और रंक, यह है फिल्म का नाम। आवाज़ लता मंगेशकर की, बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल, ये आकाशवाणी इंदौर है। 8 बजने को है समाचार, हम दिल्ली से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैम्बर के अध्यक्ष डॉ MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केन्द्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमरीका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
7: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
3: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. BJP Central Observer for West Bengal Amit Shah to meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases and airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at Ikana Stadium. BJP Central Observer for West Bengal and Union Home Minister Amit Shah will meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. We have more from a correspondent.
1: After its sweeping victory in Bengal, the BJP is seeking to turn the swearing-in ceremony into a political event of national significance. The first BJP government in West Bengal will take oath on Saturday, the 25th Boishakh, at the Brigade Parade Ground. Preparations for the stage and security arrangements at Brigade began on Wednesday itself. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central ministers may attend the ceremony. Chief ministers and deputy chief ministers of various BJP and NDA ruled states are also being invited. On Friday, a meeting of the newly elected BJP MLAs will be held at Bishwa Bangla Convention Center in New Town, where the leader of the legislative party will be formally elected. Amit Shah will be present as the central observer. Since the oath-taking ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, special emphasis is also being given to cultural performances. The BJP is planning to showcase Bengali culture through Rabindra Sangeet and other cultural presentations. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
0: In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, talks have been held to reach the magic number of 118 to prove the majority. The DMK and the AIADMK held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappatti Palaniswamy has been elected as a leader of the legislative party during the meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK. We have more from a correspondent.
2: The situation in the state has taken interesting political outcome with the AIADMK and the DMK legislative party meeting held yesterday. Both of the parties have commented on the governor's decision on proving the majority. DMK spokesperson TKS Ilangovan has said that it is the duty of the single largest party to prove its majority and added that DMK chief MK Stalin does not want any constitutional crisis. It is to be noted that Puducherry AIADMK secretary A. Anbaragan, who met the media after the legislative party meeting, had said that the power to decide has been given to the general secretary of the party. He hailed the decision of the governor on the issue of majority and said that there will be unexpected decisions in the prevailing political uncertainty. He also informed the media that their leader felt sad about Stalin's loss in this election. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
0: President of Vietnam Tho Lam has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia.
3: India and Vietnam offer something important to the world: trusted partnership, stable governance, economic dynamism and long-term strategic confidence. The future of Asia will be built by entrepreneurs, innovators, investors, technology leaders, manufacturers and young people from countries like India and Vietnam working together.
0: After concluding his visit to India, the Vietnamese president arrived in Sri Lanka last night on a two-day state visit aimed at deepening bilateral ties and boosting trade and investment cooperation. The visit, undertaken at the invitation of the Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake, coincides with the 55th anniversary of diplomatic relations between the two countries and marks the first visit by a Vietnamese president to Sri Lanka in 15 years. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information in a social media post, Mr. Goyal said they discuss initiatives to further enhance the quality of life of our farmers, strengthen India's position in the global agriculture landscape, deepen collaboration with the African region, and share India's expertise in the sector. He added that they also deliberated on new pathways to enhance agricultural cooperation for long-term food security. Foreign Secretary Vikram Misri met UAE Minister of State for International Cooperation Rim Al Hashimi in Abu Dhabi yesterday. In a social media post, External Affairs Ministry said that both sides reviewed the full spectrum of the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership and identified areas for further cooperation. They also discussed the ongoing regional situation and global issues of mutual interest. The government has debunked a digitally altered video of External Affairs Ministry spokesperson Ranveer Jaiswal, wherein he is seen stating that India lost 4 Rafael fighter jets during the conflict with Pakistan. In a social media post, the fact-check unit of the Press Information Bureau clarified that the video is an AI-generated deepfake video and has been circulated by Pakistani propaganda accounts to spread misinformation. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Akashwani organized a marathon in the national capital today to mark its 90th anniversary. The nearly 3.5-kilometer marathon began from Akashwani Bhavan and passed through Krishi Bhavan, Rail Bhavan and the RBI building before concluding at Akashwani Bhavan. Employees of Akashwani, Doordarshan and Prasar Bharati, along with the family members, participated in the marathon. Prasar Bharati CEO Gaurav Dwivedi and Director General of Akashwani Rajiv Kumar Jain were present on the occasion. Akashwani was established in 1936 and continues to be one of the country's most trusted broadcasting platforms. Police have arrested absconding accused Nida Khan from Chhatrapati Shambhaji Nagar in connection with an alleged forced religious conversion case linked to a TCS company employee in Nashik. A joint operation was carried out last evening by a Nashik police team with the help of the crime branch in Chhatrapati Shambhaji Nagar. A case had earlier been registered against Nida Khan at Deolali Camp police station in Nashik for allegedly trying to force the religious conversion of a girl working in the TCS company. After the case was filed, she had gone absconding. Even after anticipatory bail plea was rejected, police were unable to trace her for nearly a month. IndiGo Airline has announced that it will begin commercial flight services from Noida International Airport in Jewar from the 15th of June. With this, IndiGo is set to become the airport's first launch carrier. IndiGo will gradually connect Noida International Airport with more than 16 cities across the country through direct flights. These include major metro cities like Bengaluru and Hyderabad, along with important destinations such as Amritsar, Chandigarh, Dharamshala, Jaipur, Lucknow, Navi Mumbai, Pantnagar and Srinagar. This will provide passengers with better travel options and faster connectivity. The Uttar Pradesh government has issued orders to operate all smart meters installed across the state in post-paid mode. Energy Minister Arvind Kumar Sharma stated that all smart meters installed under the RDSS scheme have been converted to the post-paid system with immediate effect. Under this arrangement, consumers will receive bills after electricity consumption. The bill for electricity consumed in May 2026 will be issued in June 2026 under the post-paid system. The Energy Minister said that prioritizing the convenience of electricity consumers, the Uttar Pradesh government has decided to discontinue the smart prepaid meter system. Saudi Arabia suspended U.S. military access to its bases and airspace, forcing President Donald Trump to abruptly abandon his plan to escort ships through the Strait of Hormuz, two U.S. officials have confirmed. The move marks a significant setback for Washington's Gulf strategy, with a key regional ally effectively blocking the operation known as Project Freedom before it could gain traction. Mr. Trump has shifted focus to diplomacy, describing recent talks with Iran as very good and saying a permanent deal is very possible.
4: Iran is now reviewing a 14-point U.S. proposal to end the war, with Tehran's Foreign Minister Abbas Araghchi calling for dialogue and diplomacy. The proposed framework would pause hostilities and open a 30-day window of final negotiations, even though core issues including Iran's nuclear program would be left for later talks. Washington says it expects an Iranian response imminently. The diplomatic picture remains fluid. Iran has not publicly confirmed acceptance of any terms, and Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Khalibaf has dismissed some media reports as fake. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Dubai.
0: While diplomacy advances, fighting across West Asia shows no sign of stopping. Israel bombed Beirut's southern suburbs on Wednesday in the first strike on the Lebanese capital since a U.S. brokered ceasefire nominally took effect on the 17th of April. The Israeli military says its operations target Hezbollah's infrastructure and fighters and has reported more than 220 Hezbollah members killed since the ceasefire began. In Gaza, Israeli strikes have continued, with Hamas condemning the attacks as a continuation of what it calls Israel's war of extermination. Meanwhile, the U.S. military has carried out strikes on Iranian military facilities after responding to attacks on Navy ships. Washington said that it does not want the conflict to grow but is ready to defend its forces. Earlier, U.S. claimed that Iran attacked three U.S. Navy ships in the Strait of Hormuz, but American forces intercepted the attacks and no ships were damaged. In IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method in a rain-hit match at the Ikana Stadium in Lucknow last night. Chasing 213 runs for victory, Royal Challengers Bengaluru made 203 for 6 in 19 overs. Earlier put into bat, Lucknow Super Giants scored 209 for 3 in 19 overs. Multiple rain interruptions reduced the match to a 19-over-a-side affair, setting Bengaluru a DLS target of 213. Mitchell Marsh scored a dazzling 111 off 56 for Lucknow, while Rajat Patidar contributed 61 off 31 for Bengaluru. Mitchell Marsh was adjudged player of the match. And now for a look at today's newspapers is over to Subhadra.
5: Thank you, Abhishek. BJP preparing to assume office in Kolkata after its stunning victory in West Bengal finds prominent mention in most of the dailies. Governor dissolves West Bengal Assembly leads the pioneer. Amit Shah to meet Bengal MLAs today on choice of new chief minister, says the Asian Age. Bengal's re-industrialization roadmaps being chalked out, informs the statesman. India urges Bangladesh to speed up verification of illegal migrants, reports Hindustan Times. In another story, Hindustan Times headlines, Governor keeps Vijay waiting as Tamil Nadu deadlock deepens. The Tribune in its editorial piece says, hung mandate led Tamil Nadu Assembly floor decide. The paper writes that Tamil Nadu's unfolding post-election uncertainty has once again brought the constitutional role of the governor under scrutiny. With Vijay's Tamiraga Vetri Karagam falling short of the halfway mark, the question before Raj Bhavan is politically explosive yet constitutionally settled. Who should be invited to form the government? The constitution does not automatically grant the single largest party the right to govern. The governor is expected to determine which formation is most likely to command the confidence of the assembly. And finally, Financial Express, citing Niti Aayog's National Education Report released yesterday, says that Indian school kids are weakest in mathematics, higher reasoning. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BJP Central Observer for West Bengal Amit Shah to meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain and business forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases in airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at the Ikana Stadium. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
6: ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं प्रसिद्ध संगीतकार जयदेव से स्वतंत्र कुमार ओझा की बातचीत। श्रोताओं, हम आपको ये बता दें कि ये रिकॉर्डिंग आकाशवाणी इंदौर के संग्रहालय से आपके लिए हम लाए हैं। ये बातचीत सन 1986 में रिकॉर्ड की गई थी।
7: है कुछ भीगी भीगी, चांद भी है कुछ मध्यम मध्यम, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, तू चंदा मैं चांदनी, ये दिल और उनकी निगाहें, दो दीवाने शहर में अल्लाह तेरो नाम, मोहे भी राधा बना लो नंदलाल, जैसे कई मीठे मोहक और ऐसे सुरीले गीत जिसे हर कोई गुनगुनाए और झूम जाए, तो ऐसे गीतों की धुनों को जन्म देने वाले विख्यात संगीत निदेशक श्री जयदेव हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। जयदेव जी नमस्कार।
8: नमस्कार ओझा साहब।
7: सुगम संगीत के क्षेत्र में कलात्मक श्रेष्ठता को प्रोत्साहित और सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित लता मंगेशकर पुरस्कार वर्ष 1986 के लिए आपको प्रदान किया गया है, हार्दिक बधाइयां स्वीकार कीजिए।
8: बहुत खुश हूं मैं इस बात पर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इस मध्य प्रदेश सरकार को जिसने ये अवार्ड शुरू किया, और ख़ास तौर पर जब ये लता जी के नाम के साथ वाबस्ता है तो और भी खुशी होती है, क्योंकि एक सिंगर की भी इसमें इज्जत होती है जिसने बहुत काम किया हमारी लाइन में।
7: इस पुरस्कार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
8: मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में जितने भी ऐसे अवार्ड्स हैं, पुरस्कार हैं, प्रेसिडेंट अवार्ड जो है वो तो उसके अपनी जगह है, एक उसके बाद यही एक अवार्ड ऐसे है जो कि बाकायदा सोच समझ के दिया गया है, और इसके साथ जो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है आर्टिस्ट को वो मेरे सारे हिंदुस्तान में कहीं उसकी मिसाल नहीं है। और ये एक सजेशन मेरा यही है कि आइंदा के लिए जूरी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि डिजर्विंग तो हो, जो मिले अवार्ड तो मिलना चाहिए जो डिजर्व करते हैं, मगर उसको मिले जिससे उसको फ़ायदा भी हो, जो उसको अपने काम में आगे भी जा सके। अब जिनके पास करोड़ों रुपया हो, लाखों रुपया हो, उसमें 1 लाख का जमा होना कोई मायने नहीं रखता
7: जी।
8: तो ये अवार्ड बहुत सोच समझ के, और न्यूट्रल जूरी जो हो, जो म्यूजिक को समझती हो, ओरिजिनल वर्क को समझती हो, वो उसे ये डिसीजन लेना चाहिए
7: जी। तो जयदेव जी, स्वरों की इस निष्काम तपस्या और यात्रा का लेखा जोखा, क्या खोया क्या पाया, तो ये यात्रा कब और कैसे शुरू हुई?
8: ये बहुत लंबी यात्रा है
7: जी,
8: क्योंकि मैं 15 साल की उम्र में 1933 में फिल्म लाइन में चला गया था।
7: अच्छा।
8: एक्टिंग लाइन में, उन दिनों में गाना क्वालिफिकेशन हुआ करती थी, तो वारिया मूवी टूर मैंने ज्वाइन की थी
7: जी,
8: जिसमें बाद में वामन अवतार में मैं काम किया पहली पिक्चर में, फिर वीर भारत, थंडर वाली, काला गुलाब, जोशी अवतन, मिस फ्रंटियर मेल,
7: इसके बाद इन फिल्मों में आपने काम किया?
8: काम किया।
7: अच्छा, यानी एक्टिंग की?
8: एक्टिंग की थी।
7: अच्छा अच्छा।
8: और 1940 से 1951 तक मैं फिल्म लाइन से दूर रहा, क्योंकि मेरे पिताजी अफ्रीका से रिटायर होकर आ गए थे, कुछ मुकदमेबाजी थी घर की कुछ रिश्तेदारों में, तो मैं लाइन छोड़कर चला गया था। और तब भी मैं जब फिल्में देखा करता था और अंग्रेजी पिक्चरों के साथ कंपेयर करता था, तो मुझे दुख होता था कि हम लोग बहुत पीछे हैं, और आज भी वही आलम है, आज भी वही स्टंट फिल्में बन रही हैं, बस फर्क इतना है कि बड़ी स्टार कास्ट है, टेक्निकली इम्प्रूवमेंट हो गई बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने एक्टिंग का हाल छोड़कर म्यूजिक सीखना शुरू किया।
7: तो ये संगीत का वातावरण आपके परिवार में रहा होगा?
8: ये चूंकि पैदाइश तो अफ्रीका में हुई, तो हम लोग जंगलों में रहते थे, माता जी हमारी नाभा स्टेट की थी, वो रामायण और फोक सॉन्ग्स पंजाब सिखा करती थी, और मऊ सरगुन किसने प्रेजेंट किया था तो मैंने खुद बजाना शुरू कर दिया था। 1927 में जब लुधियाना हमको लाया गया, मुझे मेरे बड़े भाई को पढ़ने के लिए, तब मेरा भाग्य अच्छा था कि वहाँ पर प्रोफेसर बरकर राय जी थे विष्णु दिगंबर घराने के, तो मेरी क्लासिकल ट्रेनिंग वहाँ से शुरू हुई।
7: अच्छा।
8: और उसके बाद मैं जब अपने फैमिली के सब मामलात से निपट गया, पिताजी की मृत्यु हो गई, माताजी पहले गुजर चुकी थी, मैंने अपनी बहन की शादी की, उसके बाद में मैं बेफिक्र होकर अल्मोड़ा चला गया था।
9: अल्मोड़ा
8: वहाँ कल्चर सेंटर था उदय शंकर, वहाँ जाकर पता लगा कि बड़े बड़े उस्ताद जो थे, अलाउद्दीन साहब, अली अकबर साहब, रविशंकर जी, ये सेंटर छोड़ के जा चुके हैं, सिर्फ डांस रह गया था और सेंटर भी कुछ बिखर गया था, कुछ शादी वादियाँ ज़्यादा हो गई थी वहाँ पर। तो मैं लखनऊ चला गया था 43 में
9: जी।
8: 43 के बाद फिर मैं कुछ बीमार हुआ काफ़ी अर्सा, मुझे अस्थमा हुआ, क्योंकि प्रैक्टिस भी करता था स्रोत की, नौकरी भी करता था। 44 के एंड में मैंने लखनऊ छोड़ दिया
9: जी।
8: और शिमला जाके अपना इलाज करवाया, वहाँ पर स्वामी रामतीर्थ जी की किताबें पढ़ी, इन द वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन, उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा मेरी ज़िंदगी पर। फिर मैं ऋषिकेश गया, ऋषिकेश से उज्जैन आया।
9: अच्छा।
8: उज्जैन के बाद इंदौर में भी एक महीना रहा मैं, सर हुकुमचंद स्वर्गीय जो थे उनके मैं उनका मेहमान था
9: जी।
8: और फिर बहुत लंबा सफ़र है 1933 से लेकर 1986 तक का, कितनी घटनाएं इसमें घटी हैं
9: जी।
8: मगर वो जैसे एक शेर मुझे याद आता है कि इस लाइन में रहने के बाद जिसे लोग कहते हैं जिंदगी, या फिल्म लाइन कह लीजिए, जिसे लोग कहते हैं जिंदगी, वो तो हादसों का हुजूम है, ये तो कहिए मेरा ही काम था कि मैं दरमियान से गुजर गया। मेरे सब साथी आज उनमें से कोई नजर आता है, सब रिटायर हो चुके हैं, कुछ मर चुके हैं, तीन भाई भी गुजर चुके हैं, मैं अकेले रह गया हूँ यहाँ पर, मेरी सिस्टर वगैरह इंग्लैंड में है, भतीजे वगैरह सब वहाँ हैं, भांजे। और ये म्यूजिक का सफ़र जो है 1951 में अली अकबर साहब के साथ जब स्टेट्स ख़त्म हो गई थी तब से शुरू किया
9: जी। उसमें एक उनकी कौन सी फिल्म में
8: आंधियाँ उनको पिक्चर मिली थी, उसमें मैं असिस्टेंट था। आंधियाँ फ्लॉप हुई, हम सफ़र फ्लॉप हुई, तो अली अकबर साहब तो लाइन छोड़ कर चले गए थे
9: जी।
8: वो तो बड़े म्यूजिशियन थे, वो तो कहीं भी रह सकते थे, मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं एक्टिंग में जाना नहीं चाहता था। तो बर्मन दादा ने मुझे अपना असिस्टेंट एक्सेप्ट किया
9: जी।
8: उनके साथ मैंने 1961 तक काम किया, मगर साथ साथ मुझे अपनी इंडिपेंडेंट फिल्में मिली शुरू हुई। पहली फिल्म थी जोरू का भाई, अंजलि, किनारे किनारे, ये तीनों पिक्चरों का म्यूजिक तो चला, इसलिए मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। वरना तीन पिक्चरें अगर फ्लॉप हो जाएं एक के बाद दूसरी बार तीसरी, तो किसी को कोई क्रेडिट नहीं मिलता, सब जो है बदकिस्मत कहकर या कुछ भी ना कोई बहाना लेबल लगाकर उखाड़ दिया जाता उनको लाइन से। आज भी जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है, अगर उनकी चार पांच फिल्में एक लाइन में ख़त्म हो जाएं तो उनकी मार्केट वैल्यू चली जाती है। मैं चूंकि अपने ओरिजिनल स्टाइल में रहा, मैंने संगीत ओरिजिनल रखा अपना एक स्टाइल,
9: वही मैं तो उसमें बच गया कि आपने अपनी धुनों को मान्यता देने दिलवाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया फिल्म लाइन में।
8: स्ट्रगल तो मैंने बहुत ज़्यादा की, मैंने जैसे कहा ना मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, बस मेरा दिल ही जानता है, और इस अरसे में कितनी घटनाएं हुई हैं, कहाँ कहाँ मैं गया हूँ, मुझे इज्जत भी बड़ी मिली है, स्ट्रगल भी करनी पड़ी है, बॉम्बे में भूखा भी रहना पड़ा है, मगर मैंने चूंकि शादी नहीं की थी, एक बड़ी अकलमंदी की बात मैं कर गया था, और स्ट्रगल मेरे लिए आसान रही थोड़ी सी
9: जी।
8: वरना अगर शादी होती तो बाल बच्चे होते अगर, तो स्ट्रगल बहुत लंबी और बहुत मुश्किल होती, जस्ट पॉसिबल मैं जिंदा ही ना रहता अब तक
9: जी। पिछले सालों में यानी कहें कि 50 और 70 के आसपास जो फिल्मी गीत बने, उन गीतों की रिकॉर्डिंग और आजकल जो रिकॉर्डिंग होती है, आजकल जो गीत बनते हैं, इसमें कोई बदलाव आप महसूस करते हैं?
8: 50 से म्यूजिक शुरू हुआ था, उस वक्त अच्छे से म्यूजिक डायरेक्टर थे जैसे बर्मन दादा, रोशन जी, मदन जी, खेमचंद प्रकाश, अनिल विश्वास, जिनके अपने स्टाइल थे, नौशाद साहब, सज्जाद साहब
9: जी।
8: फिर ये लाइन में कुछ ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि अंग्रेजी धुनें चोरी करके उन पर बोल लिखवाने शुरू हुए, उससे पोइट को बंदिश हो गई काफ़ी, तो पोइट्री का तो उसका सिलसिला ख़त्म हो गया क्योंकि फिट करना पड़ता है बोल। और उसमें चंद पोएट ऐसे जैसे शैलेंद्र जी, साहिर लुधियानवी, नक साहब हैं आजकल, जो मजमून भी काम रखते हैं और धुन को भी समझते हैं, वरना ट्यून फिट करने, ट्यून में बोल फिट करने बहुत मुश्किल काम है। इसी वजह से म्यूजिक स्टैंडर्ड गिरता चला गया, फिल्में भी स्टंट बनती रही, उसमें भी स्कोप नहीं रहा, और यही वजह है कि गजलें जब मेहंदी हसन की आनी शुरू हुई तो गजलों का दौर शुरू हुआ, क्योंकि पब्लिक उब चुकी थी उस म्यूजिक से, स्टेल हो चुका था वो म्यूजिक।
9: नहीं तो रिकॉर्डिंग की टेक्निक की बात,
8: रिकॉर्डिंग टेक्निक हमारे जमाने में तो ट्रॉली पर कैमरा होता था, साथ में मशीन होती थी।
9: अच्छा।
8: और ट्रॉली साथ साथ मूव करती थी, या दरख्त के नीचे गाना तो दरख्त के ऊपर वो माइक्रोफोन लगा देते थे।
9: अच्छा।
8: फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता प्लेबैक सिंगिंग शुरू हुआ, जिससे अब 50 साल होने वाले हैं इसी महीने में, दिसंबर के महीने में
9: जी।
8: प्लेबैक से कुछ रिकॉर्डिंग में इम्प्रूवमेंट आई, अब तो टेक्निकली बहुत इम्प्रूव कर चुके हैं, आजकल तो हमारी रिकॉर्डिंग वर्ल्ड क्लास की है, ये भी कह सकते हैं। एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेटेस्ट मशीनरीज आ गई हैं, और बहुत स्टूडियो होने के बावजूद भी कमी है। बॉम्बे में आप आसानी से स्टूडियो नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि टीवी भी आ गई है, वीडियो मीडियम भी आ गए हैं, तो इससे पायरेसी भी बढ़ गई है, तो कुछ मगर ये है कि रिकॉर्डिंग का स्टैंडर्ड जो है ये डेफिनेटली रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी और टेक्निकल हिसाब से काफ़ी तरक्की हुई है।
9: तो आपको भी इसका लाभ मिलता होगा?
8: लाभ मिलता है, हम जो चीज़ चाहते हैं, जो इफेक्ट चाहते हैं रिवर्ब का, या अगर डबिंग बड़ी फैसिलिटीज हो गई हैं, अगर आपने पूरा गाना गा दिया है, एक लफ्ज खराब हो गया है तो उतना ही लफ्ज डब किया जा सकता है,
9: तो उतनी मेहनत तो वगैरह ये सब बच,
8: वरना री रिकॉर्डिंग जो फिल्म की होती थी बैकग्राउंड म्यूजिक होने के बाद एक एक रील में एक एक दिन लग जाता था इफेक्ट्स मिक्स करने में। आजकल वही सिस्टम, जितना ओके हो गया वो पंच कर दिया जाता है, उसके आगे चलते हैं हम लोग।
9: और रिहर्सल्स कितने करवाते हैं आप अपने कलाकार?
8: पहले 50s में तो म्यूजिशियन दो रिहर्सल दिया करते थे
9: जी।
8: अब चूंकि म्यूजिशियन की एसोसिएशन बड़ी स्ट्रांग है तो रिहर्सल आजकल नहीं मिलती।
9: अच्छा।
8: जो खास किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत हो उसको हम लोग बुलाते हैं रिहर्सल के लिए, वरना जो हमारे अरेंजर होते हैं हम उनको लिखवा देते हैं सब कुछ, और वो फिर उसके पार्ट्स बना के म्यूजिशियन में डिवाइड कर देते हैं। दो शिफ्ट होते हैं दिन में 9 से 1 बजे तक, और दो घंटे ग्रेस पीरियड, 4 बजे वो आपकी रिकॉर्डिंग छोड़ के जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो। बड़े प्रोड्यूसर जो है वो पूरी शिफ्ट बुक कर लेते हैं 7 घंटे 8 घंटे की। मेरे पास जैसे छोटे प्रोड्यूसर आते हैं, नए आते हैं, तो मैं बड़ी खुश रहती है कि 9 बजे अगर स्टाफ आ जाए 9:30-10 तक, तो मैं 1-1.5 बजे गाना ख़त्म कर देता हूँ
9: जी।
8: और चूंकि मैं ज़्यादा बड़े आर्टिस्टों के भी उसमें नहीं रहता, मैं नए सिंगर से मैंने मैक्सिमम चांस दिए, तो वो रिहर्सल मेरी बच जाती है। जैसे गमन में मैंने एक दिन में एक शिफ्ट में 5 गाने रिकॉर्ड किए थे,
9: एक शिफ्ट में जी,
8: और एक गाना बच गया था वो दूसरे दिन कर दिया था
9: जी। अच्छा जयदेव जी, अपने युग के किन संगीत निर्देशकों से आप प्रभावित रहे?
8: अनिल दा, बर्मन साहब, रोशन जी, खेमचंद प्रकाश, सज्जाद साहब, मदन मोहन जी तो मेरे बहुत प्यारे भाई थे, तो ये लोग थे जिनका अपना अपना स्टाइल था और एक उसूल था काम करने का। अब तो रैट रेस है, इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। बड़े प्रोड्यूसर की पिक्चर आ गई तो वो सस्ती कर दी, और कोई नया आदमी फंस गया तो उससे 2 लाख रुपये ले लिया, 1.5 लाख रुपये ले लिया। अब सारा निज़ाम बदल चुका है, मगर जो अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे वो जिन्हें मैं अच्छा समझता था वो तो रहे नहीं अब
9: जी। जयदेव जी, आप जो गीत की धुन बनाते हैं तो मतलब धुन पर आप लिखवाते हैं या गीत आपको
8: मिलता है? जैसे मेरे वैसे तो प्रथा तो फिल्म लाइन में यही है आजकल, चूँकि ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करते हैं बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर, विच इज़ इम्पॉसिबल टास्क, कंपोजिशन तो बड़ी मुश्किल से होती है, तो मैं पहले बोल लेता हूँ।
9: अच्छा।
8: अच्छे से पोइट्स के बोल लेता हूँ, उस पर धुन बनाता हूँ, वो धुन जब प्रोड्यूसर सुनते हैं उनको पसंद आती है, तो फिर पोइट्स से कहा जाता है, अच्छे पोइट्स से, कि भाई सिचुएशन ये है, अब ये मीटर परफेक्ट है पोइट्री का, इस पर आप लिख कर दीजिए। जैसे मसलन मैं गर्दिशों से जाम लड़ाता चला गया
9: जी,
8: हंसता हंसाता पीता पिलाता चला गया, वो रफ्ता रफ्ता जाम पिलाते चले गए, मैं रफ्ता रफ्ता होश में आता चला गया
9: जी।
8: ये गाना मैं गाया करता था देवानंद बुआ के घर में। तो देव कहने लगा यही ट्यून चाहिए हमें।
9: अच्छा,
8: तो सार इंटेलिजेंट पोएट था, उसने इसका वो किया कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
9: फिल्म हम दोनों
8: और सैफ साहब मैं गजल गाया करता था, हमको तो गर्दिश हालात पे रोना आया, रोने वाले तुझे किस बात पे रोना आया। तो वो उस पर सहरसा में लिखा था, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया
9: जी।
8: तो अगर सामने पोएट के एक मीटर दे दिया जाए परफेक्ट मीटर पोएट्री का, तो वो अपने थॉट्स को अच्छे से ला सकता है उसमें
9: जी।
8: ट्यून में बोल फिट करने, कभी कभी फोक सॉन्ग्स तो हमारी विरासत है, वो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी धुने चोरी करके जो रिकॉर्ड से मेलोडी ले ली जाती है उसमें पोएट्स को बंदिश हो जाती है बहुत ज़्यादा
9: जी। मैं फिर से अभी जो आप बात कर रहे थे उसी सवाल पे आना चाहूँगा कि आज के फिल्मी गीत लोकप्रियता क्यों हासिल नहीं करते, तो क्या वैसे कंपोजर नहीं है या इलेक्ट्रॉनिक युग है या जो ये रिदम की जो लाउड रिदम की जो
8: लाउड रिदम ये वैसे साथ लिया है इस चीज़ ने, ये एक तरह से एक्स्ट्रा एनर्जी है यूथ में जो निकलना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से
9: जी।
8: तो मेलोडी में और इन चीज़ों में कम ध्यान है, शोर की तरफ ज़्यादा चला गया है। और फिल्में भी हमारे देश में ऐसी बनती हैं जिसमें से म्यूजिक का स्कोप नहीं होता, कैबरे डांस होता है या बंदूकें चल रही हैं उसके बीच में कोई गाना आ गया, डांस वगैरह होते रहते हैं। इसमें स्टैंडर्ड म्यूजिक का जो है बहुत सफ़र किया है पिछले दिनों में, यही वजह है कि गजलों के गाने वाले आजकल फिल्म लाइन के आर्टिस्टों से भी ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे अनूप जलोटा हैं, अपना जगजीत चित्रा हैं, भूपेंद्र जी कला रहे हैं, आप उनको सुनेंगे आज आ रहे हैं
9: जी।
8: तो ये लोग जो है इंटेलिजेंट म्यूजिशियन है, गुड सिंगर्स, वेरी वेल ट्रेंड, और कुछ लोग काम अच्छा करते हैं, बाकी तो फिर नकलें करने वाले आते हैं, कोई रफी साहब की नकल कर रहा है, वो किसी की। और मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं जो ओरिजिनल जिसका स्टाइल होता है, जिसकी बेसिक क्लासिकल ट्रेनिंग होती है, उसको मैं चांस देता हूँ
9: जी। तो आपने कई ऐसे नए कलाकारों को मौका,
8: मेरे ख्याल में जितना मैंने नए कलाकारों को उत्साह दिया है उतना किसी ने
9: नहीं
8: मौका दिया
9: बेशक।
8: और मेरे छाया गंगोली को पहले गाने पर ही नेशनल अवार्ड मिला था। भीमसेन जी ने 20 साल के बाद हिंदी फिल्म में गाया, इसमें अनकही में मुझे भी मिला अवार्ड, उनको भी मिला। तो ये बस यही है कि जब पब्लिक का दोष इसमें नहीं है, पब्लिक को जो कुछ दिया जाता है यही मीडियम है उनके लिए एंटरटेनमेंट का, तो वो तो एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि कहाँ जाए बच्चों को लेकर, तो जो भी है वो एक्सेप्ट कर लेती है। जब जब अच्छी पिक्चरें बनती हैं तब तक उनको भी पब्लिक लाइक करती है। एक बदकिस्मत ये है कि म्यूजिक का आजकल जो नया ट्रेंड है डायरेक्टरों का, वो म्यूजिक में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, एक या दो गाने रखते हैं फिल्म में, बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा होता है। एक दो गानों में ना रिकॉर्ड बनता है ना कैसेट बनता है, तो उसकी जो पॉपुलरिटी का फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अगर पिक्चर फ्लॉप हो गई तो वो भी गए, दो गाने भी गए, और चल गई तो दो गाने की वक्त नहीं, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको कोई भी
9: जी। जयदेव जी, फिल्मों की तरह दूरदर्शन पर भी धुनें उतनी ही लोकप्रिय हो सकती है क्या?
8: एक बात हो गई, हमारे देश में टेलीविजन के आने से बड़ा अच्छा हुआ ये, मगर वहाँ पर भी एक तरह से प्लेबैक सिंगिंग शुरू हो गया है। गाना पहले रिकॉर्ड कर लिया जाता है अच्छे स्टूडियो में और उस पर लिप मूवमेंट दी जाती है, उसके बावजूद भी लड़के लड़कियां हाथ में कागज़ रखते हैं, तो ये एक्सप्रेशन में भी
9: फर्क
8: पड़ता है। कुछ आर्टिस्ट जो क्लासिकल के आर्टिस्ट हैं या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं अच्छे अच्छे, वो लाइव प्रोग्राम करते हैं, बाकी तो सब फिल्म लाइन के स्टाइल में जा रहा है, जिसे मैं गलत समझता हूँ। उसका रीज़न ये भी है कि सरकारी डिपार्टमेंट है ये, अब रिकॉर्डिंग हो रही है, 5 बज गए, रिकॉर्डिस्ट का टाइम ओवर हो गया, तो वो गाना छोड़ के चल देगा, दूसरा रिकॉर्डिस्ट लेगा, वो सारे मूड में फर्क पड़ जाता है गाने में, इसलिए हम प्रेफर करते हैं बाहर गाना रिकॉर्ड कर लें, लिप मूवमेंट हो जाए उस पर।
9: आपने भी तो टीवी के लिए काम करते रहे?
8: मैं टीवी में बहुत मैंने प्रोग्राम दिए, बहुत से आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस किया, अभी मेरी लेटेस्ट श्रीकांत शरद बाबू की लाइफ थी,
9: जी हाँ,

0: किया
1: जी।
0: और बड़ी म्यूजिकल पोएट्री है उनकी
1: जी जी,
0: उसके समझने के लिए रफ्तार नॉलेज चाहिए।
1: जदे जी, एक आम धारणा सी है कि सुगम संगीत यानी फिल्मी गीत, तो गजलों का दौर शुरू हुआ तो लोगों को ऐसा लगा कि इसकी सीमाएं कुछ और लंबी भी हैं,
0: है।
1: तो सुगम संगीत किसे कहेंगे हम?
0: लाइट म्यूजिक को, जो ज्यादा जिसमें ताने वाने ना हो, पोएट्री का मजा हो जिसमें, क्योंकि अगर ख्याल गाएंगे तो क्लासिकल हो गया, ध्रुपद धमार का जमाना खत्म हो चुका है, इसलिए सुगम संगीत लाइट म्यूजिक को कहा जाता है। गीत हो, भजन हो, गजलें हो, और मेलोडी अच्छी हो, अरेंजमेंट अच्छा हो, आवाज अच्छी हो।
1: तो इनका भविष्य आपको कैसा लगता है?
0: आजकल देखते हुए तो लगता है कि बहुत उज्जवल भविष्य इनका, मगर इसमें भी एक बदकिस्मती से पब्लिसिटी का दौर शुरू हो गया है, सेल्फ पब्लिसिटी का, जो उससे प्रोग्राम ज्यादा मिलते हैं। अगर आप बॉम्बे शहर में आके देखें तो फिल्मों के बैनर इतने बड़े नहीं मिलेंगे जितने प्राइवेट गजलों के सिंगर के बैनर मिलेंगे आपको। तो ये एक गलत फिकर, दो तीन कंपनियां रिकॉर्ड कंपनी इंडिया में, उनका कंपटीशन आपस में, तो अंदरूनी बातें कुछ ऐसी हैं जो मैं तो समझ नहीं पाया, क्योंकि तो मैं ऐसे काम में पढ़ता नहीं हूँ, मगर आर्टिस्टों को खुद भी बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है।
1: तो जदे जी, आप तो आकाशवाणी परिवार से जुड़े भी रहे हैं किसी जमाने में, आप आपकी क्या मान्यता है कि आकाशवाणी का कोई योगदान है संगीत को पॉपुलर करने में?
0: बहुत ज्यादा। टीवी के आने से पहले रेडियो ही तो था जिससे कि अच्छे संगीत सुनने का मौका मिलता था, और अब ये तो जमाने का उसूल है कि जैसे जैसे हम तरक्की करेंगे नई चीजें आएंगी, कैसेट रिकॉर्डिंग आई, दूसरी चीजें आ गई हैं। बाकी टेलीविजन में, अब इंग्लैंड में जब आप रेडियो सुनेंगे वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स, और टेलीविजन तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया हुआ उनका, हमारा भी स्टैंडर्ड उनके बहुत पीछे है, बहुत पीछे है हम लोग।
1: इसकी वजह क्या?
0: आहिस्ता से टाइम लगेगा।
1: नहीं तो आकाशवाणी का जो सुगम संगीत है,
0: हाँ जी,
1: उसके बारे में आपके क्या?
0: आकाशवाणी में भी मैंने, एक तो जब मुझे सख्त नफरत है जब आर्टिस्ट गाना याद नहीं करता
1: जी,
0: गाना याद करने से एक्सप्रेशन बहुत अच्छा आएगा
1: जी,
0: और हाथ में कागज होगा तो एक्सप्रेशन 50% खत्म हो जाता है
1: जी,
0: और ये बावजूद बहुत कोशिश करने के भी आर्टिस्टों के समझ में नहीं आता। वही फिल्म लाइन का मसला हो गया है कि एक हाथ में कागज है, उसको देख गा रहे हैं। वो मैंने मधुशाला रिकॉर्ड की, 6 महीने मुझे लगे मधुशाला करने में, और जब मैंने, कहना तो नहीं चाहिए, मना बाबू को जब मैंने दी, मैंने उससे कहा था कि इसको एक दफ़ा दिन में पढ़ लिया कीजिएगा, रेफरेंस के लिए कागज़ रखिएगा। वो 6 महीने के बाद रिकॉर्डिंग करने आए तो मुझे एक एक स्टेंजा करना पड़ा उसका, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। गिला नहीं उनसे भी, कोई बिजी आर्टिस्ट हैं, अच्छा गाए, मगर गाना याद होना चाहिए आर्टिस्ट को। वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखेंगे तो उनके हाथ में कोई कागज़ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लंबे लंबे गाने गाते हैं और बड़े मजे से गाते हैं, एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा आता है उसमें।
1: तो ये मधुशाला के दोनों भाग आपने मतलब एक ही सिटिंग में रिकॉर्ड किए अलग अलग?
0: ये इसमें लगे थे मुझे 4 दिन रिकॉर्ड करने में।
1: अच्छा,
0: टुकड़े करने पड़े ना
1: जी, हाँ,
0: कि उनको याद नहीं था। फिर आजकल मुश्किल क्या है कि हिंदी का उच्चारण लोगों का खराब है, पंजाबी अगर है तो उसमें पंजाबी आ जाती है, बंगाली को भी हिंदी से ज्यादा वो नहीं है। तो जैसे लता जी और आशा जी को छोड़कर बाकी सब आर्टिस्टों में है या काफ ये गलतियाँ बहुत होती हैं, वो फिर डबिंग की फैसिलिटी होने से अब उनको कर लेते हैं।
1: जयदेव जी, आपने तो अपनी सारी उम्र कला की साधना की है, एक लंबा समय आपने इस क्षेत्र में व्यतीत किया है, कला को आप केवल साधना मानते हैं या संस्कार?
0: संस्कार तो होते ही हैं, वरना जैसे मेरे हमारे पिछली पुश्त तो सब रेलवे में थी। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ताजी, चाचा जी, मेरे पिताजी, और हमारी यही जनरेशन अलग, और उनमें से सिर्फ मैं म्यूजिक के क्षेत्र में आया
1: जी।
0: तो ये तो संस्कार हो गए
1: जी।
0: अब उसके बाद साधना तो करनी पड़ेगी
1: जी।
0: सीखना चाहिए, और जब तक क्लासिकल की बेसिक ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक प्रोग्रेस नहीं हो सकता। जब स्टैटिक रहेगा आर्टिस्ट, आवाज़ अच्छी है

0: ठीक है चल जाएगा कुछ दिन, मगर एक हर हर फील्ड के अंदर एक बैरियर आता है, एक स्टेज पर आकर रुकावट आती है
1: जी।
0: उसको केवल प्रैक्टिस के थ्रू ही, रोजाना प्रैक्टिस के थ्रू ही दूर किया जा सकता है
1: जी।
0: वरना वो जैसे आप सुनते हैं आए हैं उस आर्टिस्ट को 25 साल के बाद सुनेंगे वही स्टैंडर्ड उसका रहेगा, वही 4-5 गाने उसको जैसे वो गाता था वही रहेगा, कोई जिद्दत नहीं पैदा कर सकता उसमें वो
1: जी। तो बात शास्त्रीय संगीत की चली है तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि खैर वैसे तो आपने अलग अलग रंगों में कई अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, स्वरों को गूंथा है। जैसे मुझे याद आता है कि भैरवी में आपकी एक फिल्म थी नैहर छूटो जाए, उसमें एक भैरवी आपने बनाई थी लता जी की जी हाँ, और फिर आलाप में भी आपने एक सरस्वती वंदना बनाई थी।
0: वो तो मैंने मुझे सिखाई गई थी हमारे गाने में
1: जी,
0: पंडित विष्णु तंबर जी की रचना है वो
1: जी।
0: तो जब ऋषिदा ने कहा कि मुझे ओरिजिनल चाहिए बंदना, मैंने कहा जो मैंने सीखी थी बचपन में हमारे घराने की चीजें वो तो उसको मैं लिया था।
1: तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका प्रिय राग कौन सा?
0: बिलावल ठार मुझे बहुत पसंद है।
1: अच्छा।
0: मैंने उस्ताद साहब से भी कहा था कि बाबा मुझे ये राग बहुत पसंद है, तो वो कहने लगे मुझसे कि ये राग इतना शांत है। उन्होंने एक सिमली दी थी कि जैसे कोई समझदार आदमी दुनिया को छोड़ छाड़ कर किसी ऊंचे टीले पे बैठ कर फिर दुनिया का नजारा देखता है शांति से, इसमें वो फीलिंग है। फिर बिलावल में अलैहे बिलावल, कुकु बिलावल, यमनी बिलावल, और मैं हमेशा बिलावल को लेके चलता हूँ। फिर जैसे कोई खास बसंत का जिक्र आता है तो मैं बसंत मिक्स कर देता हूँ, बाहर गाता हूँ तो बाहर मिक्स कर देता हूँ। लाइट म्यूजिक में वो लिबर्टी लेनी पड़ती है हम लोग। फोक म्यूजिक में अलबत्ता मैं जब देता हूँ फोक म्यूजिक मुखड़ा तो रखना पड़ता है, मगर अंतरा में चेंज करता हूँ। जैसे मैंने मध्य प्रदेश की फिल्म की थी मुझे जीने दो, मैं दिनारे ना जाओ शाम पहिया करूँ, अंतरा का स्टाइल मैंने चेंज कर दिया था।
1: लोक गीतों में ऐसी आपने और भी धुनें बनाई
0: हैं,
1: जिनका खाली मुखड़ा आपने लिया हो?
0: अच्छा। क्योंकि मैं जोधपुर में भी रहा और सौराष्ट्र में का म्यूजिक भी मैंने स्टडी किया, महाराष्ट्र में भी स्टडी किया, तो वैसे मैं हिंदी, मैंने नेपाल की फिल्म में भी म्यूजिक दिया, वहाँ के नेपाली म्यूजिक भाषा को समझा और वही वही का स्टाइल रखा। पहाड़ी स्टाइल तो एक जैसा होता है, थोड़ा फर्क होता है उसमें। और फोक में बड़ी अच्छी चीजें हैं, असल में तो फोक ही बेस है जिससे क्लासिकल भी बाद में बना है
1: जी। तो जयदेव जी, अब अंत में आप स्वयं भी अच्छे गायक हैं तो कोई प्रिय धुन अगर आप सुनाए तो बड़ी कृपा होगी आपकी।
0: तो कितना समय आप मुझे दे सकते हैं इसके लिए?
1: जितना आप चाहें इसके लिए। तो कोई
0: तो मैं आपको नज़्म सुनाता हूँ जो मेरी, उसमें रिदम मत बजाइएगा।
1: अच्छा, रिदम मत बजाइएगा।
0: नज़्म मुझे बहुत प्यारी है, आज से मैंने 50 साल पहले पढ़ी थी, मुझे आज भी याद है, अख्तर शिरानी की
1: जी जी
0: शबे तन्हाई।
1: अच्छा।
0: जो मेरी फेवरेट है
1: जी,
0: और जिसमें मेरी अपनी जिंदगी की झलक भी आ जाती है। शबे तन्हाई।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध संगीतकार जयदेव से स्वतंत्र कुमार ओझा की बातचीत। श्रोताओं, ये रिकॉर्डिंग हम आकाशवाणी इंदौर के संग्रहालय से आपके लिए लाए थे। ये बातचीत की रिकॉर्डिंग सन 1986 में की गई थी और इसी के साथ अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी इंदौर है। लोक संगीत लीजिए, इस कार्यक्रम में सुनिए प्रेम सिंह मोहन सिंह दीपालपुरिया और साथियों की गाई ये लोक रचना।

लोक संगीत के इस कार्यक्रम में प्रेम सिंह, मोहन सिंह, दीपाल पुरिया की आवाज में ही सुनिए एक और लोक रचना।

प्रेम सिंह, मोहन सिंह, दीपालपुरिया, आप सुन रहे हैं इनकी आवाज में ये लोक रचनाएं। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज में एक और लोक रचना।

इस लोक रचना के साथ ही आज का लोक संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है, सुगम संगीत। लीजिए इस कार्यक्रम में सुनिए शीला वर्मा की आवाज में ये रचना।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, और सुगम संगीत में आज की कलाकार हैं शीला वर्मा। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में एक और रचना।

शीला वर्मा की आवाज में गाई इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है, शास्त्रीय संगीत। लीजिए इस कार्यक्रम में सुनिए बसंत काबरा का सरोद पर बजाया राग अहिर भैरव।

अभी आप सुन रहे थे बसंत काबरा का सरोद पर बजाया राग अहिर भैरव। तबले पर संगति कर रहे थे दिलशाद अहमद खान। और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: जिले की चिट्ठी
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्र, वाचन स्वर दीपा सिंह। सीधी जिले में इन दिनों एक साथ कई बदलाव और गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मौसम के बदलते तेवर, प्रशासनिक सक्रियता, सामाजिक अभियानों की रफ्तार, महिला सशक्तिकरण की पहल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम सभी मिलकर जिले की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। मई माह की शुरुआत इस बार सामान्य वर्षों की तुलना में अलग रही, जहां आमतौर पर इस समय तेज गर्मी का असर देखने को मिलता है। वहीं इस बार आंधी और बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश ने किसानों के चिंताएं बढ़ा दी हैं। उधर उपार्जन केंद्रों और समितियों में रखे अनाज पर भी इस मौसम का असर देखने को मिला है। प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित अधिकारियों और समितियों को निर्देश जारी किए कि अनाज को सुरक्षित रखने के लिए समुचित प्रबंध किए हैं। जिले में गेहूं उपार्जन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। हजारों किसान स्लॉट बुकिंग के माध्यम से अपनी उपज बेच रहे हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सैटेलाइट सत्यापन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। उपार्जन केंद्रों पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके साथ ही चना, मसूर और सरसों जैसी अन्य फसलों के लिए भी उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। जिले में सेवा और मानवता के संदेश को मजबूत करने के लिए इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा रेडक्रॉस सप्ताह मनाया जा रहा है। 2 मई से 8 मई तक चल रहे सप्ताह के दौरान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को आपदा के समय सजग रहने और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दी गई। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को बताया कि कठिन समय में संयम और जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। रेडक्रॉस के इस अभियान के तहत शासकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के लिए प्राथमिक उपचार और CPR प्रशिक्षण का आयोजन भी किया गया। जिले में स्वच्छता को लेकर भी एक सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से शहर में रंगोली अभियान आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने भाग लिया। इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने साबित कर दिया है कि स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है। स्वच्छता अभियान को और मजबूती देने के लिए जन प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। विधायक रीति पाठक ने रात्रिकालीन सफाई अभियान में स्वयं श्रमदान कर एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की और लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासनिक स्तर पर जनगणना अभियान को लेकर भी विशेष सक्रियता दिखाई दे रही है। कलेक्टर ने स्वयं मैदान में उतरकर जनगणना कार्य में भाग लिया। उन्होंने एक परिवार के घर पहुंचकर न केवल प्रक्रिया का अवलोकन किया बल्कि लोगों को सही जानकारी देने का महत्व भी समझाया। जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि भविष्य की योजनाओं का आधार होती है। इसी कारण प्रशासन इस कार्य को पूरी पारदर्शिता और सटीकता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रयासरत है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी जिले में उल्लेखनीय पहल की जा रही है। चुरहट में आयोजित अवनी कार्यक्रम ने महिलाओं को एक सशक्त मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन में स्वास्थ्य, पोषण और आत्मनिर्भरता से जुड़े विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया। महिलाओं और किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उन्हें पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। शिक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम में क्रिएटिव गतिविधियां भी आयोजित की गई, जहां छात्राओं ने चित्रकला के माध्यम से अपने सपनों और भविष्य की कल्पनाओं को प्रस्तुत किया। ये पहल न केवल उनकी प्रतिभा को मंच देती है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। समग्र रूप से देखा जाए तो सीधी जिले में विकास, जागरूकता और जन भागीदारी का संतुलित स्वरूप दिखाई दे रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और कृषि, इन सभी क्षेत्रों में हो रहे प्रयास ये संकेत देते हैं कि सीधी जिला निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्र का था और वाचन स्वर था दीपा सिंह का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण।
1: ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

0: हेलो हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ करते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार।
2: एमएच हॉटलाइन,
1: जी एमएच हॉटलाइन में आपका स्वागत है। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: सर दुबे से बगीचे से महेश गायकवाड़ बोल रहे हैं।
1: महेश जी?
2: जी सर।
1: जी महेश जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: वो मेरे अपने फिल्म का गाना सुना दीजिए सर।
1: फिल्म का नाम क्या बताया आपने?
2: मेरे अपने।
1: मेरे अपने
2: जी, कोई होता जिसको हम अपना ले लेते।
1: बिल्कुल आपके पसंद का गीत हम आपको सुनवाते हैं महेश जी। लेकिन आप बताइए, आप आकाशवाणी से लगता है निरंतर आप जुड़े हुए हैं।
2: जी सर।
1: कब से?
2: मेरे साथ ये समझ लो कि जब से अपन ने होश संभाला है, जब से अपन ने आकाशवाणी से अपन ने संपर्क किया।
1: तो अब ये भी बता दीजिए, होश किस सन में संभाला था?
2: है सर।
1: होश किस सन में संभाला था?
2: जब से अपने मान सर 18-19 साल 20 साल से।
1: 20 साल पहले, 20 साल से लगातार 2 दशक से आप जुड़े हुए हैं। आपने गीत के बोल क्या बताए थे महेश जी?
2: अपने कोई होता है जिसको हम अपना ले लेते।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा गीत आपने पसंद किया है। और ये गीत आपकी पसंद का है या आपकी व्यक्तिगत जीवन से इसका कुछ ताल्लुक है?
2: नहीं सर, अब अपनी पसंद का गाना है सर।
1: अच्छा, पसंद है ये?
2: जी जी।
1: इसका जीवन से कोई लेन देन नहीं है?
2: नहीं सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहेंगे, हमेशा हमारी कामना भी
2: ये
1: रहेगी।
2: सर ये गाना
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो लीजिए महेश जी, आपके पसंद का गीत हम आपको सुनवाते हैं।
2: थैंक यू सर,
1: फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: हाँ सर जी, नमस्कार नमस्कार।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: आपके नेम श्रोता भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज वासोदा, जिला विदिशा।
0: अरे वाह, प्रणाम स्वीकार करें हमारा।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल, पहली बार बात हुई है आपसे।
0: चलिए, ये भी एक सौभाग्य है
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल,
0: कि हमारे भाग्य में
1: आपके
0: आपसे
1: तो
0: बात
1: नियमित
0: करना लिखा
1: श्रोता है
0: था।
1: हम। है
0: हमारे भाग्य में आपसे बात करना लिखा था।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तापमान कैसा क्या है इंदौर का भी सर?
0: तापमान यदि मालवा के नजरिए से देखें तो ज्यादा लगता
1: हाँ
0: है, क्योंकि
1: हाँ
0: मालवा को जो है वो शबे मालवा बड़ी हसीन हुआ करती थी, लेकिन शायद ग्लोबल
1: बिल्कुल बिल्कुल सर,
0: वार्मिंग
1: बिल्कुल।
0: बदलते इसे क्लाइमेट
1: सही
0: में
1: सही बात।
0: बदलते इस
1: अच्छा,
0: क्लाइमेट में अब सब कुछ गर्म होता जा रहा है,
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन जो प्रकृति ये सारे ऋतु देती है वो सहन करने की क्षमता
1: बिल्कुल
0: भी दे
1: सर,
0: देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है।
0: मैं थोड़ा सा
1: तो
0: भूल रहा
1: सर
0: हूं, आपने अपना नाम बताया था।
1: भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज वासोदा।
0: भागचंद जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? हाँ
1: हम फिल्म का नाम है चांदनी, और गाने के बोल रहेंगे मेरे हाथों में नौ-नौ चूड़ियां।
0: बिल्कुल, आपके पसंद का गीत आपको सुनवाते हैं। आपके वहां के
1: वाह
0: मौसम के
1: बिल्कुल
0: बारे में
1: सर।
0: आपने नहीं बताया।
1: सर हमारे यहाँ पे धूप बहुत तेज है, 32-34 डिग्री चल रहा है तापमान अभी गंजवासोते में।
0: 32-34 डिग्री, यानी तेज धूप तो है। और
1: हाँ बहुत तेज है सर, अभी भी धूप धूप जा समझ लो बहुत जोरों पे चल रही है फिलहाल में।
0: तो बिल्कुल, हमें जितने भी हमारे रेडियो के श्रोता हैं उन सभी को हमें
1: हाँ
0: ये जरूर बताना है कि धूप में अपने आप की सुरक्षा अवश्य करें।
1: बिल्कुल सर,
0: जो
1: पानी पहते पानी तो जरूरी है, जल ही जीवन है।
0: जल ही जीवन है, तो आप क्या सलाह देंगे कि पानी पीते रहना चाहिए?
1: बिल्कुल सर, पानी तो कम से कम हर व्यक्ति के लिए 3 लीटर पानी पर्याप्त होना चाहिए,
0: कितने समय में?
1: हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। 3 लीटर दिन भर में, 3 लीटर पानी चाहिए
0: दिन भर का
1: शरीर
0: मतलब
1: में
0: चौबीस
1: हर।
0: घंटे या जितने में दिन दिन रहता है उसी की बात कर रहे हैं?
1: हाँ, दिन दिन वाली।
0: दिन दिन वाली बात।
1: हाँ बिल्कुल, 3 लीटर पानी पर्याप्त होना चाहिए। पानी पर्याप्त पिए, खाना हल्का फुल्का खाएं, श्रोताओं से निवेदन है। और धूप में बिल्कुल ना निकलें, थोड़ी बहुत राहत लें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये सलाह, आपका ये परामर्श हमारे श्रोताओं तक पहुंच गया है, और जितने आत्मविश्वास के
1: बिल्कुल।
0: साथ
1: और
0: आपने
1: सर,
0: ये तरीका बताया है धूप से लड़ने
1: बिल्कुल
0: का।
1: सर, और सर हम पानी पूरी सेंटर का ठेला भी लगाते हैं और कार्यक्रम आपके सुनते रहते हैं सर।
0: तो भाई, जितनी आपकी पानी पूरी टेस्टी है उतनी ही आपकी बातें भी टेस्टी है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो क्या है, हम बहुत जानकारी से, एक ज्ञानी ज्ञान का खजाना है आकाशवाणी केंद्र।
0: जी हमारा धन्यवाद स्वीकार करें, और साथ ही स्वीकार करें आपके पसंद का गीत भी।
1: बिल्कुल।

0: हेलो
1: हाँ नमस्ते सर।
0: जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालदाना का इंदौर से।
0: जी
1: कैसे हैं सर आप?
0: जी, कृपा है, प्रभु कृपा है, सब कुछ बहुत बढ़िया। आप सुनाएं।
1: जी सर, हम भी अच्छे हैं सर।
0: चलिए, हमेशा आप ऐसे ही अच्छे रहें। वैसे गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: सच्चे धागे का सुना दीजिए सर,
0: कौन सा गीत?
1: इस श्यामे कर्म का क्या कहना।
0: हाँ, एक मिनट, मैं इस गीत को देख रहा हूं।
1: हाँ नहीं, आपके यहाँ है सर ये गाना
0: वाह, क्या बात है!
1: जी, मैंने एक चक्कर और सुना था।
0: आपका आत्मविश्वास ये बता रहा है कि हमारे यहाँ गाना है। आपका
1: हाँ है ना सर,
0: आत्मविश्वास बता
1: सच्ची।
0: रहा है कि आप काफी लंबे समय से जुड़े हैं रेडियो से।
1: अरे कब से जुड़े हैं सर, आपको तो मालूम है। नहीं
0: नहीं, मुझे नहीं मालूम है, तभी तो ये सवाल पूछा मैंने।
1: काफी सालों से जुड़े हुए हैं सर, ये हसीना जी मंसूरी, मोहम्मद रफी मंसूरी, अमीना जी मंसूरी।
0: चलिए, अब बात ही बातों में आपने पूरे परिवार का नाम भी बता दिया, तो ये पूरा परिवार ही रेडियो से जुड़ा है या
1: हाँ
0: आप?
1: पूरा पूरा परिवार सर, पूरा परिवार
0: रेडियो के
1: सबको
0: कौन
1: छोड़ के
0: कौन से
1: सर।
0: प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: ये आपके जितने भी आकाशवाणी के जितने भी प्रोग्राम है सर, चलते रहते हैं सर दिन भर, दुकान पे भी घर पे भी।
0: अच्छा, तो आप लगातार आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं।
1: जी बम्बई
0: आकाशवाणी
1: से भी जुड़े
0: और
1: हुए सर, बम्बई के भी सब पूरे कार्यक्रम सुनते सर हम।
0: आकाशवाणी का और आपका ये स्नेह का रिश्ता हमेशा बना रहे।
1: जी
0: और चलिए, हम इसी रिश्ते को, आकाशवाणी के और आपके श्रोताओं के रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं।
1: जी सर
0: जी, आपने फोन किया,
1: जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो,
3: नमस्कार सर।
2: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: तहसील बहादुरपुर जिला सुखनगर MP से सूर्य प्रताप यादव बोल रहा हूँ सर।
2: सूर्य प्रताप? भाई आपके नाम में तो बड़ा शाही अंदाज है सूर्य प्रताप जी।
3: बिल्कुल सर,
2: मतलब मैं एक कल्पना कर रहा हूँ कि आप कैसे लगते होंगे। 6 फीट से थोड़े से ऊपर, बड़ी बड़ी नोकदार मूछें, ऐसा कुछ है क्या?
3: अच्छा, मतलब आपने मेरी उम्र का अंदाजा लगा लिया है मतलब।
2: हाँ, मैं अभी फिलहाल तो मैं उस पे जा रहा हूँ कि आप दिखते कैसे होंगे। उम्र के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, दिखते कैसे होंगे। नाम के अनुरूप मैंने सोचा कि 6 फीट से कुछ ज्यादा हाइट, बड़ी बड़ी नोकदार मूछें जो ऊपर की तरफ उठी हुई हो, ऐसा कुछ है क्या?
3: अब वो तो सर मैं आपको कैसे बताऊं, आपके हिसाब से तो ठीक है।
2: चलिए ठीक है, तो फिर अब आपकी पसंद भी बता दीजिए।
3: आज मुझे विलन फिल्म का एक गाना याद आ रहा है, एक विलन।
2: कौन सा गीत है?
3: जो तू मेरा हमदर्द है।
2: कुछ आपको अंदाज हो गया किस आवाज में है, किसने, किस गायक ने इसे गाया है?
3: मेरे ख्याल से अरिजीत सिंह ने गाया है शायद।
2: बिल्कुल आपका ख्याल दुरुस्त है, अरिजीत सिंह ने ही गाया है इस गीत को। वैसे सूर्य प्रताप जी आप कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मैं तहसील बहादुरपुर जिला सुकमा MP से।
2: आपके मौसम, आपके इलाके के मौसम के बारे में कुछ बताइए ना।
3: मौसम तो सर ऐसा है कि कभी बारिश कभी धूप, ऐसा मौसम थोड़ा सा गड़बड़ सा है।
2: मतलब गर्मियों के तेवर तीखे ही हैं।
3: हाँ, गर्मियों के तेवर तो तीखे ही हैं, जैसे दिन में धूप होती है तो रात में थोड़ा सा मौसम गड़बड़ा जाता है।
2: तो बिल्कुल आप इस गड़बड़ मौसम में अपना भी और अपने परिवार का भी और अपने सोसाइटी का भी ख्याल रखिएगा। हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत
3: जी सर। धन्यवाद।

0: हेलो हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: हाँ सर, मैं कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी बोल रहा हूँ। सर, आपका नियमित श्रोता और हर कार्यक्रम में मैं आपसे मुखातिब होता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आप राजेश जैन से बात हो रही सर?
0: जी मैं राजेश जैन बोल रहा हूँ, आपका रेडियो दोस्त। नमस्कार स्वीकार
1: माशाल्लाह
0: करें।
1: माशाल्लाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा है। आज हम बड़ी खुशी की बात है कि जो आज का जो महीना में आता है, हज का महीना आता है, तमाम मुस्लिम बहुल लोग इसमें अपनी सिफत से हज करने जाते हैं। तो मैं उसमें दायर में अपनी एक सलाम पेश करना चाहता हूँ उनके नजर इनायत के लिए साहब, कि हम तो इस लायक तो नहीं है मगर उस लायक बन जाए तो लोगों की मोहब्बत और एजाज इकराम बना रहे।
0: कौन सा
1: और
0: गीत
1: हम
0: सुनना
1: सब,
0: चाहेंगे नियाज जी?
1: मैं कुली का गाना सुनना चाहूंगा सर,
0: कुली
1: एक एक
0: फिल्म
1: कड़ी
0: का।
1: सुनाता हूँ सर। नजरे रोज एक मुस्तफा ढूंढती,
0: चलिए बिल्कुल नियाज जी, हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं। और कैसे
1: बहुत
0: हैं
1: बहुत
0: आप?
1: धन्यवाद सर आपको और विविध भारती परिवार को भी मेरी ओर से मुबारकबाद।
0: नियाज जी कैसे हैं आप?
1: बहुत सर, बहुत बढ़िया हूँ। अभी बस चेयर पर बैठा हुआ, थोड़ा सा VIC का जो फिल्टर डाला था वो निकल चुका है। जिस दिन हमारे बातम जी ने एक गाना सुनाया था, कांटा निकला है, तो उस दिन मेरा कांटा निकला था। संजीव जी से भी बात हुई थी, मेरी बातम जी से बात हुई थी। बहुत अच्छा लगता है सर आपके स्टाफ को सुनकर, और आपको बहुत अच्छे प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम।
0: चलिए प्रोग्राम
1: राजेश
0: में फोन
1: धन्यवाद,
0: करने के लिए बहुत बहुत
1: प्रणाम।
0: धन्यवाद। और नियाज जी हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं,
1: बहुत सर,
0: आइए।
1: आपको भी परिवार को भी धन्यवाद साहब।

0: हेलो
1: हाँ सर,
0: जी, नमस्कार। एम एच हॉटलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: गोविंद प्रजापत सुसारी जिलाधार से बोल रहा हूँ।
0: गोविंद जी,
1: आप गोविंद जी,
0: गोविंद जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: कार मूवी का है गाना सर, कल्याण जी आनंद जी का है, इनकी जोड़ी का संबंधित, और हिंदी और के लिखा है, और गीतकार मन्ना डे।
0: फिल्म का नाम क्या बताया आपने?
1: कार
0: उपकार। जी बिल्कुल गोविंद जी। और जिला धार, यानी आप सब धार से हैं या धार के आसपास के किसी?
1: कुक्सी कुक्सी सर,
0: तो धार और कुक्षी के दरमियान, जहां तक मेरी जानकारी की, बहुत लंबा फासला है।
1: सर हमारे यहाँ प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं भी है, बाघ के प्रिंट भी है।
0: बाघ प्रिंट के जो कपड़े बनते हैं,
1: सर पास में हमारे, और बाघ बौद्ध गुफाएं भी है
0: तो इन गुफाओं की क्या खासियत है?
1: सर। प्राचीन काल का कहा जाता है कि पांच पांडव जी यहाँ रहे थे, जो महाभारत
0: अच्छा, वो पांडव इन गुफाओं में उन्होंने कुछ समय बिताया था।
1: के। हाँ सर, और यहाँ की प्रसिद्ध बागेश्वरी माता भी है।
0: ये आपके कुक्षी में ही है?
1: हाँ सर, कुक्षी में है, धार जिले में है
0: बहुत बहुत। और बाघ प्रिंट के बारे में कुछ बताइए ना।
1: कुक्षी सर। यहाँ की बाघ प्रिंट तो बहुत प्रसिद्ध है सर, विदेशों तक जा रही है शायद, सुनने में आया है।
0: हाँ, शायद यही बात हमारे सुनने में भी आई है कि पेरिस में भी इस प्रिंट के साथ इनके कलाकारों ने वहाँ प्रतिभागिता दर्शाई है। तो ये क्या होते हैं, ये प्रिंट क्या चीज़ है, कुछ थोड़ा बताइए ना, यदि आपकी जानकारी हो तो।
1: इतनी जानकारी नहीं सर, वन हम गए तो देखने, कुछ कला है उनकी।
0: चलिए ठीक है गोविंद जी, तो हम आपके पसंद का गीत आपको सुनवाते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी से जुड़े रहिए, सुनते रहिए।

0: हेलो हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते
0: जी, नमस्कार। एम एच हॉटलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी। मैं इंदौर
0: कौन बोल रहे हैं? जी बताएं, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: दीजिए कुछ भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके पसंद का गाना सुनवाते हैं। आप कुछ करते हैं या हाउस वाइफ हैं?
1: हाउस वाइफ जी सर, बहुत घर
0: तो
1: के काम है।
0: जी, हेलो। हाँ, क्या हमारी आवाज़ आ रही है अब तक?
1: जी आ रही हूँ
0: हाँ, लेकिन आपकी नहीं आ रही थी इसलिए।
1: जी।
0: तो आप यदि हाउस वाइफ हैं तो ये वक्त तो शायद आपका काफी व्यस्त समय रहता है। हाउस वाइफ जितनी भी बहनें होती हैं उनका
1: टाइम निकालती होती तो इस टाइम निकालने बन
0: कभी ऐसा हुआ है कि रेडियो सुनना और खाना बनाना, इन दोनों के बीच में खाने में कुछ गड़बड़ हो गई हो?
1: नहीं होती
0: कभी नहीं होती?
1: नहीं।
0: हाँ, क्योंकि ये एक संभावना होती है कि हमारी अचानक हमारी पसंद का गाना आ जाए और हमारा ध्यान उस तरफ चला जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ? चलिए, मतलब आप आकाशवाणी सुनने में भी परफेक्ट हैं और अपने खाना बनाने के काम में भी आप परफेक्ट हैं। तो चलिए, आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवाते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, एमएच हॉटलाइन,
0: एम एच हॉटलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: राजेश भैया, नर्मदे हर
0: जी? नर्मदे हर।
1: कवर कॉलोनी बड़वा से बोल रहा था।
0: यदि मैं सही हूं तो प्रवीण श्रीमाली।
1: बिल्कुल ठीक
0: देखो,
1: पहचाना सर आपने।
0: आप रेडियो से इतने पुराने जुड़े हुए हैं कि आप अपना पता बताते और हम नाम बताते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अक्सर होता ये कि आप नाम बताते, हम सब उल्टा हो गया। चलिए, लेकिन आपका और रेडियो का ये जो स्नेह, बरसों पुराना स्नेह है ना,
1: मैं
0: ये भी
1: सर,
0: मैं सही
1: मुझे
0: बोल रहा
1: वर्ष
0: हूँ?
1: 1986 से रेडियो सुनने का चस्का लगा है, जो निरंतर है
0: 1986 से लेकर
1: जी। 40 वर्ष हो चुके हैं।
0: तो वैसे आप भी काफी उम्रदराज हो गए हैं क्या? क्योंकि आवाज से ऐसा लग नहीं रहा है। 40 साल
1: क्या
0: से आप
1: बात
0: रेडियो से
1: हुई
0: जुड़े हैं।
1: सर, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होकर अभी 2 साल हो गए सेवानिवृत्त हो चुका हूं
0: लेकिन आपकी आवाज सेवानिवृत्त नहीं हुई है, इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। भाई, आप जो ठहाके
1: बढ़िया,
0: लगाते हैं है ना,
1: बिल्कुल
0: अभी टेलीफोन पर भी आपके जो ठहाके की आवाज आ रही है वो ये बताती है
1: बिल्कुल
0: कि दोस्तों की महफिल में आप जब भी रहते होंगे पूरी महफिल
1: जी।
0: ठहाके लगाती होगी।
1: नहीं तो क्या है, वो शाम के टाइम हमारे गीत संगीत की महफिल जमती रहती है।
0: जी
1: और राजेश जी, मैं बताना चाहूंगा, खुशखबरी बताना चाहूंगा,
0: जी
1: हमें दादाजी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है
0: अरे वाह,
1: और घर
0: बहुत
1: में
0: बहुत
1: लक्ष्मी
0: बधाई
1: का
0: हो,
1: आगमन हुआ है।
0: बहुत बहुत बधाई हो। गीत कौन सा सुनना चाहेंगे? अरे
1: वो कभी कभी का सुनना था, मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: वाह, शायद आप उस नन्ही परी को सबसे पहले सबसे बेशकीमती तोहफा दे रहे हैं, है ना? ये सिर्फ आपकी फरमाइश नहीं बल्कि उस नन्ही परी के लिए तोहफा भी है।
1: बिल्कुल राजेश जी,
0: तो चलिए, हम भी इस तोहफे में शामिल हो जाते हैं। अब जब वो बड़ी हो जाए जरूर उसे बताइएगा कि
1: बिल्कुल
0: जिस दिन उसने जन्म
1: वो
0: लिया था उस
1: तो
0: दिन आपके दादाजी के थ्रू आकाशवाणी ने उसे
1: जी
0: एक तोहफा दिया था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये कभी भूला नहीं जा सकता ना।
0: बिल्कुल सही। वैसे प्रवीण जी, आप जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं?
1: सर मैं जिंदगी, मैं रेडियो को मैं जिंदगी का अहम हिस्सा मानता हूँ सर,
0: बहुत बड़ी हमारे लिए खुशनसीबी है ये।
1: और मैं अभी वर्तमान में 20-25 रेडियो स्टेशन से नियमित रूप से जुड़ा हूँ
0: बहुत खूब। तो चलिए, रेडियो और आपके इस स्नेह की निरंतरता को हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं और चलते हैं आपकी पसंद के गीत की तरफ।
1: धन्यवाद। नर्मदे हर
0: फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो हेलो
1: फिल्म
0: जी
1: का दुपट्टा ना
0: आप
1: जाने की
0: न जाने क्यों मैं बेकरार।
1: आप
0: कहाँ से बोल रहे हैं? आपकी आवाज में काफी व्यवधान आ रहा है अनिल जी। तो चलिए हम बातों को देते हैं विराम और आपकी पसंद के गीत को देते हैं हम आगाज। चलें,
1: ठीक।

इस गीत के साथ ही आज का MH हॉटलाइन कार्यक्रम समाप्त करने के अपने दोस्त राजेश जैन को अनुमति दीजिए। ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम MH हॉटलाइन, ये आकाशवाणी इंदौर है। 11 बजा चाहते हैं अगला कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से रिले किया जाएगा।
1: AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: श्रोताओं, फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपने रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। तो जल्दी से डायल कीजिए 2660902 और STD कोड आप जानते ही हैं 0755। कीजिए हमसे बात और सुनिए अपनी पसंद के गीत। हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। हेलो हेलो
3: जी, आलिनी दीदी सादर नमस्कार।
2: जी नमस्ते, आपका शुभ नाम।
3: जी दीदी, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा चिकी मथुरा उत्तर प्रदेश की वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
2: हम बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मथुरा उत्तर प्रदेश।
2: हाँ शारदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, मथुरा में तो गर्मी बहुत तेज पड़ रही होगी।
3: जी दीदी, हृदय से धन्यवाद करते हुए आपको बताना चाहता हूँ।

0: मथुरा में बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं है,
1: हाँ
0: तापमान लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है और रात में 24 डिग्री सेंटीग्रेड को जाता
1: अरे
0: है।
1: हाँ,
0: मौसम बहुत ही खूबसूरत सुहाना है और लू की चपेट में बिल्कुल नहीं है।
1: क्या बात है। मतलब मथुरा का हमने सुना था गर्मी बहुत तेज पड़ती है इन दिनों में।
0: जी दीदी, पिछले 3-4 दिन पहले बारिश हुई थी और रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ी थी, ठंडी ठंडी हवाएं चली थी, जिसके
1: हाँ,
0: कारण कि तापमान 42 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया है।
1: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर कोई वहां विजिट करना चाहे तो अभी आराम से आ सकता है।
0: जी, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम है, भ्रमण करने लायक है। और जो देवालय हैं यहाँ पे, शिवालय हैं अनेकों, लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली भगवान की, वो
1: जी,
0: सब दर्शन करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी।
1: बहुत अच्छी बात है। ये जानकारी हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगी और हमारे बाकी श्रोताओं के लिए भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी। अच्छा, अब ये बताइए, आज का प्रोग्राम है फोन करे गीत सुने, तो आज आपने कौन से गीत सुनने की फरमाइश है आपकी?
0: दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है शोर,
1: शोर।
0: अनिरुद्ध कपूर साहब की आवाज में।
1: हाँ,
0: जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, ये प्यारा सा पूरा गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रेरणादायक है।
1: अच्छा, जीवन चलने का नाम।
0: जी
1: देखते हैं हम ये गीत, हमारे पास वैसे तो है 99.9% है ये गीत, फिर भी एक बार
0: निश्चित
1: मैं
0: रूप
1: चेक
0: से
1: कर
0: ये
1: लेती
0: गाना
1: हूँ।
0: है आपके पास। जी,
1: क्यों नहीं दिख रहा ये भाई?
0: 101% श्योर।
1: हाँ, होगा वो
0: जी
1: तो। और सुनाइए शारदा जी, फैमिली में कौन कौन है आपके?
0: दीदी, मैं हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, एक
1: अरे
0: नाती
1: वाह,
0: है, एक नतनी है,
1: अच्छा अच्छा
0: और
1: जी,
0: हम सब एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे रहते हैं
1: हाँ,
0: आनंद पूर्वक, और आप लोगों से वार्तालाप करते रहते हैं रेडियो
1: अरे
0: सुनने में
1: वाह,
0: और
1: मतलब
0: परिवार
1: आपके
0: में
1: घर
0: ही।
1: के सभी लोग है ना गीत संगीत से
0: जी
1: जुड़े हैं और हमारे आकाशवाणी रेडियो से जुड़े हुए हैं।
0: जी जी निसंदेह।
1: ठीक है शारदा जी, आपकी पसंद का गीत मेरी नजरों के सामने है, तो कल आप अपनी पसंद का गीत इस प्रोग्राम में सुन सकेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो चुका है, तो आप आज जो रिकॉर्ड करेंगे वो कल सुनेंगे, तो कल
0: दीदी,
1: 11 बजे अपना।
0: मैं
1: हाँ
0: करीब 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, जब से ये रिकॉर्डिंग ये प्रोग्राम चालू हुआ है
1: हाँ
0: तब से मैं जुड़ गया हूँ। पहले मैं प्रयास करता था लेकिन मेरा फोन कभी लगता नहीं था लाइव प्रोग्राम में, और जब से रिकॉर्डेड हो गया है तो
1: अच्छा,
0: मैं 8 दिन 10 दिन के अंदर से लगाता हूँ और मेरा
1: हाँ जी,
0: फोन आराम से लग जाता है।
1: चलिए धन्यवाद शारदा जी। और बस एक विनती करेंगे कि एक हफ्ते बाद ही दोबारा कॉल कीजिएगा।
0: हाँ दीदी, मैं 10 दिन में करता हूँ, 9 दिन में 10 दिन करता हूँ,
1: चलिए
0: इससे
1: ठीक
0: पहले
1: है,
0: मैं नहीं करता हूँ। मेरा
1: बिल्कुल
0: फोन
1: बिल्कुल।
0: 28 तारीख को लगा था और 28 के बाद आज लगा रहा हूँ।
1: ओके, धन्यवाद शारदा जी।
0: बहुत बहुत हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं का।

0: हेलो हेलो
1: कार।
0: हेलो। हाँ जी नमस्कार।
1: हाँ, मैं ग्राम बालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ।
0: अच्छा कन्हैयालाल जी।
1: हाँ जी,
0: अभी भी जो हमारे पहले श्रोता थे वो भी प्रजापति और आप भी प्रजापति।
1: सही है।
0: बड़ा संयोग है ये तो।
1: सही बात है मैडम।
0: हाँ जी, बस वो कन्हैयालाल जी मथुरा से बोल रहे थे और ये वो कन्हैयालाल जी नहीं थे, क्षमा कीजिए, वो शारदा प्रसाद जी थे प्रजापति और मथुरा
1: अच्छा,
0: से, और ये
1: हाँ
0: मथुरा से कन्हैयालाल जी आ गए हैं उज्जैन से, क्या बात है।
1: हाँ बहुत बढ़िया बात है। हाँ,
0: बहुत ही बढ़िया
1: मथुरा
0: संयोग
1: से उज्जैन आ गए, गोकुल गोकुल
0: भाई।
1: पढ़ने के लिए आ
0: बिल्कुल
1: गए
0: बिल्कुल
1: हैं
0: बिल्कुल सही बात
1: अभी
0: है। हाँ तो चलिए कन्हैयालाल जी, अब बताइए, पहले तो आप अपने हाल बताइए कि हाल कैसे हैं आपके।
1: बस। हाल क्या है, गर्मी बहुत भयंकर गिर रही है इधर तो। अब आराम कर रहे हैं या खाना खा करके?
0: सही बात है, गर्मी तो है। दो
1: नाश्ता
0: तीन दिन से
1: वास्ता हो
0: थोड़ी
1: गया
0: सी
1: कुछ?
0: राहत मिली है ना, थोड़ी बूंदाबांदी की
1: हाँ
0: वजह
1: हाँ
0: से।
1: हाँ भोजन वोजन करके आए और हरदेव लाला आराम
0: हाँ
1: कर रहे हैं, इतनी भयंकर गर्मी गिर रही है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो कन्हैयालाल जी, गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: वो फिल्म जीने की राह सुना दीजिए।
0: जीने की राह।
1: हाँ।

0: मस्तानी है मेरी महबूबा।
1: जीने की राह तो मिल गया है,
0: मेरी महबूबा।
1: लेकिन इसमें देखिए ना, जीने की राह तो मूवी मेरे सामने है, बिल्कुल ठीक है, मिल गया आपकी पसंद का गीत भी मिल गया, है ना। चलिए तो कल हमारे प्रोग्राम में आप ये गीत सुन सकेंगे।
0: और आपके इधर किसने क्या गर्मी है अभी इंदौर?
1: हमारे यहाँ भी अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, लेकिन अभी थोड़ी बारिश हो गई थी तो 2 दिन से कुछ राहत कह सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा, रात में से सुन लिया।
1: जी जी चलिए, धन्यवाद कन्हैया लाल जी कॉल करने के लिए, और एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा, ऐसी गुजारिश है।
0: ओके ओके, धन्यवाद
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, नमस्ते।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी, स्वागत है आपका फोन करे गीत सुने कार्यक्रम में।
1: जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी
0: प्रेम सिंह सिसोदिया
1: मैडम
0: जी कहाँ से? नागदा से।
1: जी, हाँ, नागदा तहसील लगता है और ग्राम बछोड़ा है हमारा, उज्जैन जिले में लगता
0: जी
1: है।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेम सिंह जी। और कॉल
1: जी थैंक
0: कितने
1: यू सो
0: दिनों बाद
1: मच।
0: कर रहे हैं आप?
1: जी समझ में नहीं आया।
0: मैंने कहा फोन कितने दिन बाद लगा है आपका रेडियो में।
1: जी 10 दिन बाद लगा है आज कॉल मेरा।
0: अच्छा जी, चलिए फिर ठीक
1: जी
0: है।
1: हाँ
0: और बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी, फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी और गाने के बोले लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा के झोंके से। जी
0: अच्छा, क्या करते
1: जी
0: हैं आप ये तो बताइए।
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, भजन गायक हैं
1: जी
0: तो उसे
1: जी
0: भजन
1: हाँ,
0: गाते
1: हमारे
0: हैं।
1: 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है
0: हाँ
1: जी, उसमें हम 4 लोग गाने वाले हैं, 2 हारमोनियम बजाते हैं
0: हाँ
1: और 2 लोग ढोलक और तबला बजाते हैं। और दीदी
0: हाँ
1: आपको बताओ, मतलब हफ्ते 8 दिन 10 दिन में हमारा प्रोग्राम मतलब होता ही हो जाता है हमारे आसपास के एरिया में।
0: अच्छा, बड़ी अच्छी
1: जी
0: बात है।
1: हाँ, और उसके साथ में मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ 2005 से। पहले फोन इन प्रोग्राम कम आते थे, फोन इन के अलावा पत्रों द्वारा भी मैंने कई बार फरमाइश भेजी थी आकाशवाणी
0: हाँ
1: भोपाल
0: हाँ
1: पर।
0: जी
1: और
0: जी
1: एक आकाशवाणी भोपाल से मतलब रविवार की सुबह प्रोग्राम आता था आपके फोन, मतलब पत्रों पर आधारित होता था जी। उसमें मतलब चिट्ठियां डालते थे, मतलब उसमें है ना पूरे हफ्ते की जानकारी के बारे में बताते थे सभी
0: अच्छा, मतलब
1: लोग।
0: काफी टाइम हो गया आपको रेडियो से जुड़े हुए। हाँ
1: जी हाँ, और उसमें है ना एक दिन ऐसा भी और विशेष होता था कि
0: हाँ
1: श्रोताओं को मतलब आकाशवाणी के वहां से फोन आता था, वो श्रोता से जानकारी लेते थे वो आकाशवाणी के बारे में, कौन सा प्रोग्राम कैसा लगता है, किस प्रोग्राम में उतार चढ़ाव की जरूरत होती है, मतलब ऐसा मतलब है
0: हाँ
1: ना
0: जी।
1: आकाशवाणी स्टूडियो से कॉल लगाते थे और मुझे भी कई बार ऐसे कॉल आते थे वहां से।
0: अरे
1: जी,
0: वाह, क्या बात है। तो चलिए, मतलब अब
1: और एक बार और
0: अपना
1: है, जैसे युवाणी प्रोग्राम आता था ना, युवाणी
0: अभी भी
1: आकाशवाणी
0: आता
1: भोपाल
0: है।
1: के।
0: हाँ हाँ
1: जी हाँ, उसमें एक फोन इन प्रोग्राम आता था हेलो जीनियस
0: हाँ
1: करके,
0: हाँ
1: उसमें 5 सवाल पूछे जाते थे और जो जीनियस होते थे उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाता था,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: मैं भी एक बार वहां पे जीनियस बना था।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो प्रेम सिंह जी,
1: जी
0: अपना ये लगाव आकाशवाणी से बनाए रखिएगा और कल के प्रोग्राम में अपना गीत सुनिएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आकाशवाणी की जितने भी मतलब मैं कार्यक्रम सुनता हूँ ना, उनको बड़ा ध्यान से सुनता हूँ और सभी को मतलब ऐसा
0: हाँ
1: रखता
0: हाँ
1: हूँ लिखकर।
0: चलिए, धन्यवाद।
1: जी थैंक यू सो मच।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते
0: हाँ जी नमस्ते।
1: मैम, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते पहुँचे
0: जी शुभ नाम आपका।
1: पंडित शिवनारायण तिवारी दादा
0: जी शिव
1: जी।
0: नारायण जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत दिन बाद फोन भी लगा रहे हैं।
0: अच्छा, क्या हाल है आपके?
1: बढ़िया है हाल चाल, गर्मी भी थोड़ी रफ्तार पकड़ रही है।
0: और घर में सब
1: और
0: कैसे हैं?
1: आप ठीक
0: हाँ
1: हैं
0: हम बढ़िया हैं।
1: जी?
0: तो बताइए कौन से गीत सुनेंगे?
1: आज सुनाना सड़क फिल्म का
0: सड़क फिल्म का
1: जी,
0: कौन सा वाला गीत?
1: ओ जब जब प्यार पे पहरा हुआ,
0: अरे वाह, क्या बात है। बहुत प्यारा गीत है ये।
1: हम बिल्कुल सदाबहार गीत सुनते हैं मैम।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है। और कुछ गीत तो ऐसे हैं जो कितना भी सुन लो लेकिन उनसे आप ऊबते नहीं हो,
1: जी
0: है
1: मैम,
0: ना?
1: बिल्कुल
0: ठीक है, ये गीत हम आपको बिल्कुल सुनवाएंगे। तो कल 11 बजे अपने प्रोग्राम में ये गीत अपनी पसंद का जरूर सुनिएगा।
1: जी मैम,
0: जी
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो। हाँ
1: हेलो,
0: जी, स्वागत है
1: नमस्ते
0: आपका।
1: मैम।
0: नमस्ते। अच्छा,
1: मैम शिवानी मेरा बात करी नीमच से। जी
0: शिवानी,
1: मैम,
0: पूरा नाम क्या है आपका?
1: मेहरा,
0: शिवानी मेहरा।
1: शिवानी मेहरा,
0: कहाँ से? नीमच
1: नीमच
0: से।
1: से। जी
0: कैसी हैं शिवानी जी?
1: मैम, आप अच्छी हो? मैं, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। और अभी गर्मी के मौसम में क्या स्पेशल प्लान किया है आपने?
1: मैम अभी तो कहीं हम निकल नहीं पा रहे क्योंकि इतनी गर्मी है।
0: कहीं घूमने जाने का, हिल स्टेशन पे जाने का प्लान नहीं किया?
1: नहीं मैम, बहुत गर्मी पड़ रही है नीमच में, अभी कहीं
0: हाँ,
1: निकलने के भी नहीं है अभी तो,
0: ये बात तो सही है। फैमिली में
1: क्योंकि
0: कौन
1: आप
0: कौन है
1: देखते हो।
0: शिवानी
1: हाँ,
0: जी आपके? कौन कौन है फैमिली में?
1: फैमिली में मैं, मम्मी,
0: हाँ।
1: पापा, मेरे से दो छोटी सिस्टर और एक भाई है।
0: अच्छा, और आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो घर पर बैठे खाना वाना बना रही होती है, और फिर मैंने की फोन इन प्रोग्राम आ रहा, मैंने ट्राई करती हूँ।
0: चलो ठीक है। तो शिवानी जी, कौन सी पसंद, मतलब कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप कल?
1: मैम सागर मूवी का
0: अरे
1: चेहरा
0: वाह।
1: ये चांद खिलाए।
0: बहुत प्यारा गीत है ये तो।
1: जी मैम,
0: तो हम आपको ये गीत जरूर सुनवाएंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे आपका, और आप
1: जी
0: कल
1: मैम,
0: के प्रोग्राम में अपनी पसंद का गीत जरूर सुनिएगा शिवानी जी। कॉल
1: थैंक
0: करने
1: यू
0: के लिए
1: मैम।
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते, मैं देवास मध्य प्रदेश से राजू अग्रवाल बोल रहे हो दीदी।
0: हाँ राजीव जी, आपसे एक बार और बात हुई थी हमारी।
1: हाँ बिल्कुल।
0: कैसे हैं आप?
1: आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं कविता रावत बोल रही हूँ।
1: हाँ, धन्यवाद।
0: कैसे हैं राजीव जी?
1: बढ़िया है दीदी। आप जैसे फरमाइश कार्यक्रम करते हो, आपकी फरमाइश जो आता है तो
0: हाँ जी।
1: उसमें क्या है कि जैसे लेटर ज्यादा लिया करो आप।
0: चलिए।
1: जैसे ऐसा बोलते हो सोता साथी, वो तो सोते ही पसंद बस पसंद आप सबकी में सब आ जाता है। आप बोलते हो ना तो थोड़ा सा लेटर उसमें बढ़ाओ, और हमारे देवास के लेटर तो शामिल ही नहीं हो रहे हैं।
0: वो इत्तेफाक है, इतना बड़ा बंडल होता है, उसमें से हम कुछ लेटर सिलेक्ट करते हैं तो जो हाथ में आते जाते हैं ऐसा रहता है। पर कोशिश करेंगे आपका पत्र भी हम शामिल करें।
1: मध्य प्रदेश एमपी के लेटर कम शामिल हो रहे, और एक ही एक लेटर रोज शामिल हो रहे हैं। जैसे आपने जो कल लिया वही आज वापस वो का वही शामिल हो गया। तो हमारा ये आपसे अनुरोध है कि जैसे सबके लेटर शामिल होने चाहिए।
0: बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक पत्र पढ़ें। और
1: जी,
0: चलिए अभी तो आज के
1: और
0: लिए
1: जैसे
0: बताइए कि
1: कि
0: कौन सा
1: आप
0: गीत सुनना चाहते हैं।
1: आज तो दीदी जैसे ये अजीज नाजा जो कव्वाल है मशहूर, 7 मई का उनकी मतलब डेथ का
0: देखिए,
1: दिन है। जी
0: आप एक बात भूल रहे हैं, यहाँ पर है ये फिल्मी गीत। फिल्मी गीत आपको सिलेक्ट करने हैं जो अपने
1: हाँ,
0: फिल्मों के।
1: फिल्मी गीत पुतली बाई पिक्चर का सुनवा दीजिए। उन्हीं का गाया हुआ गीत है कोई सा,
0: अच्छा
1: उसमें
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: पुतली बाई का
0: हाँ हाँ
1: वाला सुनवा दीजिए। नहीं तो फिर ये
0: पुतली
1: लेडीज
0: बाई का
1: सिंगर
0: कौन सा
1: उसका
0: वाला?
1: कोई सा भी, जैसे इन्हीं का गाया हुए गीत है उसमें झूम बराबर झूम शराबी, ये भी है और दूसरा भी है गीत।
0: नहीं, इसमें झूम बराबर
1: और
0: झूम तो
1: या
0: नहीं।
1: फिर लेडीज टेलर पिक्चर का दो चाहने वालों की मुलाकात है वल्ला, पुतली
0: देखते हैं ये है कि नहीं है।
1: बाई का देख लो पहले, अजीज नाजा साहब का गाया।
0: नहीं, है इसमें पुतली बाई का तो नहीं
1: जी
0: है। पुतली बाई का जो गीत आप बता रहे हैं
1: हाँ,
0: वो नहीं है इसमें।
1: अजीज नाजा जी का नहीं है गीत,
0: नहीं,
1: तो फिर ये यही सुना दो, लेडीज टेलर पिक्चर का दो चाहने वालों की मुलाकात है वल्ला,
0: लेडीज टेलर।
1: रफी साहब और लता जी,
0: अच्छा,
1: मजरू साहब और लक्ष्मीकांत
0: हाँ
1: प्यारेलाल।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये है हमारे पास लेडीज टेलर का गीत, दो चाहने वालों की।
1: हाँ मुलाकात है वल्ला।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लोकेन वर्मा भी इसे की फरमाइश इसी की फरमाइश कर रहे हैं
0: चलिए ठीक है। तो ये
1: कुछ
0: गीत आप
1: कहने।
0: बिल्कुल सुनिएगा कल के प्रोग्राम में, और कॉल करने
1: धन्यवाद।
0: के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो। हाँ
0: हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: दीदी, नमस्ते।
1: क्या शुभ नाम है आपका?
0: रणपाल से गुर्जर, ग्राम बाबूपुरा, तहसील ख्वाज, जिला जौनपुर से बोल रहा हूँ दीदी।
1: आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई, एक बार रिपीट कीजिए।
0: सुरनपाल से गुर्जर, ग्राम बाबूपुरा, तहसील ख्वाज, जिला जालौन से बोल रहा हूँ।
1: जालौन से गुर्जर है ना?
0: हाँ
1: जालौन से गुर्जर जी बोल रहे हैं?

0: सुरेंद्र पाल जी गुर्जर, ठीक है ठीक है। तो सुरेंद्र पाल जी, क्या हाल है आपके?
1: अच्छा है, बढ़िया
0: गर्मी
1: चल
0: कैसी
1: रहा है
0: निकल रही
1: आपका।
0: है? जालौन में गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: हाँ, अभी तो बारिश हो जाती है तो गर्मी कम है फिलहाल में, हल्की
0: चलिए।
1: फुल्की बूंद बांद हो जाती है
0: हाँ हाँ
1: तो अब गर्मी से राहत है इस समय।
0: चलिए। और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: उपकार का सुना दीजिए, मेरे देश
0: अच्छा।
1: की धरती सोना उगले।
0: ठीक है। उपकार का मेरे देश की धरती, बिल्कुल बहुत ही अच्छा गीत आपने पसंद किया है। और कुछ कहना चाहेंगे? आपने कॉल कितने दिनों में किया है? और
1: हो गया 2 माह 3 के लगभग
0: अच्छा, चलिए ठीक है। क्योंकि
1: एक
0: हमारे
1: बार।
0: यहाँ एक ये नियम है कि 1 हफ्ते के पहले किसी भी कॉलर का कॉल रिपीट नहीं लेते हैं।
1: नहीं,
0: ठीक
1: दो
0: है,
1: तीन माह हो गए करीब करीब।
0: चलिए। धन्यवाद कॉल करने के लिए सुरेंद्र जी। और आप अपना पसंद का गीत कल सुन सकते हैं, अपनी पसंद का गीत। ठीक
1: एक
0: है
1: बात, जिज्ञासा है हमारी दीदी,
0: हैं?
1: एक जिज्ञासा है जो आप 11 बजे से फोन करते, वो उन लोगों रिकॉर्डिंग क्या
0: हाँ,
1: बजे से होती
0: वो
1: है?
0: अब रिकॉर्डिंग होती है 10:30 बजे से, एक दिन पहले। आज जो अपन
1: अच्छा
0: बात कर रहे हैं ना, ये कल
1: हाँ जी,
0: 11 बजे प्रोग्राम में आप सुन पाएंगे।
1: यही
0: ठीक,
1: जिज्ञासा थी। चलिए
0: हाँ जी, चलिए। थैंक यू वेरी मच।
1: धन्यवाद,
0: नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी, नमस्ते।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: हेलो मैम, नमस्ते।
1: हाँ विपिन जी, नमस्ते।
0: क्या बात है, मैं कॉल मतलब घंटी गई नहीं और आपने उठा लिया, इसलिए ध्यान
1: नहीं,
0: ही नहीं
1: घंटी तो
0: गया
1: यहाँ पर आई है, आपको ऐसा
0: जी।
1: वहां पर फील हुआ होगा, यहाँ पर तो घंटी
0: बिल्कुल,
1: बाकायदा आई।
0: लेकिन आप तुरंत पहचान गई मुझे।
1: अब हमारे पुराने श्रोता जितने हैं और इतनी बार बात कर चुके हैं तो आवाज से पहचान ही जाते हैं।
0: हाँ, पर
1: और
0: हमारे लिए तो है ना, आप एक लॉटरी की तरह रहती हैं, पता नहीं कौन निकलेगा।
1: तो आपने पहचान लिया कि हम कौन हैं?

0: है।
1: हाँ,
0: अच्छा,
1: आपके यहाँ भी गर्मी हो रही होगी।
0: हमारे यहाँ भी गर्मी है, लेकिन वही सेम सीन, 2 दिन पहले बारिश
1: हाँ
0: हो गई तो थोड़ी सी राहत हुई है।
1: हाँ पहले जो 10 दिन पहले गर्मी थी ना, उससे तो थोड़ी सी
0: हाँ
1: कम है अभी।
0: वही वही। और सब कुछ परिवार में सब शुभ मंगल?
1: हाँ जी बिल्कुल, सब बढ़िया अच्छा है। और आकाशवाणी भोपाल मध्य प्रदेश का फिर सारा सुनते हैं, और आप लोगों से बातें भी करते रहते हैं समय समय पे, तो अच्छा लगता है।
0: अच्छा, गीत बताइए अपनी पसंद का।
1: हाँ जी बिल्कुल, फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो, और इसी का गाना सुना देना, मुझे तुम मिल गए हमदम, लता जी की आवाज में गीत है
0: अच्छा ठीक है,
1: जी।
0: बिल्कुल
1: और मैम दो तीन दोस्तों के नाम लेना चाहूंगा
0: हाँ बताइए।
1: जी। हमारे दोस्त हैं राहुल जी हैं मंडला से, और जगत सिंह जी हैं पिपरिया से, और वंदना उपाध्याय जी हैं जबलपुर बरेला से, और लक्ष्मण रैकवार हैं रघुवीर पंडा गोलू हरबार, और सभी के लिए और आपके लिए भी
0: थैंक यू वेरी मच विपिन जी। चलिए
1: जी।
0: अब एक
1: थैंक यू
0: हफ्ते
1: जी,
0: बाद आपसे दोबारा बात होगी।
1: शुक्रिया,
0: जी
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर भारत की अविनाशी शक्ति और सनातन आस्था का प्रतीक है। श्री शाह ने आज सोशल मीडिया में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उससे जुड़ी अपनी दिव्य अनुभूति पर एक भावपूर्ण लेख लिखा है, जिसे सभी देशवासियों को पढ़ना चाहिए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विकास, साझेदारी, वैश्विक कार्यबल, आपातकालीन सहायता में भारत की भूमिका और नई पहल पर जोर देते हुए वैश्विक नीति में राजनीति में भारत की भूमिका रेखांकित की है। डॉ एस जयशंकर ने सूरीनाम के पारामारिबो में प्रगति के लिए साझेदारी विषय पर सत्र को संबोधित किया। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तारीख 15 मई है। कल तक 60,000 से ज्यादा पंजीयन किए जा चुके हैं। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राजधानी भोपाल में वॉकेथॉन का आयोजन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश के रहमानखेड़ा में शुरू हुए 2 दिवसीय फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काम चोर का एक गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इंदिवर ने इस गाने को लिखा है और राजेश रोशन ने संगीत से सजाया है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोट से। लिखने वाले हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। औरंगाबाद से लिखने वाले हैं राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नीला आकाश से, आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। इस गाने को पसंद किया है, लिखने वाले हैं गौतम नगर जिला नादेड़ से प्रभाकर चौधले और आरती चौंदले, और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सारणी जिला बैतूल से, लिखने वाले हैं अमित खातन खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाली यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि बाग और पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं कोरवाई जिला विदिशा से जावेद अली, साबिर अली और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म जिद्दी से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों की। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, एस डी बर्मन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कोटबा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। साथ ही ये पत्र है दोबीहा नेवादा गाजीपुर से लिखने वाले हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय ने इस गाने के लिए फरमाइश भेजी है। सुनते हैं ये गीत।

अगले गाने को लिया है हमने फिल्म लैला मजनू से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नेपाल पैलेस सागर से, लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका, रॉबिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है बनिया भारत धमतरी छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं रामचंद माखीजा काफिर, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा और संपर्क माखीजा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में खत आया घंटाघर चौक खंडवा से, लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया का परिवार। तो सुनते हैं ये गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रिंस का एक गीत, आवाज मोहम्मद रफी की है, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है।

अभी आपने जो दो गाने सुने उन दोनों की मिली जुली फरमाइश इस तरह है। नेपाल पहले सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य रिंगनी, छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, यह लिखा है इन्होंने ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां ताज मोहम्मद, और इन्होंने ये लिखा है आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार से। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई थी छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झवेंद्र कुमार वर्मा, महादेव अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए जो आप अगला वाला सुनने वाले हैं उसकी फरमाइश है सपना संगीता रोड इंदौर से लिखने वाले हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी कुंती साहू, छत्तीसगढ़ लच्छनपुर से इन्होंने ये पत्र भेजा है। और अगला गाना है माँ और ममता फिल्म का, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है।

इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जादूगर को सलाम की नवी कड़ी।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओ, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की 9वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी बोध का नाट्य रूपांतरण।
1: हाँ तो बच्चों, दो दुनी
2: चार,
1: पांच सत्ते
2: पैतीस,
1: ग्यारह निम्मे
2: निन्यानवे।
3: कहां से जंगल में आ फंसा? यदि किसी अन्य विभाग में नौकर होता तो आज हाथ में चार पैसे होते, आराम से जीवन कटता। हमसे तो मजदूर ही भले। और मेरे बगल में जो पड़ोसी हैं, उनको देखो, और एक मैम और एक वो दोनों हैं। जी हाँ, मैं इन्हीं दोनों की बात कर रहा हूं। एक हैं ठाकुर अतिबल सिंह, थाने में हेड कांस्टेबल साहब, और दूसरे हमारे पड़ोसी मुंशी बैजनाथ, तहसील में पटवारी। दोनों ने क्या भाग्य पाया है। हालांकि दोनों का वेतन मुझसे ज्यादा नहीं है, परंतु दोनों का जीवन मुझसे बेहतर है। शाम हुई नहीं कि हमारे कांस्टेबल साहब खमीरा पीकर मस्त हो जाते हैं, आराम कुर्सी पर पसर जाते हैं। और दूसरे मुंशी जी, उनका तो कहने क्या, अरे कचहरी से आते ही बच्चों को पैसे और मिठाइयां बांटते हैं, घर में पकवान बनते हैं, घर में सब सुख सुविधाओं का सामान है, एक बोतल रोज की साफ कर जाते हैं। और तो और, नशा चढ़ने पर बेतान की तान कर पूरे मोहल्ले की नींद उड़ाते हैं, सो अलग।

देखो तो सही, ये दोनों तो इतना भी नहीं जानते कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, सूर्य पृथ्वी का नहीं। साधारण से पहाड़ों तक का ज्ञान नहीं है।

0: मगर ईश्वर ने इन पर पूरी कृपा दृष्टि की हुई है। बाजार निकल जाएं तो बनिए उठ उठ कर सलाम करते हैं इन्हें। चार पैसे की चीज टके में लेकर आते हैं टके में। और एक मैं हूं पंडित चंद्रधर, प्राइमरी स्कूल में मास्टर। यहां तो महीना भर प्रतीक्षा करने के बाद 15 रुपए देखने को मिलते हैं, न खाने का सुख न पहनने का आराम। भाग्य ने कौन सा बड़ा तीर मार दिया जो कभी शेर आ शेर दूध भेज दिया, थोड़ी सी सब्जियां भेज दी। अरे कौन सा मुझ पर एहसान करते हैं, मैं इनके बच्चों को नहीं पढ़ाता क्या? बातें तो सुनो इनकी।
1: पंडित जी, ये तीनों लड़के आवारा हुए जाते हैं, जरा इनका ख्याल रखिएगा। अब आप तो जानते हैं मुझे थाने से फुर्सत नहीं मिलती, और अगर थोड़ी बहुत मिल भी जाती है तो फिर ये काला अक्षर मेरे लिए भैंस बराबर।
0: अजीब बात तो ऐसी करते हैं जैसे इनका गुलाम हूं मैं, लेकिन लेकिन करूं क्या? अजी नाराज भी तो नहीं कर सकता इन दोनों को। अरे ये हैं तो कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते हैं, अचार चटनी चखने को मिल जाती है, बाजार से सामान भी सस्ता ही मिल जाता है। भाग्य के इस कड़वे घूंट को मुझे पीना ही पड़ेगा। अरे क्या कोशिश नहीं की मैंने इस स्थिति से उभरने के लिए, बड़े बड़े अफसरों से खुशामद दरामद की, प्रार्थनाएं भी की, लेकिन हार थक कर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ही रही, वही स्कूल टीचरी। लेकिन मैं अपने गांव में कोई कमी नहीं आने देता भाई, ठीक समय पर स्कूल जाता हूं और देर से घर वापस आता हूं, और बच्चों को मन लगाकर पढ़ाता हूं, तभी तो सभी अफसर खुश हैं मुझसे। साल में कभी कभार इनाम भी मिल ही जाता है। वो बात अलग है कि अध्यापन विभाग की वेतन वृद्धि ऊसर की खेती है, बड़े भाग्य से हाथ लगती है। बस्ती के लोग भी मुझसे संतुष्ट हैं। ये मेरे परिश्रम के कारण ही तो हुआ है कि छात्रों की संख्या बढ़ गई है, छात्र भी मुझ पर जान देते हैं जान। हाँ अरे कोई बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता है। अब बस मेरे लिए तो यही बात।

0: आओ आओ ठाकुर साहब आओ, मैं आप ही को याद कर रहा था।
1: याद कैसे नहीं करोगे, चोली दामन का साथ जो ठहरा।
0: अरे भाई आप तो बारिश में भीग गए, बैठिए।
1: हाँ भाई, मुंशी जी मेरे मन में अयोध्या जी के दर्शन का विचार आया है और वही सलाह करने आपके पास आया हूँ।
0: नेकी और पूछ, मैं खुद आपसे इसी बात का जिक्र करने वाला था। सुना है बड़ा भारी मेला लगा हुआ है।
1: जी हाँ, लेकिन दूर की यात्रा है, सह परिवार जाने में समस्या नहीं आएगी। अब पांच घर वाले तो हम ही हो जाएंगे।
0: वही तो मैं कहना चाहता हूँ, आपकी भाभी और दोनों बच्चों ने मेले में जाने की जिद पकड़ रखी है, हफ्ते भर की छुट्टी हो जाएगी।
1: आप हाँ करो तो उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। वो आपने पंडित जी है ना, उनको भी साथ ले लेते हैं, उनके आने जाने का खर्चा हम मिलकर बांट लेंगे।
0: बात तो बड़े पते की है, मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम निकलते हैं। इसी बहाने पंडित जी को भी अयोध्या जी के दर्शन हो जाएंगे।
1: एक हफ्ता बिल्लौर में न रहने से उनके कौन से काम रुक जाएंगे। लीजिए, आखिरकार अयोध्या जी की यात्रा की वो शुभ घड़ी आ ही पहुंची।
0: पंडित जी गाड़ी तो ठीक समय पर ही है ना?
2: जी मैंने पता कर लिया है, 1.5 घंटे देर से है, इसीलिए तो भीड़ भाड़ बढ़ती जाती है। अजी बेहतर होगा कि खाना पीना अभी कर लिया जाए।
3: ये ठीक रहेगा।
4: कृपया ध्यान दीजिए, अयोध्या जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अब से बस कुछ ही समय में आने वाली है।
1: चलो भाई सब लोग अपना सामान ठीक से देख लो, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। पंडित जी जरा हाथ तो बटाइए।
2: अरे बच्चों बच्चों तुम लोग आगे आ जाओ।
0: अजी तुम तो हो, देखो देखो चुन्नी का हाथ छूटा जाता है। अरे हटिए भाई साहब, जरा जगह दीजिए, बच्चे हैं। अरे दिखता नहीं क्या, बच्चे हैं, हटिए हटिए।
1: अरे ओ मेरा बिस्तर बन लिए कहाँ जा रहा है, रास्ता देख, आगे बढ़ने दो, हटो पीछे, हट हट। देखता नहीं महिला है।
2: अरे अरे रास्ता, अरे रास्ता तो दो। अरे मेरी तो चटनी बना दी कमबख्तों ने। अरे अरे मुंशी जी, ओ मुंशी जी, अरे मुंशी जी कौन से डिब्बे में चढ़े जा रहे हैं?
1: पंडित जी चढ़ने दीजिए, आइए हम सब इसी डिब्बे में चढ़ जाते हैं। इस आफत में कौन किसकी राह देखता है, बाद में तो सब एक ही जगह मिल जाएंगे।
0: अरे भगवान तुम बच्चों को लेकर आगे चलो, चुन्नी लगा लाना हो।
5: अरे भाई
0: अरे हटिए भाई साहब, जगह दीजिए।
1: अरे इस कंपार्टमेंट में तो 4 ही आदमी है, यहाँ बैठने की जगह अवश्य निकल आएगी। उठो।
6: हैं? क्या उठे जी,
1: देखते नहीं है, हैं? हम खड़े हुए हैं। बैठो जी, आप बैठो, आप बैठो।
6: तुमने बैठने का ठेका लिया है क्या?
1: क्या हमने किराया नहीं दिया है?
6: जिसे किराया दिया हो उससे जाकर जगह मांगो।
1: जरा होश की बातें करो, इस कंपार्टमेंट में 10 यात्रियों को बैठने की आज्ञा है।
6: जरा जबान संभाल कर बात कीजिए।
1: तुम कौन हो जी?
6: हम वही हैं जी जिस पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था, भूल गए? और जिसके दरवाजे से आप नकद 25 रुपए लेकर टले थे।
1: आहा, अब पहचाना, परंतु मैंने तो तुम्हारे साथ रियायत की थी, चालान कर देता तो तुम सजा पाते।
6: और मैंने भी तो तुम्हारे साथ रियायत की है कि गाड़ी में खड़े रहने दिया, धकेल देता तो तुम नीचे गिर जाते और तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाती।
7: क्यों दरोगा साहब, मुझे क्यों नहीं उठाते?
1: अगर थाने में होता तो इनकी जुबान खींच लेता।
7: और आप ही क्यों नहीं नीचे बैठ जाते हुजूर? इसमें कौन सी बेइज्जती हुई जाती है? ये थाना थोड़ा ही है कि आपके रौब में फर्क पड़ जाएगा।
1: अरे क्या तुम्हें भी मुझसे कोई बैर है?
7: जी हाँ, मैं तो आपके खून का प्यासा हूँ।
1: मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई, तुम्हारी तो सूरत भी नहीं देखी।
7: जी आपने मेरी सूरत नहीं देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है, इसी

0: कल के मेले की बात है, आपने मुझे कई डंडे लगाए थे, याद है ना? मैं चुपचाप तमाशा देखता था, पर आपने आकर मेरा कचूमर निकाल दिया। मैं चुप रह गया, पर घाव दिल पर लगा हुआ है, आज इसकी दवा मिलेगी।
1: अरे जनाब, आप पांव पसार कर पड़े रहिए, जो भी होगा निपट लेंगे।
2: अजीत ठाकुर साहब, जाने दो, वक्त का यही तकाजा है। वो देखो, तीसरा स्टेशन आ रहा है, वहां उतर कर डिब्बा बदल लेंगे। आइए ठाकुर साहब, डिब्बा बदल लेते हैं। संभाल के। ये क्या, ठाकुर साहब तो मुंह के बल गिर गए। ठाकुर साहब, चोट वोट तो नहीं लगी ना?
3: अगर ये दोनों थाने में होते तो आज बताता ठाकुर अतिबल सिंह चीज क्या है। वो तो गार्ड ने सीटी दे दी और इस डिब्बे से इस डिब्बे में सामान उठाकर रखना पड़ा, नहीं तो गार्ड से कहकर इन्हें हवालात का दरवाजा दिखा देता। अभी ये मुझे क्या धक्का देंगे और क्या मेरा सामान फेंकवाएंगे?
2: अरे इतनी भीड़ में ना जाने मुंशी जी किस हाल में होंगे, दिखाई नहीं दे रहे, देखता हूँ।
4: अजी देखते हो, बैठने की जगह भी तो बने, तिल रखने की जगह तो है नहीं, आप भी पता नहीं किस डिब्बे में आ चढ़े।
5: अरे भगवान, मैं तो पहले ही मना करता था कि इतनी भीड़ में अयोध्या जी की यात्रा कोई हंसी खेल नहीं है। ए भाई साहब, जरा महिला और बच्चों का लिहाज तो करो, थोड़ा सा जरा टिक जाने दो भाई।
6: मुझे तो इस कोयले पानी का ही सहारा है,
7: इसकी पिनक में ही सफर कट जाएगा।
5: चुन्नू की मम्मी, अपनी जगह पकड़े रहना, मैं अभी आया।
4: अच्छा।
6: देखो क्या हाल है, अरे पेशाब घर में भी घुसे पड़े हैं, आदमी को बुलावा आए तो कहाँ जाएगा। ए भाई, ए लघु शंका का दबाव है, बाहर आओ, चलो निकलो, जल्दी करो भाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पी लेता हूँ, आधी बोतल यहीं उंडेल लेता हूँ। अब कम से कम 4-6 घंटे का पता ही नहीं चलेगा, सफर चैन से कट जाएगा। अब बच्चों के पास चला जाए।
4: सुनो जी, आप बहुत देर से खड़े हैं, तनिक टिक जाइए, मैं खड़ी हो जाती हूँ।
6: तुम बैठी रहो, ठीक है? पता नहीं ये पेट में कैसी गुड़गुड़ मची है, अचानक बहुत दबाव बन गया है, मैं अभी आता हूँ।
4: अजी क्या हुआ, आप ऐसे पेट क्यों पकड़े हैं?
6: भगवान, पेट में भयंकर मरोड़ हो रही है, उल्टी भी हो गई, बहुत कष्ट हो रहा है।
4: हाय हाय, आप बैठ जाइए।
6: बैठ नहीं पाऊंगा, फिर दबाव है, होकर आता हूँ, क्या करें, संडास में ही लोग ठुसे बैठे हैं।
4: आइए ऐसा करते हैं, ये प्लेटफॉर्म आ रहा है ना, यहीं पर उतर जाते हैं। चलो बच्चों आओ, आप भी आइए, संभल कर जरा। हाँ बच्चों संभल कर।
2: अरे ठाकुर साहब, मुंशी जी, भाभी और बच्चे, ये लोग तो यहीं उतर गए, सब सामान भी है, पता नहीं क्या माजरा है।
3: अरे ये तो लेट गए, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है, उतारना तो पड़ेगा ही। चलो भाई जल्दी करो।
2: हाँ उतरते हैं, चलो भाई।
4: हाय हाय, ये क्या हो गया, मैं तो हबड़ा तबड़ी में संदूक उतारना ही भूल गई। हाय राम, मेरे तो सारे कपड़े लत्ते पैसे जेवरात सब उसी में ही चले गए, अब क्या होगा जी, अब क्या होगा। हे भगवान।
1: अरे अरे अरे
3: अरे,
1: अरे,
3: अरे भाभी क्या हो गया है, क्यों रो रही हो?
4: देखिए ना भाई साहब, मेरा तो संदूक गाड़ी में ही चला गया, कपड़े और पैसे भी उसी में ही थे।
2: अरे भाभी वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि मुंशी जी को क्या हुआ?
6: क्या बताऊं, इतनी भीड़, इतनी गर्मी, न बैठने को जगह, न खाने की सुविधा, एक आध बार स्टेशन का पानी पी लिया है, उसी से पेट गड़बड़ हो गया, मारे उल्टी दस्त के हालत खराब है।
8: ये प्लेटफॉर्म पर क्यों लेटे हैं, आप लोगों को कहाँ जाना है?

0: लगता है इन्हें हैजा हो गया है और हैजे के मरीज को प्लेटफॉर्म पर ठहरने की अनुमति नहीं है। बेहतर होगा आप इन्हें यहाँ नज़दीक जिला अस्पताल है वहाँ ले जाइए।
1: भाई पंडित जी चलिए सहारा दीजिए, इन्हें वहाँ सामने पेड़ के पास लेटाए देते हैं, तब तक मैं डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ।
2: हाँ ठीक है, आओ भाई जरा हाथ लगा दो भाई। हाँ
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
2: जी हाँ कहिए। यहाँ का मैं कंपाउंडर डॉक्टर और बस सब मैं ही हूँ, सभी मुझे चौकीलाल कहते हैं।
1: आप चलकर उन्हें देख लीजिए।
2: सवेरे के समय तो मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है।
1: तो क्या मुंशी जी को यहीं लाएं?
2: आपका जी चाहे तो ले आइए। हाँ

0: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे हैजे के रोगी को ऊपर लाने की आज्ञा नहीं है।
1: अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अरे ये तो बिल्लोर के ही हैं, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय मुझे पहचानते हैं?
0: जी हाँ, खूब पहचानता हूँ पहचानता हूँ।
1: अरे भाई पहचान कर भी इतना रूखापन, मेरी जान निकल रही है, जरा देखिए मुझे क्या हो गया है।
0: ये सब काम मैं कर दूंगा, और मेरा काम ही क्या है।
2: अस्पताल में कैसी फीस जनाबे मन?
0: वैसे ही जैसी इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाबे मन।
2: आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा।
0: मेरा घर बिल्लौर में है, वहाँ एक थोड़ी सी जमीन है मेरी, साल में दो बार देखभाल करने के लिए जाता हूँ। और मुंशी जी अपना हक वसूल कर लेते हैं, ना दूं तो शाम तक खड़े रहना पड़ता है। जरा सोचिए हमारे साथ इन्होंने क्या किया है। अब मेरी फीस 10 रुपये निकालिए ताकि दवा दूं।
2: 10 रुपये?
0: जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहें तो 10 रुपये रोज।
3: दरोगा जी विवश हो गए, मुंशी जी की स्त्री से रुपए मांगे, मगर रुपए तो बक्से में थे और बक्सा ट्रेन में ही छूट गया था। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे, किसी तरह 10 रुपए निकालकर चोखे लाल को दे दिए और उन्होंने दवा दे दी। दिन भर कुछ फायदा ना हुआ, रात को कहीं जाकर हालत संभली। दूसरे दिन फिर दवा की आवश्यकता हुई। मुंशियाइन का एक गहना जो 20 रुपए से कम न था बाजार में बेचा गया, तब कहीं जाकर काम चला। शाम तक मुंशी जी भी चंगे हो गए। श्री अयोध्या जी में पहुंचकर स्थान की खोज हुई। पंडों के घर पर तो जगह ही नहीं थी, हर घर में आदमी भरे हुए थे। अंत में एक पेड़ के नीचे डेरा जमाना निश्चित हुआ, लेकिन सब जगह यात्री थे। खुले आसमान के नीचे बिस्तर बिछाए गए। इतने में बादल घिराए, बारिश होने लगी। बिजली की गड़गड़ाहट से कान के पर्दे फटे जाते थे, बच्चे रोने लगे, स्त्रियों के कलेजे कांप रहे थे। वहां ठहरना मुश्किल था, पर जाएं कहां। अकस्मात एक आदमी नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई पड़ा। वो जब निकट पहुंचा तब पंडित जी ने उसे देखा, आकृति कुछ जानी पहचानी सी मालूम हुई, तो वो पास जाकर बोले,
4: क्यों भाई साहब, यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए जगह नहीं मिलेगी।
5: अरे आप तो पंडित चक्रधर तो नहीं?
4: जी हाँ, आप मुझे कैसे पहचानते हैं?
5: चरण स्पर्श पंडित जी, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिए। मेरा नाम कृपा शंकर है, मेरे पिताजी कुछ दिनों बिल्लौर में दांत मुंशी रहे थे, उन्हीं दिनों मैं आपकी सेवा में पढ़ाई करता था।
4: ओहो, तो तुम ही हो क्या?

0: स्पर्श किए।
1: कभी कभी सेवक को याद करते रहिएगा।
2: मुझे अब जीवन पर्यंत इसी विभाग की सेवा में रहना है, मेरे लिए तो इससे अलग अब कुछ भी नहीं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की 9वीं कड़ी बोध। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे सतीश कक्कड़, गौहर परवेज, शिमाइला, अशोक शर्मा, हीरेंद्र झा, कुणाल राय और मोइन शमसी। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: संग्रहालय से मैं अभी आपने सुना जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक की 9वीं कड़ी का प्रसारण आप सुन रहे हैं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है जायद उद्यानिकी फसलों पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 10 मई को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 और 2660903 पर फ़ोन करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। भोपाल का एसटीडी कोड 0755 है। सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय 12:58 होने जा रहे हैं। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर भारत की अविनाशी शक्ति और सनातन आस्था का प्रतीक है। श्री शाह ने आज सोशल मीडिया में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उससे जुड़ी अपनी दिव्य अनुभूति पर एक भावपूर्ण लेख लिखा है जिसे सभी देशवासियों को पढ़ना चाहिए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रीम अल हाशिमी के साथ अबू धाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीति साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश के रहमानखेड़ा में शुरू हुए 2 दिवसीय फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाएंगे जहां किसानों को रोगमुक्त पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। निजी क्षेत्र को भी इसमें सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल के भारत भवन में हिन्दी पत्रकारिता के द्विशताब्दी प्रसंग पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श का शुभारंभ किया। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है जिसकी अंतिम तारीख 15 मई है। कल तक 60,000 से ज्यादा पंजीयन किए जा चुके हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी इंदौर है। जी हाँ श्रोताओं, हम बोल रहे हैं।

है मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से दोपहर का 1 बजा है। लीजिए सुनिए महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

नमस्कार प्यारी सखियों, स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा में। स्वीकार कीजिए मेरा स्नेहिल अभिवादन सखियों। कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी चंद पंक्तियों से कि जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां दुनिया संकीर्ण दीवारों से टुकड़ों में विभाजित न हो, जहां शब्द सत्य की गहराइयों से निकलते हो, जहां बुद्धि की निर्मल धारा व्यापक विचार और कर्म की ओर अग्रसर हो, हे परम पिता, उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में मेरे देश को, जी हां मेरे देश को जागृत कर। जी हाँ सखियो, ये पंक्तियाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध प्रार्थना कविता गीतांजलि की है और ये कविता ना सखियो स्वतंत्र सोच, ज्ञान, सत्य और मानवता का संदेश देती है। सखियो, कल यानी 9 मई को बांग्ला कैलेंडर के अनुसार पोचीशे बोईशाख तिथि है, यानी बैसाख मास की 25वीं तिथि, और यह तिथि जानी जाती है रविंद्र जयंती के रूप में। कल गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। सखियों, गुरुदेव साहित्य के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार पाने वाले एशिया के प्रथम व्यक्तित्व थे। वे केवल एक महान कवि नहीं थे बल्कि दार्शनिक, संगीतकार, चित्रकार और समाज सुधारक भी थे। भारत के राष्ट्रगान जनगणमन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी लेखनी से पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति की गहराई से परिचित करवाया। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से गुरुदेव को नमन करते हैं। सखियो, गुरुदेव का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर की रचनात्मकता को पहचानें और शिक्षा को केवल डिग्री नहीं बल्कि संस्कार समझें और मानवता को सबसे ऊपर रखें। सखियो, मानवता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। आज 8 मई को मानवता को समर्पित विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जा रहा है। सखियो, रेड क्रॉस संस्था की स्थापना मानव सेवा के उद्देश्य से की गई थी। युद्ध हो या फिर प्राकृतिक आपदा, महामारी हो या फिर कोई दुर्घटना, रेड क्रॉस स्वयंसेवक सबसे पहले लोगों की मदद के लिए पहुंचते हैं। उनका एक ही धर्म होता है सखियो, वो है मानवता। किसी घायल को अस्पताल पहुंचाना हो, रक्तदान करवाना हो, भूखे को भोजन या दुखी व्यक्ति को सहारा देना, यही सच्ची मानवता है। याद रखिए मेरी सखियों कि मानवता केवल बड़े कामों में नहीं होती बल्कि छोटी छोटी संवेदनाओं में भी दिखाई देती है। एक मुस्कान, एक सहारा और एक मदद का हाथ किसी की जिंदगी बदल सकता है और रेड क्रॉस दिवस हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर की इंसानियत को हर हाल में जिंदा रखें, जीवित रखें और बनाए रखें।

सखियों, जब हम किसी की मुस्कुराहट का हिस्सा बनते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाता है। अभी हमने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में ये बहुत खूबसूरत सा गाना। और सखियों, घर जो है ना, वो सिर्फ ईंटों और दीवारों का नाम नहीं होता, बल्कि ये वो सपना है जहाँ परिवार की मुस्कान बसती है। सखियों, आज भी कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है। किसी का जीवन कच्ची झोपड़ी में बीत जाता है तो कोई किराए के छोटे से कमरे में संघर्ष करता रह जाता है। ऐसे लोगों को अपने खुद के घर के सपने को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने शुरू की है प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हाँ सखियों, इस योजना का उद्देश्य है हर परिवार के पास अपना सुरक्षित और पक्का घर हो। जी हाँ सखियों, इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहयोग मिलता है और वहीं शहरी क्षेत्र में होम लोन पर ब्याज में सब्सिडी देकर लोगों का बोझ कम किया जाता है। सखियों, इस तरह की योजनाओं से परिवारों को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिलता है। उन्हें केवल घर नहीं मिलता बल्कि आत्मविश्वास भी मिलता है। एक और बात सखियों, यह योजना महिलाओं को भी सशक्त बनाती है, क्योंकि यदि मालिकाना हक महिलाओं के नाम पर हुआ तो उन्हें और भी अतिरिक्त लाभ दिए जाते हैं। आज गांव में कच्ची झोपड़ियों की जगह सखियों रंगीन पक्के घर दिखाई दे रहे हैं। बिजली, पानी, शौचालयों की सुविधा ने लोगों के जीवन को बहुत बेहतर बना दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों भारतीयों के सपनों को नई उड़ान दी है। यह योजना बताती है सखियों कि सरकार और समाज मिलकर जब काम करते हैं ना, तो देश आगे बढ़ता है, संवरता है और सुदृढ़ होता है। बात जब घर की कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर याद आता है लव स्टोरी फिल्म का एक ये बहुत खूबसूरत सा गाना। तो पहले उसे सुनते हैं, फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे।

0: सखियो, माँ यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि वह एहसास है जिसमें पूरा जीवन बसता है, जिसने हमें जन्म दिया, चलना सिखाया, गिरने पर संभाला और हर मुश्किल में हमारा हाथ थामे रखा। जी हाँ, हमारी माँ। और एक ऐसा दिन जो माँ के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता को व्यक्त करता है वो है मदर्स डे। आने वाली 10 तारीख को हम सभी मदर्स डे मनाने वाले हैं, तो आइए मदर्स डे के अवसर पर हम कुछ कविताएं सुनते हैं। हमारे साथ हैं कवियत्री सुषमा शुक्ला जी। तो सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: जी सुषमा जी। सुषमा जी, कविताओं के प्रति विशेष रुझान की क्या वजह रही है और किन किन विषयों पर आप कविताएं लिखती हैं?
1: मैं बचपन से कविताएं लिखने की शौकीन रही हूँ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे पिताश्री भी कविताएं लिखते थे, उनकी पुस्तक भी छपी, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसका असर मुझ पे आया। परंतु ये असर बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया क्योंकि विवाह हो गया, पारिवारिक उलझनों में उलझ गई और उसके बाद जब अपनी जिम्मेदारियों से मैं फारिग हुई, पर मेरे जीवन साथी ने ही मुझे हाथ में कलम थमाई और कहा कि ये कलम के माध्यम से तुम अपना जीवन बहुत अच्छे से आगे का गुजार सकती हो। शायद उनको कुछ ऐसा एहसास हो गया होगा, तो उनके प्रेरणा स्वरूप मैंने कलम कोविड में थामी और जो लिखने का एक बार जुनून हुआ, और वो भी सिर्फ कविताओं का, किसी भी विषय पर हो, पूरे नवरस हैं, पूरी बारह खड़ी है, पूरे विषय हैं, किसी कोई सा भी विषय हो, मुझे लिखने का मुक्त हाथ से अति शौक है। अब मेरा ये मानना है कि हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, हमें उस पर अपना पूरा फोकस देना चाहिए। जैसा कि
0: अब देर नहीं करते, सुनते हैं आपकी कुछ कविताएं।
1: जैसा कि हम सब जानते हैं, मदर्स डे है और माँ के ऊपर तो क्या कहें, जहाँ ईश्वर नहीं पहुँच सकता हर जगह, तो माँ की रचना की उस ईश्वर को भी माँ पर भरोसा था ताकि वह संसार की सृष्टि को अच्छे से चला सके और अपने समकक्ष एक माँ को रख सके। तो उसी माँ पर मेरी एक रचना है, मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। माँ की ममता सागर जैसी, माँ की ममता सागर जैसी जिसकी गहराई का पार नहीं, माँ की ममता सागर जैसी जिसकी गहराई का पार नहीं, उसके चरणों में समाया उस जैसा जग में प्यार नहीं, उसके चरणों में समाया उस जैसा जग में प्यार नहीं। वह भूखी रहकर भी अक्सर बच्चों की थाली भर देती, वह भूखी रहकर भी अक्सर बच्चों की थाली भर देती, अपने आंसू पीकर चुपचाप हर पीड़ा को स्वर दी। माँ घर की तुलसी बन महके, माँ घर की तुलसी बन महके, आंगन को मंदिर कर जाती, उसकी मधुर दुआओं से ही जीवन की नैया तर जाती। जब जग ठुकरा देता हमको, जब जग ठुकरा देता हमको, माँ बाहों का हार बनाती, सूखे मन के उपवन में भी स्नेहिल सावन बन जाती, सूखे मन के उपवन में भी स्नेहिल सावन बन जाती। माँ त्याग, तपस्या और श्रद्धा, धरती पर ईश्वर का रूप, माँ त्याग, तपस्या और श्रद्धा, धरती पर ईश्वर का रूप, उसकी छाया में खिल उठते जीवन के हर कांटे और धूप। ममता का अथाह सागर माँ, ममता का अथाह सागर माँ, प्रेम सुधा की गागर माँ, जिसके आंचल की छांव तले, जिसके आंचल की छांव तले, महके जीवन का हर पल माँ, महके जीवन का हर पल माँ, अपने दुख को छुपा के रखे, अपने दुख को छुपा के रखे, संतान हेतु समर्पित माँ, थक जाए जब यह मन मेरा, बन जाती मधुर सहारा माँ, थक जाए जब यह मन मेरा, बन जाती मधुर सहारा माँ, ईश्वर का अनुपम उपहार है, ईश्वर का अनुपम उपहार है, धरती पर सबसे प्यारी माँ है। और एक वीर रस की रचना आपके सामने पेश कर रही हूँ। सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि हमारी इस वसुधा पर, हमारे इस सनातन धर्म में वीरांगनाओं की कोई कमी नहीं है। शौर्य, स्वाभिमान और बलिदान की अमर गाथा मैं आपके सामने रख रही हूँ, सुनिएगा। नारी नहीं ये अग्निशिखा है, नारी नहीं ये अग्निशिखा है, ज्वाला सी हर बात रही, राजपुताना की बेटियां त्याग तपस्या साथ रही। घूंघट में गरिमा थी लेकिन, घूंघट में गरिमा थी लेकिन, हृदय में रण घोष बजा, मातृभूमि की रक्षा हित हर सीना बन गया कजा। रानी पद्मिनी की ज्वाला से चित्तौड़ आज भी धधक रहा, मरण वरण कर जल उठी वो पर दुश्मन के आगे झुकी नहीं, और कर्मवती ने राखी भेजी अकबर का भी हृदय हिला, राजपूत नारी के रक्षण हित सम्राट भी कांप चला। कभी दुर्गावती बन शेरों से लड़ी, कभी दुर्गावती बन शेरों से लड़ी, तो कभी कर्णावती सी डटी, रण में उतर तलवार संभाली, जब जब मर्यादा थी घटी, जब जब मर्यादा थी घटी, मीरा जैसी सन्यासिनी थी, स्नेह नहीं आत्म गौरव थी, राज दरबार ठुकरा आई, कृष्ण में ही पूर्ण स्वरूप सजी। राखी बांध वीर बढ़ाए, हौसलों की मिसाल बनी, माँ बहन बेटी रानी बन हर मोर्चे पर ढाल बनी। जौहर की ज्वाला कहती है हम जीते हैं स्वाभिमान से, झुकना नहीं माटी को देंगे, मर जाएंगे सम्मान से। राजपुताना की हर नारी है रणभूमि की महारानी, राजपुताना की हर नारी है रणभूमि की महारानी, वीरता इनके श्रृंगार में है, बलिदान इनकी निशानी, बलिदान इनकी निशानी। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, इतनी खूबसूरत कविताओं के लिए। और आपने अपनी कविता के माध्यम से माँ के प्रति जो भावनाएं व्यक्त की, उन सभी से हम अपने आप को भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो आइए सखियों, मदर्स डे पर हम अपनी माँ को धन्यवाद कहें और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे हमारे जीवन की सबसे अनमोल धरोहर है। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी आपकी कविताओं के लिए। सखियो, अभी आप सुन रही थी कविता पाठ सुषमा शुक्ला जी से। आइए अब सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गाना, फिर कार्यक्रम में आगे आपसे करेंगे ढेर सारी बातें।

क्यों, ये आवाज़ें थी आशा जी और किशोर कुमार साहब की, और फिल्म का नाम था लावा। अब आज जैसा कि आप जानती हैं कि आज है शुक्रवार, और शुक्रवार की महिला सभा होती है ख़ास, क्योंकि आज होता है सखियों मी टाइम। जी हाँ, एक ऐसा क्रम जो अपने बचाए हुए समय में अपने हुनर, अपने शौक से महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित करता है। जी हाँ सखियों, हम सभी घरों, मंदिरों और पूजा पाठों में रोज़ फूलों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल के बाद यही फूल अक्सर कचरे में फेंक दिए जाते हैं। हमारे घर की खूबसूरती आने वाले, हमारी पूजा में उपयोग में आए ये फूल जो हमारी श्रद्धा का प्रतीक थे, वे कूड़ेदान का हिस्सा बने। क्या हमें ये गवारा है? नहीं ना। तभी सखियों, आज हम बताएंगे आपको इस्तेमाल किए हुए फूलों का बेहतरीन इस्तेमाल। जी हाँ सखियों, इस्तेमाल किए हुए सभी फूलों को सलीके से इकट्ठा करें, उन्हें साफ कपड़े पर हल्की धूप में सुखा लें। जब फूल अच्छी तरह से सूख जाए तो उन्हें मिक्सर में पीसकर बारीक पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर में आप सुगंध के लिए थोड़ी सी लोबान, थोड़ा चंदन पाउडर मिला लें। बाइंडिंग के लिए एक जिगट पाउडर आता है, या फिर आप गोंद का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। थोड़ी बारीक लकड़ी का बुरादा, थोड़ा पानी और अगरबत्ती की पतली पतली स्टिक ले लीजिए। ये स्टिक्स जो है बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। जी हाँ सखियों, आप समझ गई कि मैं आपको बता रही हूँ इस्तेमाल किए हुए फूलों से अगरबत्ती और धूप बनाना। तो सखियों, जो सभी सामग्रियाँ हमने इकट्ठी की है ना, इन सभी सामग्रियों को जो हमने फूलों का पाउडर पीस कर रखा था उसमें मिला लीजिए, और पानी की सहायता इसे जैसे हम आटे का डो बनाते हैं ना, उस तरह से गूंथ लीजिए। अब अगरबत्ती की स्टिक को सबसे पहले मनपसंद खुशबू वाले इत्र में भिगोइए। अब तैयार मिश्रण को अगरबत्ती स्टिक पर लपेटे और अगरबत्ती बना लीजिए। आप इस मिश्रण से सखियों धूप स्टिक और कोण भी बना सकती हैं। अब तैयार अगरबत्ती धूप और कोण को धूप में 2 दिन तक सुखा लीजिए। इन सूखी अगरबत्ती, धूप और कोण को खूबसूरत पैकेट्स में पैक करके आप इसे सेल कर सकती हैं। आप सखियां 2-4 सखियों का ग्रुप बनाकर आपस में बातें करते हुए, या फिर किसी अच्छे स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़कर भी इस काम को बड़े पैमाने पर कर सकती है। और हाँ, अगर आपका काम जो है बहुत अच्छा बढ़ जाए, सेल अच्छी होने लगे, ऑर्डर रिपीट होने लगे, तो आप बड़ी मशीनें लगाकर बल्क में भी ऑर्डर तैयार कर सकती हैं। सखियों, यह काम बहुत बड़ा निवेश नहीं मांगता। फूल इकट्ठे करने से लेकर अगरबत्ती तैयार करने तक सारे काम जो हैं वो घर पर ही किए जा सकते हैं। एक छोटी सी शुरुआत आगे चलकर एक बड़ा व्यवसाय बन सकती है। तो अपने मी टाइम का सदुपयोग कर आर्थिक रूप से मजबूत बनने की दिशा में अपना कदम बढ़ाइए सखियों, क्योंकि इस तरह के काम जो होते हैं ना, ये पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ में ही किए जा सकते हैं। असल में सोच बदलने वाले ये हमारे काम होते हैं। तो आइए अब एक गीत के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। गीत हमने लिया है इस वक्त फिल्म तेरी कसम से, अमित कुमार और लता जी की आवाज़ें हैं।

सखियो, आजकल एक शब्द है ना सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है और वो है डायरेक्ट सेलिंग। और हमें लगता है कि आप सभी को इस बारे में जानना चाहिए, इस शब्द के बारे में जानना चाहिए और समझना चाहिए। तो चलिए सखियो, आपको बताते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। हमारे क्रम ये जानना भी है ज़रूरी में। सखियो, सोशल मीडिया पर हमने कई प्रोमोटर्स और ब्लॉगर्स को देखा है जो किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं और हमसे उसे खरीदने की अपील करते हैं। ये प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, उसकी विशेष बताते हैं और हम और उसका उपयोग भी अपने ऊपर करके हमें उसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो क्या इन्होंने अपने पास उस प्रोडक्ट का बहुत सारा स्टॉक रखा है और हमें इनसे खरीदना है? नहीं सखियो, ये है डायरेक्ट सेलर्स, यानी ये सामान को सीधे कंपनी से ग्राहक तक पहुंचाते हैं बिना किसी बड़े बाजार या फिर दुकान के। और सबसे खास बात है सखियो कि यह काम बहुत ही कम निवेश के साथ किया जा सकता है। सखियो, मेरी माने ना तो डायरेक्ट सेलिंग केवल कमाई का साधन नहीं है बल्कि व्यक्तित्व विकास का मंच भी है। इस काम से लोगों में संवाद कौशल आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ईमानदारी, प्रोडक्ट की सही जानकारी और धैर्य, है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग के इस दौर में हम खुद को परखा जा सकता है एक डायरेक्ट सेलर बनके। तो सखियो, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दूं कि इस खूबसूरत कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार। तो अब इजाज़त दीजिए अपनी सखी शिखा साहू को, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

0: सखियां सुन रही थी अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:00

30 मिनट हुए हैं। ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का, और इस लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का ये योगदान, जिसमें आज कलाकार हैं राजू पटेल और साथी। आइए इनसे सुनते हैं कार्यक्रम के आरंभ में ये गुरु महिमा।

पुरुषोत्तम नायक और साथियों के स्वरों में अभी आपने ये गुरु महिमा सुनी, और इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 1:45 हुए हैं, ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में भी आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति। इसमें आप सुनेंगे चंद गज़लें, कलाकार हैं इकबाल सिद्दीकी।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: जल्दी चलो, अरे गाड़ी आ गई है। अरे शादी में चलना है ना?
1: अरे मैं नहीं जाता कहीं शादी में, मैं तो सुन रहा हूँ मालवा की शान आकाशवाणी।

0: कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और ये समय है फिल्म संगीत का कार्यक्रम का। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, रफी साहब का है, आनंद बख्शी ने इस गीत को शब्द दिए हैं, लक्ष्मीकांत के अवतार के फिल्म का नाम है।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में अब आप सुनने जा रहे हैं असद भोपाली के ये शब्द। आवाज़ है आशा भोसले की, फिल्म का नाम गुमराह।

और इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होने जा रहा है। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 2:10 होने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। श्री मोदी ने एक अखबार में लिखे लेख में कहा कि सोमनाथ भारत की सभ्यतागत ताकत का प्रतीक है और यह मंदिर बताता है कि आस्था और संस्कृति बार बार के हमलों के बावजूद जिंदा रहती है। उन्होंने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि पटेल इस मंदिर के पुनर्निर्माण को राष्ट्रीय कर्तव्य मानते थे और अब मंदिर के गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष प्रार्थनाएं होंगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं के स्वागत के बाद श्री शाह सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए और पूजा अर्चना की। कुछ ही देर में श्री शाह भाजपा के सभी 207 नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री चुना जाएगा। वहीं कल यानी 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक मामलों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने की खुशी में भोपाल के भारत भवन में 3 दिन का मीडिया महाकुंभ चल रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास मिलकर प्रणाम उदंत मार्तदंड नाम से यह समारोह 10 मई तक आयोजित कर रहे हैं। इस महाकुंभ में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और फिल्मकार डॉ. चंद्र प्रकाश द्विवेदी समेत देशभर के दर्जनों वरिष्ठ पत्रकार और विद्वान इसमें शिरकत करेंगे। इस मौके पर 200 साल की पत्रकारिता की यात्रा पर एक खास प्रदर्शनी भी लगाई गई है और 8 वरिष्ठ कार्टूनिस्ट लाइव कार्टून शो भी पेश करेंगे। आकाशवाणी की सेवा के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज नई दिल्ली में 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर ही खत्म हुई। इसी तरह की एक दौड़ भोपाल स्थित आकाशवाणी के दफ्तर से भी सुबह में आयोजित की गई। रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 362 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिरोजपुर डिवीजन के 1000 किलोमीटर और जम्मू डिवीजन के 446 किलोमीटर रूट पर यह सिस्टम लगाया जाएगा। कवच एक स्वदेश निर्मित स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, जो खतरे की स्थिति में ट्रेन में अपने आप ब्रेक लगाकर टक्कर और दुर्घटना को रोकती है। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी व पूर्वी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा और पांडुना में आज तेज आंधी के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना है, जिससे किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है। मुरैना में बिजली गिरने और ग्वालियर विंध्य क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम बदलने का अनुमान है। वहीं छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा स्थित नेहरू पीजी कॉलेज में सत्र 2026-27 के लिए ई प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। वहीं छात्रों को पंजीयन दस्तावेज, सत्यापन, विषय चयन और फीस संबंधी जानकारी देने हेतु हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। नीमच में जलगंगा संवर्धन अभियान तहत ग्रामीण नल जल योजना के संचालन, संधारण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ग्राम सरपंचों, सचिवों एवं पंप ऑपरेटरों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कल आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
2: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
1: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
5: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
6: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
5: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सके।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हों। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
7: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
8: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
7: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
9: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
10: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
7: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 हुए हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना रामपुर का लक्ष्मण फिल्म का नाम था। कैफी आज़मी ने इस गीत को शब्द दिए थे, धुन थी मदन मोहन की। सुनने के लिए चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवहाणकर ने। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित और ध्वनि गवाणकर ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने इस गीत के लिए अपनी फरमाइश लिख भेजी थी। ग्राम महसेवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न घाड़े, निनाजी घाड़े और स्वप्निल घाड़े साथ में अजय खिरोडकर ने इस गीत को सुनना चाहा था। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश। ये हैं अनिल कवचाले, नेहा, सबीहा, पूजा, सुषमा, स्मिता। इन्होंने ये चिट्ठी लिख भेजी है स्कीम नंबर 71 इंदौर से। पुणे से अगला खत भेजा है प्रियंका, पंगज और आर्या ने। जरूर वरुड़ से ये खत लिख भेजा है बाबा साहेब बड़ौदे और चंद्र प्रभा बड़ौदे ने। ये खत आया है गांधी बाग आकोला से रमेश काटनकर, वैशाली काटनकर और हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान हदिया, अस्मा सालिया, शुएब, मुस्तफा खान, साथ में है रऊफ भाई और शाहिद भाई। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर आप सुनेंगे लता मंगेशकर का गाया हुआ यह गीत।

रोशन का ये संगीतबद्ध किया हुआ नगमा है, बोल है मजरूह सुल्तानपुरी की आवाज़, लता मंगेशकर की, फ़िल्म का नाम ममता, फरमाइशी नाम, गीत के बाद।

लता जी के गाए हुए इस गीत को सुनना चाहा था हमारे इन सभी दोस्तों ने। बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप और केशव पटेल, संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सरमति पंचोलिया ने घंटाघर चौक खंडवा से ये चिट्ठी हमें लिख भेजी थी। रेलवे कॉलोनी बटंडा से अगला खत आया है। जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जेएस नायक और शोभा नायक। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश। उपाध्याय नगर देवास से मुरलीलाल वर्मा, मनीष और शिवम वर्मा। राजा राम नगर देवास से ही ये खत आया है। राजू अग्रवाल, मधु महाजन और राकेश अग्रवाल, ये दोस्त हमारे जो हैं, इन्होंने भी ये चिट्ठी लिख भेजी है। देवास से सुपरमार्केट से ये खत है प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज और सनी जसवानी का। हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल और निरंजन माली ने रूपा खेड़ी देवास से ही एक खत लिख भेजा है। जेल रोड देवास से अगली चिट्ठी आई है नवीन वर्मा और बबलू वर्मा की। गंगेड़ी ज़िला उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद सालाग्राम, दशरथ बागवान, साथ में है कन्हैयालाल प्रजापति। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

संतोष आनंद ने इस गीत धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आवाज कमलेश अवस्थी की और फिल्म का नाम प्यासा सावन।

और अब बारी है हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश की। ये हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने ये चिट्ठी लिख भेजी है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से। लाल माता सुदामा नगर रटलाई ज़िला झालावाड़ राजस्थान से ये खत लिख भेजा है हमारे इन सभी सुनने वालों ने। हर्षिता रामेश्वर कान्हा सफलता, कपिल मीनाक्षी, सत्यनारायण मनोहर भाई और प्रभुलाल बांगरी, जयराज प्लॉट राजकोट से इस खत लिख भेजा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट, इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ ये गीत। साथ में आवाज है सुरेश वाडेकर की। राहुल देव वर्मन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है और शब्दकार हैं आनंद बख्शी। फिल्म का नाम

और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब ख़त्म होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 2:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने के जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं के स्वागत के बाद श्री शाह सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

0: हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने की खुशी में भोपाल के भारत भवन में 3 दिन का मीडिया महाकुंभ चल रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास मिलकर प्रणाम उदंत मार्तंड नाम से यह समारोह 10 मई तक आयोजित कर रहे हैं। आकाशवाणी की सेवा के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज नई दिल्ली में 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर ही खत्म हुई। और रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 362 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब हम इस सभा का समापन करें, उससे पहले आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवावाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी और NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुना जा सकेगा शाम 6:00। ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा 7:21 पर। सुर्खियों में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा 8:00। खेल जगत, इसे आप सुन सकते हैं 9:30 पर। 10:00 का समय है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। पंडित भीमसेन जोशी का राग भीम पलासी में ख्याल गायन प्रसारित होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में प्रसारण समय रहेगा 10:30। ये थी जानकारी हमारे उन कार्यक्रमों की जिन्हें आप हमारी सांध्यकालीन सभा में सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। 3:02 होने को हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न होती है। मीडियम वेव पर आप हमारी सभा का प्रसारण शाम 5:00 से सुन सकते हैं। अभी दीजिए इजाज़त, इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। सांध्यकालीन सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। सभा के आरंभ में युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुने, युववाणी।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा युवा प्रोग्राम युवावाणी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राज।
1: और मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आज है दिन शुक्रवार का, यानी कि आज हम ले आए हैं आपके लिए खेल जगत की कुछ सुर्खियां और साथ ही विज्ञान जगत के कुछ नए नवाचारों की जानकारियां।
0: बिल्कुल साथियों, पर उसी के साथ हम रोजाना आप सभी के लिए लेकर आते हैं ज्ञान वर्धन से भरपूर दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न, तो आइए उनको भी जान लेते हैं। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ साथियों, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है?
1: और दोस्तों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? मैं प्रश्न पुनः दोहराती हूँ, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम के अंत तक आप दोनों ही प्रश्नों के उत्तर ढूंढ कर नोट करके रखिएगा और बाद में उन्हें हमारे उत्तर से मिलाइएगा।
0: बिल्कुल, तो साथियों आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: क्या बात है राज, आज तुम थोड़े से तनाव में और परेशान से लग रहे हो।
3: मैं तो नहीं, बाकी मुझे लगता है कि आजकल के युवा जो मेरी उम्र के हैं, वो परीक्षाओं के बाद या फिर नया कुछ जो करना चाहते हैं जीवन में, उनके चेहरे पर आजकल थोड़ी तनाव सी लकीरें बिल्कुल दिख जाती हैं चेहरे पर।
2: बिल्कुल राज, और अभी तो समय ही वो चल रहा है, परीक्षाओं का दौर चल रहा है, तो इस दौरान तो हमारे युवा साथियों में थोड़ा तनाव होना स्वाभाविक सी बात है, ही देखने को मिल ही जाता है। और युवा साथियों, आपके इसी तनाव को थोड़ा कम करने या इससे उभरने के लिए आपकी मदद हो पाए, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं एक वार्ता। जी हाँ, जिसके वार्ताकार है नंदिनी वैद्य जी, जो आपको बताएगी मानसिक तनाव प्रबंधन के बारे में। तो साथियों सुनिए ये वार्ता।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युवाणी। आज का हमारा विषय है मानसिक तनाव प्रबंधन। जिंदगी की इस भाग दौड़ में हम शारीरिक थकान के साथ मानसिक थकान और तनाव भी महसूस करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी इन मानसिक समस्याओं का हल कहीं बाहर मिलेगा, किसी और जगह, किसी और इंसान के पास होगा। लेकिन सच ये है, जिंदगी जितना उलझाती है उतना ही हमें सुलझाना भी सिखाती है, क्योंकि जवाब बाहर नहीं, अक्सर हमारे ही अनुभवों में छुपा होता है। बस हमें उसे देखने का तरीका बदलना होता है। हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी भावनाओं को समझने, खुद को परखने और समय पर खुद को खुलकर और सही तरीके से व्यक्त करने की। कभी गौर किया है, हमारे घर में रखा हुआ कुछ सामान जो लंबे समय तक बस अपनी जगह रखा रहता है, शायद कोई अलमारी या कोई शोपीस, हम उन्हें रोज देखते हैं पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि बाहर से सब ठीक ही लगता है, और जब कभी हम उसे ध्यान से देखते हैं अचानक फर्क नजर आता है। मान लीजिए घर के किसी पुराने फर्नीचर की तरह, जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है पर अंदर ही अंदर दीमक उसे खोखला कर रही होती है। हम उसे तब तक नोटिस नहीं करते जब तक वो पूरी तरह बदल ना जाए। और अगर ध्यान से देखें तो ऐसा सिर्फ फर्नीचर के साथ नहीं होता। जैसे हमारी दिनचर्या, हम उठते हैं, अपनी दिन की शुरुआत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, और शाम तक पहुंचते पहुंचते हमें लगता है कि हमने एक और दिन मैनेज कर लिया। और यही बात मुझे हमेशा एक पुराने फर्नीचर की याद दिलाती है। अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ की बात करें तो उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, प्रेजेंटेशन, प्रोफेशनलिज्म, परफॉर्मेंस, कैसे काम करना है, कैसे डिलीवर करना है, कैसे कंपोज्ड रहना है। हमने ये भी सीख लिया कि डेडलाइन मिस नहीं करनी, लोगों के सामने टूटना नहीं, काम को पर्सनल फीलिंग से ऊपर रखना है। पर एक चीज है जो हमें कभी नहीं सिखाई गई, प्रोसेसिंग। हमारी रोज की लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ फील होता है पर हम वहां रुकते नहीं। जैसे ऑफिस में मैनेजर ने डांट दिया, बुरा लगता है लेकिन हम कुछ कहते नहीं, बस काम करते रहते हैं। कभी किसी दोस्त ने मैसेज नहीं किया या प्लान कैंसिल कर दिया, थोड़ा सा अजीब लगता है पर हम उसे वहीं छोड़ देते हैं। कभी किसी ने हमारी एफर्ट नोटिस नहीं की, थोड़ा सा खलता है पर हम उसे भी जाने देते हैं। कभी किसी सिचुएशन में ऑकवर्ड फील हुआ या किसी ने मजाक में कुछ बोल दिया, हम उसे हंसकर टाल देते हैं, पर हम उस वक्त ना उसे समझ पाते हैं ना कुछ कह पाते हैं, तो हम बस उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो उस वक्त प्रोसेस नहीं हुआ वो वहाँ खत्म नहीं होता, वो साथ बना रहता है, हर नई परिस्थिति के साथ जुड़ता जाता है और धीरे धीरे मन के अंदर एक दबाव बनने लगता है। फिर एक दिन किसी छोटी सी बात पर, जैसे एक ज्वालामुखी फटता है ना, रिएक्शन जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है और हमें खुद भी समझ नहीं आता ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो रिएक्शन उस एक पल का नहीं होता, वो उन सब बातों का होता है जो हमने कभी प्रोसेस ही नहीं की। इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं एक छोटी सी कहानी के जरिए। एक लड़की थी काव्या, शांत, समझदार, हर परिस्थिति को संभाल लेने वाली। घर में पापा की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, माँ गृहिणी थी और उसकी बहन जो उससे ज्यादा छोटी भी नहीं थी, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च काव्या ही उठा रही थी। वो ऑफिस भी संभाल रही थी और घर भी। लोग उससे अक्सर पूछते, तुम्हें गुस्सा आता भी है? और वो बस मुस्कुरा देती, क्योंकि सच तो ये था, उसे गुस्सा आता था, दुख भी होता था, थकान भी महसूस होती थी, पर वो हर बार खुद को समझा लेती थी, अभी नहीं, ये सही टाइम नहीं है, छोड़ो, छोटी बात है। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। वो हर चीज संभाल रही थी बस खुद को छोड़कर। फिर एक दिन उसकी बहन ने यूं ही कह दिया, तू कभी टाइम ही नहीं देती है मुझे। और उस एक पल में वो खुद को रोक नहीं पाई, उसने उसे फटकार दिया और वो बोलती चली गई ऐसी बातें जो उस एक बात से कई ज्यादा पुरानी थी। कमरा शांत हो गया। उसकी बहन हैरान थी और काव्या खुद भी, क्योंकि जो बाहर आया था वो उस एक पल का जवाब नहीं था, वो हर उस पल की गूंज थी जिसे उसने कभी सुना ही नहीं। काव्या की कहानी सुनकर शायद आपको भी कुछ याद आया होगा। आपने भी सोचा होगा ये थोड़ा ज्यादा हो गया। और सच तो ये है, ये सिर्फ काव्या की कहानी नहीं है, हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है। ऐसे में कुछ छोटी छोटी चीजें वाकई बदलाव ला सकती है। कभी हर भावना को बस नजरअंदाज करके आगे मत बढ़ो, थोड़ा रुक कर ही समझने की कोशिश करो कि आपको आखिर किस बात ने प्रभावित किया और क्यों किया। हर बार चुप रह जाना हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी सही समय पर अपनी बात कहना भी जरूरी होता है। कभी ये भी नोटिस करना कि शरीर क्या कह रहा है, क्योंकि कई बार जो बातें हमारे मन में ही रह जाती हैं, वो शरीर में छोटे छोटे संकेतों में दिखने लगती है। जैसे बिना वजह सिर भारी लगना, छाती में हल्की सी जकड़न महसूस होना, या अचानक थकान महसूस होना। कई बार ये सिर्फ थकान नहीं होती, ये वो बातें होती है जो हम समझ नहीं पाए या जिन्हें हमने वहीं छोड़ दिया बिना समझे बिना कहे। हर चीज अकेले संभालने की जरूरत नहीं होती, कभी किसी अपने से बात कर लेना, आधा बोझ वहीं हल्का हो जाता है। और हर बार मजबूत बने रहने की कोशिश में कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद की बात सुनना ही भूल जाओ, क्योंकि जो हम खुद से छुपाते हैं वही बाद में हमारे रिएक्शंस में दिखने लगता है। और कभी कभी थोड़ा रुकना, थोड़ा समझना, थोड़ा कहना, थोड़ा बांटना और थोड़ा खुद के साथ वक्त बिताना। अगर इसे रोजमर्रा में उतारे तो कुछ आसान सी चीजें की जा सकती है। एक पैटर्न नोटिस करना, कौन सी परिस्थिति बार बार ट्रिगर करती है। कभी बस इतना सोचना, हर बार ऐसा क्या होता है जो तुम्हें अंदर से तंग कर देता है। कभी तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुककर रिस्पॉन्स देना। हर बात का जवाब उसी वक्त देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी थोड़ा रुकना हमें चीजों को अलग तरीके से देखने का मौका देता है। कभी फोन में नोट्स खोलकर बस दो तीन लाइंस लिख देना जो मन में चल रहा है। कई बार लिखते लिखते चीजें अपने आप थोड़ी क्लियर होने लगती है। और दिन में कुछ मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बस खुद के साथ बैठना, क्योंकि हम इतने व्यस्त हो जाते हैं काम में, लोगों में, जिम्मेदारियां निभाने में, अपनी ही दिनचर्या में, कि हम रुकते ही नहीं। हमारे पास इतना समय ही नहीं होता ये समझने के लिए कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। और फिर यही सब हमारे मन में जगह बना लेती है, हमारी आदतों में, हमारे रिएक्शंस में दिखने लग जाती है बिना हमें बताए। ठीक वैसे ही जैसे एक दीमक जो दिखाई नहीं देती लेकिन धीरे धीरे अंदर से खोखला करती रहती है। मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं। मैंने ये कहीं सुनी थी, तुम जिंदगी को खूब चाहना, अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर छुपाना मत। कोई चाहे इसे कमजोरी कहे, तुम नफरत जहन में भरकर दिल दुखाना मत। बहुत कम वक्त के लिए मिली है ये जिंदगी हमें, बहुत कम वक्त के लिए मिली है। तुम जिंदगी को खूब चाहना, अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर छुपाना मत। कोई चाहे इसे कमजोरी कहे, तुम नफरत जहन में भरकर दिल दुखाना मत। बहुत कम वक्त के लिए मिली है ये जिंदगी हमें, बहुत कम वक्त के लिए मिली है ये जिंदगी हमें। कुछ सालों बाद हमारे घर में कोई और रह रहा होगा, हमारा काम, हमारा नाम सब किसी और का होगा। हम रह जाएंगे बस यादों में कहीं, तस्वीरों में कैद होकर, तो जी लो इसे खुलकर, हंसकर भी रोकर भी। और याद रखना, चाहे कितना भी हो, और याद रखना चाहे कितना भी टूटे, दिल संभल जाएगा, वक्त बदल जाएगा।
3: साथियों, अभी आप सुन रहे थे युवा युवा साथी नंदिनी वैद्य को, जिन्होंने बताया कि हम तनाव से किस तरह बाहर आ सकते हैं और कुछ क्रिया करके जो कि हमारे डेली लाइफ में ज़रूरी होती है उन सबको अपना कर अपनी ज़िंदगी को और अपने डेली रूटीन को किस तरह आसान बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के ये अगले गीत की ओर।

0: दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, जो मानवता, सेवा और करुणा का प्रतीक माना जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस।
1: बिल्कुल राज। दोस्तों, हर वर्ष 8 मई को पूरे विश्व में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन लाखों स्वयं सेवकों और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित होता है जो युद्ध, आपदा, महामारी और संकट के समय मानव सेवा में जुटे रहते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और खास बात यह है कि 8 मई का दिन इसलिए चुना भी गया क्योंकि इस दिन रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक हेनरी ड्यूनांट का जन्म भी हुआ था। उनका जन्म 8 मई 1828 को स्विट्जरलैंड में हुआ था।
1: राज, क्या आपको पता है कि रेड क्रॉस की शुरुआत एक युद्ध की त्रासदी से हुई थी?
0: हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि वर्ष 1859 में इटली के सोलफेरिनो युद्ध में हजारों सैनिक घायल हो गए थे। उस समय चिकित्सा सुविधाएं बेहद कम थी साथियों, और हेनरी ड्यूनार्ड ने घायल सैनिकों की हालत देखकर स्थानीय लोगों की मदद की और उनकी सेवा भी की।
1: बिल्कुल, और इसी अनुभव ने उन्हें प्रेरित किया कि युद्ध और आपदाओं में घायल लोगों की सहायता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाए। बाद में उनकी पुस्तक अ मेमोरी ऑफ सोलफेरिनो ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था।
0: और फिर साथियों 1863 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी आईसीआरसी की स्थापना हुई। इसके बाद 1864 में पहला जिनेवा कन्वेंशन हुआ जिसमें युद्ध में घायल सैनिकों और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के नियम बनाए गए।
1: बिल्कुल, और दोस्तों पता है रेड क्रॉस का चिन्ह सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग का एक क्रॉस होता है। ये चिन्ह सुरक्षा, सहायता और तटस्थता का प्रतीक माना जाता है।
0: और इसी के साथ साथियों कई इस्लामिक देशों में लाल क्रॉस की जगह रेड क्रिसेंट यानी लाल अर्धचंद्र का उपयोग किया जाता है, और दोनों का उद्देश्य एक ही है, मानव सेवा।
1: ये दिन केवल एक औपचारिक योजना नहीं बल्कि मानवता के मूल्यों को याद करने का अवसर है, नहीं राज?
0: हाँ सही कहा तुमने अपर्णा, और इस दिन को लोगों को रक्तदान करना चाहिए, हमको प्राथमिक उपचार, आपदा प्रबंधन और मानव सेवा के प्रति जितना हम जागरूक कर सकते हैं हमारे देश के या फिर शहर के नागरिकों को रक्तदान के प्रति, और अलग अलग जो सेवाएं होती हैं जो कैंप लगा कर करते हैं हम लोग हर सप्ताह हर महीने, वो करना ही चाहिए।
1: बिल्कुल राज, इसी के अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं में रैलियां, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं।
0: हाँ, और रेड क्रॉस आंदोलन आंदोलन जो है 7 सिद्धांतों पर आधारित है साथियों, तो जो सिद्धांत हैं उनको भी हम जान लेते हैं।
1: हाँ, तो दोस्तों ये सिद्धांत है मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता, सार्वभौमिकता,
0: यानी बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद की सहायता करना इसका मूल उद्देश्य है।
1: बिल्कुल सही कहा राज। भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी।
0: बिल्कुल, और ये संस्था प्राकृतिक आपदाओं जैसे सड़क दुर्घटनाओं, महामारी और स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और साथियों अभी हमने कोविड के दौरान कई सारी ऐसी देखा है कि कई घटनाएं मतलब हो रही थी जिसमें पुलिस प्रशासन भी ध्यान दे रहा था और अस्पताल का जो जिला अस्पताल है वे लोग भी काफ़ी ज़्यादा सहायता कर रहे थे, पर रेड क्रॉस के जो साथी हैं उन लोगों ने भी कई जगह पर घनी बस्तियों में जाकर, कई कॉलोनी में जाकर लोगों का उपचार किया है।
1: बिल्कुल, तो कोविड-19 महामारी के दौरान तो रेड क्रॉस ने ऑक्सीजन, भोजन, दवाइयाँ, राहत सामग्री पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है
0: बिल्कुल
1: राज।
0: सही कहा तुमने। अब समय है कुछ रोचक तथ्य जानने का, वो भी जान लेते हैं।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों रेड क्रॉस दुनिया के लगभग हर देश में कार्यरत है। इसके करोड़ों स्वयंसेवक दुनिया भर में सेवा देते हैं।
0: बिल्कुल, और हेनरी ड्यूनाल्ड को पहला नोबल शांति पुरस्कार वर्ष 1901 में मिला था। साथ ही
1: रेड क्रॉस आंदोलन को अब तक कई बार नोबल शांति पुरस्कार मिल चुका है,
0: और युद्ध क्षेत्रों में भी रेड क्रॉस की कर्मियों को विशेष सुरक्षा सहायता दी जाती है साथियों। और आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे चुनौतियों का सामना कर रही है, तब रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं का महत्व और भी ज्यादा आज के सिनेरियो में बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, युद्ध हो या महामारी, रेड क्रॉस सबसे पहले मदद पहुंचाने वाली संस्थाओं में शामिल रहता है।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक, और युवा वर्ग भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रहे हैं और निभा भी सकते हैं।
1: बिल्कुल, युवा रक्तदान कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार सीख सकते हैं, स्वयं सेवक बन सकते हैं और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक, क्योंकि छोटी सी मदद किसी की जान बचा सकती है।

0: तो दोस्तों, दिन शुक्रवार का, यानी कि हमने बात की थी कि आज हम लाएंगे आपके लिए खेल जगत से जुड़ी सुर्खियां और विज्ञान जगत की कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं खेल जगत से। तो आज का विषय है गर्व, जुनून और जीत की एक शानदार कहानी का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला टीम के ऐतिहासिक प्रदर्शन की, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की बेटियां अब किसी से कम नहीं हैं।
1: साथियों, हाल ही में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। भारतीय टीम ने 10 बार की चैंपियन साउथ कोरिया वुमेन्स आर्चरी टीम को 5-1 के बड़े अंतर से हराया है।
0: दोस्तों, कोरिया की टीम तीरंदाजी की दुनिया में एक मजबूत और लगभग अजेय टीम मानी जाती है। वर्षों से इस खेल में उनका दबदबा रहा है, लेकिन इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी सटीकता, धैर्य और आत्मविश्वास से इस धारणा को बदल दिया है।
1: और अपर्णा, ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें सिर्फ स्कोर की जीत बिल्कुल नहीं है, बल्कि मानसिक मजबूती और रणनीति की भी जीत है। अभी मानसिक पे बात ही कर रहे थे, मानसिक तनाव पे।
0: बिल्कुल राज, अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो शुरुआत से ही भारतीय टीम ने अपना दबदबा बनाए रखा है। पहले सेट से ही भारतीय तीरंदाजों ने लगातार सटीक निशाने लगाए हैं। उनका हर शॉट कॉन्फिडेंट था, ये झलक रहा था। और दूसरी ओर कोरिया की टीम थोड़ी सी दबाव में नजर आ ही रही थी।
1: हाँ, ये तो तुमने सही कहा। और भारतीय टीम का तालमेल, एक दूसरे पर भरोसा, मैच के दौरान संयम बनाए रखना, मुझे लगता है कि सभी बातें उनकी जीत का एक मुख्य कारण भी रही होंगी। और हर सेट के साथ भारतीय टीम और मजबूत होती गई और अंततः 5-1 के शानदार स्कोर के साथ उन्होंने मैच अपने नाम कर लिया।
0: बिल्कुल, और दोस्तों, किसी भी बड़ी जीत के पीछे सालों की मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। भारतीय महिला तीरंदाजों ने भी कठिन परीक्षण, अनुशासन और लगातार अभ्यास के जरिए खुद को इस स्तर तक पहुंचाया है।
1: कड़ी धूप हो या फिर बारिश, घंटों तक अभ्यास करना, मानसिक दबाव को संभालना, ये सभी उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा रही होंगी। और आज उनकी यह मेहनत रंग लाई है साथियों, और पूरे देश को उन पर गर्व भी है।
0: बिल्कुल, और दोस्तों, इस शानदार जीत के बाद अब भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, जहां उनका मुकाबला होगा चाइना विमेंस आर्चरी टीम से।
1: चीन की टीम भी काफी ज्यादा मजबूत मानी जाती है साथियों, और हर मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। मुझे लगता है आने वाला जो संडे को मैच होने वाला है वो बिल्कुल देखने लायक होगा।
0: बिल्कुल राज, पूरे देश की नजरें इस मुकाबले पर टिकी है और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि भारतीय टीम गोल्ड मेडल लेकर जरूर आए।
1: बिल्कुल, और ये जीत सिर्फ एक खेल उपलब्धि बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा का सागर है या फिर स्रोत है कि हमें सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, लगातार मेहनत करते रहें और खुद पर विश्वास बनाए रखें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।
0: भारतीय महिला खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया है कि सपने चाहे जितने बड़े हो, उन्हें पूरा किया जा सकता है।
1: तो श्रोताओं, आइए हम सब मिलकर भारतीय महिला टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं और उन्हें फाइनल मुकाबले के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दें। और हम उम्मीद करते हैं कि वे गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम और ऊंचा करेंगी।

0: दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत की रक्षा शक्ति से जुड़े एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और चर्चित विषय पर, अग्नि 6 मिसाइल पर।
1: भारत लगातार अपनी सुरक्षा और सामरिक क्षमता को मजबूत कर रहा है और इसी दिशा में एक बड़ा कदम है अग्नि 6। ये मिसाइल भारत के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM कार्यक्रम का हिस्सा मानी जा रही है।
0: अब दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अग्नि 6 इतनी खास क्यों है, तो उसको भी जान लेते हैं। अग्नि 6 एक एडवांस और लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल होगी जिसकी अनुमानित रेंज 8,000 से 12,000 किलोमीटर तक की हो सकती है, यानी ये दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम होगी।
1: और श्रोताओं, इतना ही नहीं, इसमें MIRV टेक्नोलॉजी यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रेंट्री व्हीकल्स का इस्तेमाल होने की भी संभावना है। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल एक ही समय पर अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बना सकती है।
0: श्रोताओं, अग्नि 6 को खासतौर पर भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए विकसित किया जा रहा है, यानी अगर कोई देश भारत पर हमला करता है तो भारत जवाबी कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम होगा।
1: इस मिसाइल को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए इससे सबमरीन लॉन्च कैपेबिलिटी यानी पनडुब्बी से लॉन्च करने की क्षमता भी दी जा सकती है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत होगी।
0: लेकिन दोस्तों, ये एक बात समझना भी हम सभी के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि भारत की नीति हमेशा से नो फर्स्ट यूज यानी पहले हमला ना करने की रही है। भारत इन शक्तिशाली हथियारों का उपयोग अपने केवल सुरक्षा के लिए ही करता है, ना कि किसी पर आक्रमण करने के लिए।
1: बिल्कुल सही राज, अग्नि 6 सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की वैज्ञानिक प्रगति, आत्मनिर्भरता और मजबूत रक्षा नीति का प्रतीक है। ये हमें ये भी सिखाती है कि विज्ञान और तकनीक का सही उपयोग देश की सुरक्षा और विकास दोनों के लिए कितना जरूरी है।
0: बिल्कुल ठीक। प्रिय युवा साथियों, अगर आप भी विज्ञान, इंजीनियरिंग या फिर रक्षा क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आपके पास देश की सेवा करने के अनगिनत रास्ते हैं और कई सारे अवसर भी हैं, तो आप उन अवसर का फायदा उठाएं और लग जाएं अपने काम में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: साथियों, हमने शुरुआत में आप सभी से दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न किए थे, तो आइए उनको भी जान लेते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न था कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो उसका सही उत्तर है वेटिकन सिटी।
1: और हमारा आज का दूसरा प्रश्न था कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, तो उसका उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड।
0: बिल्कुल ठीक। तो उम्मीद है साथियों, आज का युवाणी कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। अब दीजिए अनुमति अपने साथी राज
1: और अपर्णा को। नमस्कार।

अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर का गाया हुआ ये मिलन फिल्म का गीत था। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। श्रोताओं, अगला गीत सुनवाने से पहले आइए आपको एक सूचना दे दें। ये सूचना न्यायालय पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस कंट्रोल रूम इंदौर से प्राप्त हुई है। सूचना के अनुसार इंदौर नगर में बाहरी व्यक्तियों के आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने से अपराधों की रोकथाम एवं पतारसी करना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला शहर होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय एवं रोजगार के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने से बड़ी संख्या में व्यक्तियों का बाहर से आवागमन होता रहता है। इंदौर शहर की जनसंख्या अन्य शहरों की तुलना में निरंतर बढ़ती चली जा रही है तथा वहीं बाहरी व्यक्तियों की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है। पुलिस द्वारा जांच करने पर इस प्रकार से बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों के बारे में निश्चित पता नहीं होने से जांच में कठिनाई होती है। इस प्रकार अपराधों की रोकथाम व इन पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन कार्य हो जाता है। पूर्व में इंदौर से आतंकवादी संगठन के सदस्यों एवं बांग्लादेशी अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिससे शहर की शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ साथ मानव जीवन एवं लोक संपत्ति की क्षति के संकट का भय बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि इंदौर शहर में हर दिन जुड़ने वाली नई आबादी की जानकारी पुलिस थाने पर रहे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका सत्यापन कराया जाकर लोक संपत्ति एवं मानव जीवन की सुरक्षा के खतरे को कम किया जा सके। इन असामाजिक तत्वों द्वारा मकानों, कर्मचारियों के रूप में अवैधानिक एवं अवांछनीय गतिविधियों को संचालित किए जाने की प्रबल आशंकाओं के कारण जन सामान्य के जानमाल को आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया है तथा भविष्य में इन कारणों से लोक शांति भंग होने की प्रबल आशंकाएं भी व्याप्त हो रही हैं। इन पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। अतः अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को कायम रखने, जन सामान्य के हित, जान माल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु इंदौर नगरी सीमा में ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा रहे हैं। किरायेदारों की सूचना संबंधित मकान दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जाएगी। इसके पूर्व मकान दुकान किराए से नहीं दी जावे, साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। घरेलू कामगारों एवं व्यवसायिक कर्मचारियों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरांत ही उन्हें रखा जाए, साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। छात्रावासों में रह रहे छात्रों और छात्राओं की सूचना संबंधित मालिक संचालक विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जाए, साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाए एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची संबंधित मालिक संचालक द्वारा विहित प्रारूप में प्रतिदिन थाने पर दी जाए, साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों, कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें काम पर रखा जाए, साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा अतिथि पोर्टल प्रारंभ किया गया है, इस पोर्टल पर भी रुकने वालों की जानकारी अवश्य दर्ज की जाए। पेइंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाए, इसके उपरांत ही पेइंग गेस्ट रखा जाए, साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। ऐसी व्यक्तियों की सूचना जो 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हों, उनकी सूचना संबंधित मालिक संचालक द्वारा तत्काल थाने पर विहित प्रारूप में दी जाए, साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी, कोरियर का कार्य करने वाले कंपनियों के व्यक्ति जो घर घर जाकर पार्सल वितरित करते हैं की जानकारी संबंधित मालिक संचालक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाए, साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए।
स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित मालिक संचालक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जावे, साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों के लिए नियुक्त किए गए गार्ड अथवा अपने स्तर पर नियुक्त किए गए गार्ड की जानकारी सुरक्षा एजेंसी के मालिक संचालक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाए, साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। होटल, लॉज, धर्मशाला आदि में रुकने वाले व्यक्तियों एवं किराए से मकान लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में ICJS सॉफ्टवेयर तथा मोबाइल फेस फॉरेंसिक ऐप से जानकारी सर्च की जाए। विदेशी व्यक्तियों के संबंध में तत्काल सूचना FRRO शाखा को दी जाए। उक्त आदेश को जनसाधारण की सुविधा तथा होटल, लॉज, प्रतिष्ठान संचालकों, मकान दुकान मालिकों, ठेकेदारों, ऑनलाइन शॉपिंग, स्पा सेंटर, प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी आदि के सुनिश्चित पालन हेतु तत्काल प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। समय अभाव के कारण यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में

श्रोताओं, मिलो सजना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत को अब हम यहीं विराम देते हैं। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियाँ बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे

0: प्रचलित नाम है सागर,
1: जी
0: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
1: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
0: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं,
1: जी,
0: यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
1: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
0: जी श्रोताओं, मारियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
1: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
1: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
1: जी,
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
1: जी।
0: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
1: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
1: जी।
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया
1: जी।
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
1: जी।
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
1: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया, आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
1: जी।
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
1: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहां पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविन्द्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविन्द्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविन्द्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमूर्चित पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युष्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवक शाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
4: रामायण
2: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणे बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। तेरह अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला।

0: नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
1: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
2: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
1: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
3: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
3: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
3: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूँ। उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
3: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में,

0: मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: श्रोताओं, 7 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

क्षमा कीजिए श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र पर ये वक्त है सुगम संगीत का। सुगम संगीत में आज हम आपको हिमांशु शर्मा की गायी रचनाएं सुनवा रहे हैं।

0: सुगम संगीत में अभी आपने हिमांशु शर्मा की गायी रचनाएं सुनी। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
3: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
2: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
3: वही दोपहर 1 बजे।
2: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
0: श्रोतो, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र पर अब वक्त है लोक संगीत का। लोक संगीत में आज हम आपको प्रेम सिंह मोहन सिंह दीपालपुरिया के गाए लोकगीत सुनवा रहे हैं।

0: इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के
2: मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने कहा कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
3: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिल वेत्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परम्पराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। और श्रोताओं, अब वक्त है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रम और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने का। अब से कुछ ही देर में यानी 7:20 पर आप खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनेंगे। आज के इस कार्यक्रम में सोया कीट प्रबंधन विषय पर डॉक्टर लोकेश मीणा द्वारा दी गई जानकारी सुनी जा सकती है। साथ ही पराली का सीमित उपयोग विषय पर भी कार्यक्रम में जानकारी होगी। रात्रि 8:00 सुर्खियों में कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत होगा रात 9:15 पर। आप श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन रात्रि 9:30 से 10:30 तक सुनवाया जाएगा। शास्त्रीय संगीत में आज रात्रि 10:30 से सुनिएगा बसंत काबरा का गिटार पर बजाया राग झंझोटी। और आइए अब आपको कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। कल सुबह 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना चिंतन, रोजाना की तरह सुबह 6:30 सुना जा सकता है। खेती की बातें कार्यक्रम में कल सुबह 6:35 पर ग्लेडियोलस फ्लावर की देखभाल के विषय में जानकारी दी जाएगी। श्री रामचरितमानस गान का एक प्रसंग सुबह 6:40 पर आप सुन सकते हैं। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल होगा 7:20 से। 8:30 का समय होगा फिल्म संगीत का। बलराम राठौर और साथियों के गाए लोकगीत लोक संगीत में सुबह 9:00 सुने जा सकते हैं। और सीमा चोरे के गाए लोकगीत आप शाम 6:45 पर लोक संगीत में सुनेंगे। रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर के गाए नगमों का आनंद लीजिएगा सुगम संगीत में सुबह 9:15 पर। और सुगम संगीत में ही शाम 6:30 मेहदी हसन की गाई गजलें सुनवाई जाएंगी। शास्त्रीय संगीत में सुबह 9:30 पर पंडित रविशंकर का सितार पर बजाया राग परमेश्वरी सुना जा सकता है। 10:05 का समय होगा फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल दिन में 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने आप सुन सकते हैं। दोपहर की सभा में फिल्म संगीत दोपहर 12:00 2:00 और 2:30 से सुना जा सकता है। 12:30 का समय होगा संग्रहालय से कार्यक्रम का। महिला कार्यक्रम आप दोपहर 1:00 से सुन सकते हैं। 1:30 का समय लोक संगीत का होगा। 1:45 से हम आपको सुगम संगीत सुनवाएंगे। और सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों की बात करें तो सांध्यकालीन सभा में शाम 5:00 आप युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे। और कल के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है हेलो फ्रेंड्स क्रम। 5:45 का समय होगा फिल्म संगीत का। शाम 6:00 विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत सुना जा सकता है। कल के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय कार्य विभाग आयुक्त भोपाल के सहायक संचालक अब्राहम नीरस से सुषमा व्यास की बातचीत सुनी जा सकती है। साथ ही कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जानकारी भी होगी। खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप कल शाम 7:20 पर भी सुन सकते हैं। 8:00 से सुर्खियों में कार्यक्रम कल भी सुनवाया जाएगा। 8:15 से आप दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम सुनेंगे। रात 9:15 का समय चित्रगीत का होगा। राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती रात्रि 9:30 और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10:00, ये दोनों ही कार्यक्रम कल हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहे। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को करेंगे दर्शन पूजन। अगले 1000 दिनों तक होंगी विशेष प्रार्थनाएं। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर, कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। और देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य, वाणिज्यिक आपूर्ति 70% बहाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। श्री मोदी ने एक अखबार में लिखे लेख में कहा कि सोमनाथ भारत की सभ्यता

0: ताकत का प्रतीक है और यह मंदिर बताता है कि आस्था और संस्कृति बार बार के हमलों के बावजूद जिंदा रहती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद कोलकाता में आयोजित विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया है। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया।
1: प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शुभेंदु अधिकारी ने इस चुनाव में ममता बनर्जी को उनके गृह क्षेत्र भवानीपुर से हराया है और नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। श्री शुभेंदु कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके निवास पर भेंट की। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी शिष्टाचार भेंट कर उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट किया। दोनों नेताओं ने संगठनात्मक मामलों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा भी की। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार का कहना है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी वितरक पर गैस की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि वाणिज्यिक आपूर्ति करीब 70% तक बहाल हो चुकी है और प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी गई है। मार्च से अब तक 6 लाख से अधिक PNG कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं और देश में कहीं भी पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है।
3: अभी तक 6.5 लाख से अधिक PNG कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया, ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को PNG कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है।
0: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्व रेडक्रॉस दिवस पर भोपाल में आयोजित सेवा सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है और रेडक्रॉस के 7 मूलभूत सिद्धांत जीवन जीने के सच्चे मार्गदर्शक हैं। प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक किसानों से 53.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है और करीब 9,500 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा चुका है। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल के साथ 40 रुपए बोनस मिलाकर किसानों को कुल 2,625 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। राज्य सरकार ने खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 मई 2026 कर दी है और उपार्जन केंद्रों पर तौल पर्ची बनाने का समय भी रात 10 बजे तक कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज बाणसागर सर्किट हाउस में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री शुक्ल ने शहडोल उमरिया मार्ग और विजय सोता पुल निर्माण में अपेक्षित प्रगति न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्रों, सांदीपनी विद्यालय और जर्जर शासकीय विद्यालयों की मरम्मत जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। प्रदेश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 1,21,392 घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए 847 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया है। ऊर्जा विकास निगम के MD अमनबीर सिंह बैस ने बताया।

बताया कि अच्छा काम करने वाले वेंडरों को सम्मानित किया जाएगा जबकि लापरवाह वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आकाशवाणी की सेवा के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज नई दिल्ली में 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर ही खत्म हुई। इसी तरह की एक दौड़ भोपाल स्थित आकाशवाणी के दफ्तर से भी सुबह आयोजित की गई। रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 362 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिरोजपुर डिवीजन के 1000 किलोमीटर और जम्मू डिवीजन के 446 किलोमीटर रूट पर यह सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें जालंधर जम्मू तवी कटरा, बटाला पठानकोट और बनिहाल बारामूला जैसे महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। कवच एक स्वदेश निर्मित स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो खतरे की स्थिति में ट्रेन में अपने आप ब्रेक लगाकर टक्कर और दुर्घटना को रोकती है। राज्य शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीएड, डीएलएड, एमएड समेत विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश की समय सारणी जारी कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी rsk.mponline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें डीएलएड के लिए 15 मई से, बीएड के लिए 25 मई से और एमएड के लिए 1 जून से आवेदन शुरू होंगे। कुछ ही देर बाद आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं कल रात लखनऊ में बारिश से बाधित मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से मात दी। मिचेल मार्श की शानदार बल्लेबाजी ने उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिलाया। प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी व पूर्वी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा और पांडुना में आज तेज आंधी के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना है, जिससे किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है। वहीं छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 मई को गुना आएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रदेश भर में कल नेशनल लोक अदालत लगेगी, जहां बिजली बिल, बैंक रिकवरी, तलाक, सड़क हादसे और चेक बाउंस जैसे पुराने मामलों का आपसी सहमति से जल्द निपटारा किया जाएगा। अशोकनगर के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने जिला अस्पताल का अचानक दौरा कर आईसीयू में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। आगरमालवा के कंपनी गार्डन में जिला बैठक हुई, जिसमें अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, सांसद और संभाग प्रभारी शामिल रहे। शिवपुरी में जनगणना 2027 के काम में लापरवाही करने वाले 12 कर्मचारियों और अफसरों को नोटिस थमाया गया। शहडोल में वन विभाग तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को जंगली जानवरों से बचाव के तरीके बता रहा है और अच्छे पत्ते तोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। अब किसान श्रोता अपना कार्यक्रम सुने, खेती गृहस्थी।

0: भाई बहनों, रबी की फसल से तो आप सब निपटी गया अने अब तैयारी कर रहा होगा अपनी खरीफ की फसल की। अने जैसो कि सबके मालूम है कि अपना क्षेत्र में सोयाबीन एक प्रमुख फसल है, सब लोग सोयाबीन की खेती करें। अने सोयाबीन की खेती करने इसका पहला यदि अपन उका में जो अपने तैयारी करनी है, जिस प्रकार से उकी योजना बनेला, तो देखो कामकाज बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। अने सोयाबीन में कीट प्रबंधन का लिए और बीजोपचार का लिए अपने कई करना चाहिए, इन्हीं बारे में एक वार्ता लिखे हूँ, जिसमें डॉक्टर लोकेश मीणा, जो कि कृषि वैज्ञानिक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से हैं, इनने अपने बताया है कि सोयाबीन में अपन कीट को प्रबंधन कैसे करा और बीज उनको उपचार कैसे करा। सुनाया वार्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा हूँ, कीट वैज्ञानिक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में। मैं आज आपको सोयाबीन में कौन कौन से कीट लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके बारे में एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले सोयाबीन में लगने वाले कीटों में प्रमुख है तना बेदक कीट, जिसमें गडल बीटल, जिसको आप चक्रभ्रंग भी बोलते हैं, रिंग कटर भी बोलते हैं, वो आता है। दूसरा है तना मक्की, जिसको आप मतलब सोयाबीन में तने के छेद

0: से आप पहचानते हैं कि दो प्रमुख कीट तनाभेदक कीट है। चक्रभ्रंग सबसे पहले पौधे में दो रिंग बनाता है, तो नीचे वाले रिंग के समीप में अपने अंडे देता है। तना मक्खी क्या करती है, तना मक्खी अपने अंडे पत्ती की निचली सतह में देती है और वहां से 3 से 4 दिन में वो अंडा हैच होकर के नस से होता हुआ तने में प्रवेश कर जाता है। चक्रभ्रंग में क्या है कि पौधा अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो इसमें पौधा पूरा मर जाता है, लेकिन तना मक्खी में पौधा शुरुआत की अवस्था में मरता है, बाद में मरता नहीं है, लेकिन नुकसान में काफी हो जाता है, जिससे कि लगभग 2 से 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तना मक्खी के कारण उत्पादन में नुकसान हो जाता है। इसके अलावा पत्ती खाने वाले कीटों में प्रमुख है सेमी लूपर है, तंबाकू की इल्ली है, ये प्रमुख कीट है पत्ती खाने वाले कीटों में। तो इनका क्या है, ये पत्ती की जैसे तंबाकू की इल्ली पत्ती की निचली सतह में रह करके पूरे हरे भाग को खा जाती है, सिर्फ पॉलिथीन जैसा ही भाग छोड़ती है। इसके अलावा जैसे सेमी लूपर है ये अनियमित छेद बना करके पत्तियों को खाती है, लेकिन ये अपना अंडा अलग अलग करके देती, पूरे खेत में चित्रा के अपने अंडे देती। तीसरे प्रकार के कीट है रस चूसने वाले कीट, जिसमें की एफिड हो गया और जिसको माऊ बोलते हैं या चेपा भी बोलते हैं, दूसरा माइट्स हो गया जिसको कि आप मकड़ी लाल मकड़ी भी बोलते हैं, ये हो गए, ये पत्ती की निचली सतह से अपना रस चूसते हैं। एफिड में क्या है, जैसे कि पत्ती की निचली सतह से रस चूसने से क्या है, पत्ती पीली पड़ जाती है, लेकिन ये फसल की शुरुआत की अवस्था में भी आ सकते हैं और बाद की अवस्था में भी आ सकते हैं। ये इनका इसका आक्रमण तब ज्यादा होता है जब फसल में सूखे की कंडीशन हो, और मकड़ी का भी इसी कंडीशन में आक्रमण होता है, लेकिन इसमें क्या है छोटे छोटे सुई के नोक जैसे सफेद धब्बे पत्ती की ऊपरी सतह में बन जाते हैं मकड़ी के केस में, मकड़ी के मामले में। तो ये एक और कीट लगता है सोयाबीन में, इसको पोड बोरर बोलते हैं या फली छेदक बोलते हैं। इसका आक्रमण आजकल क्या है जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक हो गया है। अब ये तो सोयाबीन में लगने वाले कीट है, अब इनका प्रबंधन कैसे किया जाए इसके बारे में बताऊंगा। इनके प्रबंधन में सबसे प्रमुख हथियार है बीज उपचार। अब बीज उपचार करने के लिए ये प्रॉपर सीक्वेंस मतलब ये क्रम रहता है, तो इस क्रम को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे पुलिस में अपन FIR दर्ज करते हैं तो उस हिसाब से FIR का पहला अक्षर है फंगीसाइड, इसको फफूंदनाशी बोलते हैं, दूसरा अक्षर है आई मतलब इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक, सबसे पहले फफूंदनाशी से बीज उपचार करें, उसके बाद कीटनाशक से बीज उपचार करें, और इन दोनों से आप बीज उपचार आप 1 महीने पहले कर सकते हैं, लेकिन जो आखिरी में जो राइजोबियम से आप बीज उपचार करते हैं वो बुआई से 1 या 2 दिन पहले ही आप कर सकते हैं, इसको 1 महीना पहले से करके नहीं रख सकते। और आपने अगर सिक्वेंस इसका क्रम अगर उल्टा कर दिया तो इससे काफी मतलब बीज में नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे राइजोबियम मर जाते हैं। तो इसका क्रम आप याद रखें, FIR क्रम से ही आप इसको बीज उपचार करें। अब इसके बीज उपचार के लिए आप मार्केट में बहुत सारे केमिकल उपलब्ध हैं, या तो आप अलग अलग करके भी आप बीज उपचार कर सकते हैं, और नहीं तो अभी प्रीमिक्स कीटनाशक जो आता है, पूर्व मिश्रित कीटनाशक आता है, जो मार्केट में आपको इलेक्ट्रॉन कास्केड वार्डन नाम से मिल जाएगा, इसमें 3 रसायन रहते हैं, थायपिनोट मिथाइल रहता है, एजॉक्सिस्ट्रोबिन रहता है जो कि फफूंदनाशी जो फफूंद को कंट्रोल करते हैं, और तीसरा कीटनाशक है थायमेथोक्सोम है। तो इसकी मात्रा 10 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से, तो इस हिसाब से आप बीज उपचार कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर अलग अलग करना है तो सबसे पहले आप फफूंदनाशी से कर सकते हैं, जैसे थायपिनोट मिथाइल से कर सकते हैं या एजॉक्सिस्ट्रोबिन से कर सकते हैं, इसके बाद आपको इंसेक्टिसाइड जैसे थायमेथोक्सोम से कर सकते हैं। इसकी मात्रा 10 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से, ये इम्प्राक्लोप्रिड है जिसकी मात्रा है 1.25 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से, इसी हिसाब से भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। अब दूसरे जैसे रसायनों का के द्वारा कीट प्रबंधन कैसे किया जाए इसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे चक्रभ्रंग या स्टेम प्लाई जो तना मक्खी है उसके लिए आप थायमेथोक्सोम प्लस लेमड़ा साइलोथ्रिन जो आता है वो अलिका नाम से आता है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं, इसकी मात्रा 125 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से। और दूसरा जैसे बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड आता है, इसकी मात्रा 350 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से। रस चूसने वाले कीड़ों के लिए बीज उपचार सबसे कारगर उपाय है। इसके बाद अगर आपका ये कंट्रोल नहीं होता है, इनका आक्रमण होता है फसल में, तो जो मैंने कीटनाशक जो तना मक्की और इसके लिए बताया है चक्रभ्रंग के लिए, वही रसायन इनमें काम में आते हैं और मात्रा भी इनकी सही रहती। इसके लिए आप ध्यान रखें कि पानी की मात्रा 500 ल जरूर रखें, और सुबह शाम के टाइम इनका स्प्रे ना करें, हो सके, जैसे बारिश के सीजन में तो बारिश का और स्प्रे करने में कम से कम आधे घंटे का गैप रहना चाहिए। पत्ती खाने वाले कीट के लिए बहुत सारे कीटनाशक उपलब्ध हैं जो CIB द्वारा रजिस्टर्ड है, पंजीकृत हैं। इनमें प्रमुख है क्लोरेंट्रेलिप्रोल, जो कोराजन नाम से आता है, राइनेक्सपर नाम से आता है। इसकी मात्रा 150 ML प्रति हेक्टर के हिसाब से। इसके अलावा आप इंडोक्साकार भी डाल सकते हैं, इसकी मात्रा 333 ML प्रति हेक्टर के हिसाब से है। और दूसरे भी फ्लुबेंडियामाइड के भी दो फॉर्मुलेशन, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा भी फ्लुबेंडियामाइड जो 39.35% है, उसकी आप मात्रा भी 150 ML प्रति हेक्टर के हिसाब से है। तना फलीबद्ध कीट जो पोड बोरल भी बोलते हैं, उसके लिए आप इंडोक्साकार स्पेशल मतलब विशिष्ट विशेष कीटनाशक, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा 333 ML प्रति किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से है, और इसका आप उपयोग भी कर सकते हैं क्योंकि फलीबद्ध कीट के लिए स्पेशल है। इसके अलावा फ्लुबेंडियामाइड का 39.35% का भी आप उपयोग कर सकते हैं, इसकी मात्रा 150 ML प्रति हेक्टर के हिसाब से है। और इन सबके लिए आप कम से कम 500 लीटर पानी का जरूर प्रयोग करें। अगर नेपसेक स्प्रे से कर रहे हैं, ट्रैक्टर वाले से कर रहे हैं, पावर स्प्रे से, तो आप 150 से 200 लीटर पानी का जरूर प्रयोग करें। और जैसे ड्रोन से कर रहे हैं या हाई वॉल्यूम से कर रहे हैं, तो आपको 20 से 50 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए। तो ये मैंने कीटों के बारे में, उनका मतलब सटीक प्रकार कैसे पहचाने, उनको कैसे, उनके बारे में बताया और उनके प्रबंधन के बारे में बताया। धन्यवाद।
1: सोयाबीन में कीट प्रबंधन और बीजोपचार, इना विषय पे अभी अपन ने वार्ता सुनी। वार्ताकार था डॉक्टर लोकेश मीणा, कृषि वैज्ञानिक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से। देखो भाई बहनों, अब बखत हो रही है कि एक मीठो सो लोकगीत और अपन सुन ला, जी के गायो बेन उषा रायकवार ने।

0: भाई बहनों उषा राय कुवार को गाय हुआ लोकगीत भी अपन सुनियो आने तमारे माला में जोगो। आज है 8 मई, एक ऐसो दिन जो याद दिलावे कि मानवता अभी जिंदा है। आज को दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस का रूप में अपन मनावा है। सेवा, करुणा और जरूरतमंदना की लोग जो मदद है वी इन्हीं संस्था का लोगन करें और हमेशा तैयार रहे किसी भी प्राकृतिक आपदा का समय या फिर युद्ध का समय। अनेक भेदभाव का बगैर कि जो मरने वालों सैनिक है या जो घायल सैनिक है वो कौन सी तरफ को है या कौन सा देश को है, सब कुछ त्यागी के नहीं केवल सेवा का भाव से उके सेवा करे। अने रेड क्रॉस को मतलब है लाल निशान। जब यो लाल निशान किसी युद्ध में भी दिखी जावे तो गोली चलनो भी बंद हो जावे, क्योंकि सबके मालूम है कि ई मानवता का दूत होने और सुरक्षा और उम्मीद को चिन्ह लिखे आया है। भाई बहनों 8 मई से लगे के 15 मई तक रोज रेड यो जो रेड क्रॉस सप्ताह मनायो जावे। इमें जगह जगह पर रक्तदान शिविर लगे, मुफ्त में स्वास्थ्य की जांच करी जावे और प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग दी जावे। तो भाई बहनों आप भी अपने स्तर पे जो भी आपसे बनी सके जन कल्याण का या समाज सेवा का काम समय समय पे करिया करो। अने कोई की सहयोग करनो या कोई की मदद करनो तो समझ के है कि घणो पुण्यो काम रहे। अने देखो एक पुण्यो काम यो भी रहे कि अपन अपना पर्यावरण की सुरक्षा करा। पर्यावरण की सुरक्षा करने का लिए अपना किसान भाई होन सबसे बड़ो काम तो यो कर सकता है कि जो पराली है उके नहीं जलावे। पराली जले कि अपन अपना पर्यावरण के, अपनी मिट्टी के, अपनी धरती के बहुत नुकसान पहुँच रहा है। पर यदि पराली नहीं जलावे तो अपना किसान भाई होन इन्हीं पराली को कई करे, यो भी सवाल सबका मन में आता होगा। तो भाई बहन होन सीमेंट में पराली को उपयोग करके अपन अपना घर के बना सकता है, मजबूती दे सकता है। अने यो कसे होएगो इना बारा में एक भेंट वार्ता है। भेंट वार्ता में सहायक प्राध्यापक विवेक तिवारी और अमर गुजर से बात करी है धरणीधर मिश्रा ने, तो सुनो उनकी यह बातचीत।
1: हमको ऐसी एक जानकारी मिली कि सोयाबीन की जो भूसो है नी उनके जलाने के बाद भी वो कोई काम आई रहा है, तो ऐसी जानकारी लगी हमके जो यहाँ गोविंदराम सिकसरिया महाविद्यालय है नी इंदौर में, यहाँ का एक सहायक प्राध्यापक है भाई विवेक जी तिवारी। हमके मालूम पड़े कि उन्होंने इन बारे में कोई जानकारी रखी है और कोई कुछ शोध भी उनका छात्र लोगों ने करी है, तो अपन हमने किसान भाई स्वरूप बात करें उनसे कि भाई कई बात है। तिवारी जी के पास आया हम अभी न, उनसे अपन पूछ रहे हैं। भाई तिवारी जी राम राम।
2: राम राम सभी किसान भाइयों को।
1: तिवारी जी ऐसी कोई जानकारी लगी हमके कि ये सोयाबीन जो काटने के बाद जो भूसो बचे तो किसान भाई लोगों के जल ही दे, उनके बाद फिर वो खेत में पड़े हो रहे हैं यहीं में न, वो मिट्टी के भी खराब करें, तो उनको कहीं उपयोग हो सके कहीं?
2: ये प्रयोग की दृष्टि से हम लोगों ने किया ही, क्योंकि किसान अनाज उगाता है और उसके बाद ये होता है कि इतना भूसा कहाँ लेकर जाए, तो कई बार फसल को लेने के बाद उस भूसे को जला देते हैं और कई बार लोगों के मन में रहता है कि पराली है, प्रदूषण है, 10 चीजें। हमने किसान के स्तर पर सोचा कि मान लीजिए अगर भूसा जल जाता है, हम वैसे तो पर्यावरण को देखते हुए भूसा जलाने को प्रतिरोधक मानते हैं, पर अगर कोई जला देता है तो क्या ये निर्माण की दृष्टि से प्रयोग हो सकता है? जैसा कि दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि उनके यहाँ भारतीय मानक अनुसार चावल की जो बालियां जिसे राइस हस्क कैश के तौर पर उन्होंने अपने मानकों में जगह दी है, उनके यहाँ तो इस बात को रखा कि अगर चावल की ये जो हस्क है, भूसा है, इसको जलाकर उन्होंने सीमेंट के निर्माण में प्रयोग किया। पर अपने मध्य प्रदेश में राइस हस्क कैश की जगह सोयाबीन हस्क कैश और बीट हस्क कैश, जिसको हम निर्माण की दृष्टि से प्रयोग कर सकते हैं। दक्षिण भारत में राइस हस्क कैश किलो के भाव से मिल रहा है और भारत में और भी जगह जहाँ शोध का कार्य होता है वहाँ इसको व्यापक स्तर पर राख के तौर पर बेचा जा रहा है और सीमेंट इंडस्ट्रीज इसको प्रयोग कर रही है। इसी तरीके से GGBS और अपना स्लैग सीमेंट, स्टील स्लैग, इसका इस्तेमाल प्रयोग में आता है। पर क्या हमारे अपने किसान भाई का सोयाबीन हस्क हैश या सोयाबीन स्ट्रॉ हैश या वीट हस्क हैश क्या निर्माण में आ सकता है? इस बात को हमारे साथियों ने इंगित किया कि हमारे मध्य प्रदेश का अपना है और ये राइस हस्क हैश की कंपैरिजन में आ सकता है क्या? हमने इसी पर शोध किया और इसका परिणाम है कि इसको किस तरीके से मिला सकते हैं, क्या निर्माण की विधि है, उस पर हमारा ये सतत शोध रहा।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि हमने देखा है कि सोयाबीन को जो भूसो रहे वो तो कोई काम ही नहीं आए, फालतू पड़े रहे।
2: जो हमारे विद्यार्थी रहे अमर गुर्जर, इन्होंने इस बात को प्रासंगिकता से इंगित किया कि गेहूं के भूसे को तो जानवर खा ले, और सोयाबीन के भूसों के प्रति जानवर का भी थोड़ी सा भाव नहीं रहता।
3: हाँ, यह बात है।
2: अब ये भूसा जो रहा उसको अगर जला दिया जाता है तो जलाने के बाद इसमें क्या तत्व मौजूद है, इसका हमने केमिकल परीक्षण किया। अच्छा। इस परीक्षण से हमें ज्ञात हुआ कि इसमें सिलिका की मात्रा होती है और इसमें अगर हम मार्बल पाउडर का चूरा मिलाते हैं जो कि क्योंकि हमें प्रायतः देखने को मिलता है कि बाहर चूने का विभिन्न प्रयोग हो रहा है, कुछ खाने को चूनो अलग, लगाने को चूनो अलग, तो पुताई के उद्देश्य से चूना अलग आता है, खाने के उद्देश्य से चूना अलग आता है, सबकी कीमत अलग अलग है। तो इतना न्यूनतम मात्रा में जो हमारा वेस्ट है, जो मार्बल पाउडर, क्योंकि मध्य प्रदेश में जबलपुर और दूसरे जगह भी मार्बल मकराना जैसे कार्यक्रम होते हैं जिसपे नकाशी के बाद उसका जो चूरा बचता है और जो पानी का प्रदूषण का कारक भी बनता है, ऐसे मार्बल पाउडर का प्रयोग हमने किया। हमने प्रयोग की दृष्टि से देखा कि 15% जला हुआ सोयाबीन का भूसा और 10% मार्बल का पाउडर अगर मिलाते हैं तो हमारे 25% सीमेंट की बचत होती है और 50% कार्बन के उत्सर्जन को हम रोकते हैं। यानी प्रदूषण के स्तर पर देखें, आज जितना बड़ा महंगा सीमेंट हम क्रय करते हैं उतना ज्यादा प्रदूषण को हम प्रोत्साहन करते हैं।
3: तो ये जो खोज है आपका निर्देशन में आपके छात्र ने भी कुछ इसमें काम करे होंगे?
2: जी, ये छात्र का ही कार्य है। आओ अमर।
4: अमर भाई, तुम का यहाँ का छात्र हो, गोविंदराम सेक्सरिया अपना जो इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ का?
5: हाँ जी, मैं सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को राम राम करना चाहता हूँ। चूंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ इसलिए मुझे ये समस्या लगी कि सोयाबीन का जो भूसा है वो तो जैसे सर ने बताया बेस्ट है, उसको ना अपना जानवर हो खाए ना वो कहीं यूज आए, किसान जला दे उखे और फिर उखे बाहर कहीं फेंके, उससे अच्छा है कि मैं एको कहीं उपयोग कर सकूं। एका लिए मैंने किसान भाई का हित का लिए थोड़ी सी सोची, जैसे सर ने बताया कि हम सोयाबीन की राख, भूसा की राख, उसे भी हम सीमेंट बनाई सका।
3: अरे वाह, कैसे वो?
5: हमने जो ये रिसर्च में ये चीज सोची कि हमने सबसे पहले तो मैं वैसे हरदा से आता हूँ, हरदा में चूंकि सोयाबीन की फसल हो है, हर किसान भाई का पतो है अपना एमपी में सोयाबीन की फसल भरपूर हो, तो हाँ खास फसल, तो मैंने ये देखो कि हरदा का जो किसान है वो सोयाबीन की फसल को जो भूसो है ओके ये डंप करे बाहर, तो उसमें खर्चो भी बढ़े और खेत साफ करना का लिए इनका डंप करना ही पड़े, तो मैंने ये सोचो कि ये सोयाबीन का भूसा से अपन कई कर ही सका। तो मैंने यहाँ कॉलेज में आया, सर से बात की, सर ने बोला कि हाँ इससे हम कुछ कर सकते हैं, मतलब ये बेस्ट है, तो मैंने सर को बताया कि सोयाबीन को भूसो भी बेस्ट है, गेहूं को भूसो और अपनी जगह कई नाम राइस की जब पराल आए एको तो काम चल ही रो था कॉन्क्रीट पर सोयाबीन का भूसा से अभी तक कोई ना मतलब सीमेंट का एमें काम नहीं करियो तो मैंने यो यूज करना का हिसाब से थोड़ो सो सर के बतायो, हमारा डिस्कशन हुयो, फिर हमने यह जो सोयाबीन को राख है वह हरदा से ही लेके आया और पूरा मतलब एको काम करियो, 2 साल तक रिसर्च चली, ओका बाद हमने यो पायो कि 15% सोयाबीन का भूसा की राख और 10% मार्बल पाउडर।
3: अच्छा।
5: हम मिल ही सका सीमेंट में,
3: सीमेंट में तो बाजार से अपन लाओ सीमेंट में।
5: हाँ, अच्छा। हम मिल ही सका तो हमारो कही है पानी की भी बचत करेगो।
3: पानी की कैसे?
5: पानी की बचत हम तरे ही करा। हाँ। तो अपनी नॉर्मल सीमेंट में अपन दिन में तीन चार टाइम तो अपना का तरे ही करना ही पड़े, तो यह तरे ही भी कम करेगो।
3: अच्छा।
5: हाँ, और इससे मतलब बहुत सी चीजें ऐसी है जो

0: अपनी लागत भी कम हो जाएगी सीमेंट की।
1: लागत कम हुई जाएगी, 30-25% लागत भी कम हुई जाएगी। अच्छा। और लोकली भी यो काम हुई सके।
0: पर इको अपन जैसे प्रयोग करांगा मकान बनाने शुरू, तो एक पे कोई ताकत तो कम नहीं हो जाएगी सीमेंट की?
1: नहीं, ताकत कहीं कम नहीं होगी। हमने बहुत टेस्टिंग करी ओपे। अच्छा। 2 साल तक 1.5 साल हमने यही टेस्ट करा कि एक ही जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वह कम तो नहीं हो रही, ड्यूरेबल है कि नहीं। अच्छा। मतलब स्ट्रक्चर की लाइफ जीवन है कि नहीं, मजबूती है कि नहीं। अच्छा। हमने यह रिसर्च करने के बाद यह सोचो कि हाँ, यह काम में आई सके।
0: अच्छा, ये सब कर ही चुके ना। हाँ। तो आप जो शोध कर रहा हो अभी, कहीं एम ही कर रहे हो ना आप?
1: हाँ, मारो नाम अमर गुर्जर छे और मैं SGS ITS का एम ई स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ। मतलब।
0: अच्छा, अरे वाह भाई वाह। तो आपने अच्छी सोची कि गाँव का जो अपना किसान भाई लोग, चूंकि आप भी किसान परिवार से ही हो, तो उनका जो नुकसान हो रहा, तो वो नुकसान भी फायदा बदल जाए, उनको भी पैसा का उनका लागत मिल जाए। हाँ। ना पर्यावरण की भी रक्षा हो जाए, पानी कम लगेगा तो पर्यावरण बचेगा भैया।
1: पर्यावरण भी बचेगा, किसान को फायदो छे।
0: अच्छा,
1: मैं एक किसान पुत्र हूँ तो मखे बस किसान को फायदो चाहिए, तो किसान को फायदो अपन कर ही रहे।
0: तो हमके ये बताओ कि कभी जैसे अपना गांव की पराली जलाने की बहुत समस्या देखने में आया, पंजाब तरफ तो बहुत प्रदूषण भी हो रहे हैं, कभी ऐसा कोई हो सके जैसे उन्होंने आपने जली हुई भूसा की बात बताई सोयाबीन की, तो अपना जलानो नहीं पड़े जैसे गांव की पराली, और उनको कोई उपयोग हो सके कहीं?
2: बिल्कुल, इसके लिए मध्य प्रदेश में एम्प्री शोध संस्थान, ये उनका पेटेंट है कि इन परालियों के माध्यम से बिना जलाए सूखे भूसे के दरवाजों का निर्माण हो रहा है। आज MDF पार्टिकल बोर्ड या भूसे के जो दरवाजे आप देखते हैं, उसी के तौर पर आप इन परालियों को बिना जलाए लेटेक्स मटेरियल के साथ मिलाकर आप इस तरीके का दरवाजों का निर्माण कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश में वो दूर नहीं कि जब हम परालियों को या दूसरे पंजाब और हरियाणा की परालियों को भी क्रय करेंगे और उनके दरवाजे निर्मित करेंगे।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है। मतलब अपने जलाना नहीं पड़ेगा?
2: नहीं, इन्हें जलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके फाइबर के अलाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, जैसे कि आप प्लास्टिक की फाइबर को देखते हैं, आपको भूसो भी एक नेचुरल फाइबर है।
0: अच्छा।
2: उस फाइबर की क्रय शक्ति उसके पार्टिकल के ओरिएंटेशन का, यानी आपने 90 डिग्री पर रखा, 0 डिग्री पे, 45 डिग्री पर, यानी आप भूसे के चारे को बिछाने की जो कला है उस पर आप इसकी शक्ति को निर्धारित कर सकते हैं।
0: अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात बताई कि भूसा के जलानों भी नहीं पड़ेगा। गांव का बोला जैसे पराली की बात बताई, असोको ऐसे अपन बेची सका, मतलब ऐसा भी व्यवस्था हो जाएगी कि उनका भी नगदुल्ला मिल जाए किसान भाई के।
2: बिल्कुल, किसान को फसल के बाद का भी लाभ मिले।
0: वाह,
2: ये एक किस प्रयोग की दृष्टि में रहा। दूसरा, किसान भाइयों के साथ में ये भी रहा, हमारे यहाँ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, यानी आपको अभी तक वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना पड़ता था ताकि आपको ये लगता था छत जो है ये कॉलम है सही भरा है कि नहीं।
0: हाँ, पूरा
2: गैप ना रह जाए, कहीं लीकेज ना रह जाए। इस कंक्रीट को बनाते समय, मतलब सोयाबीन हस्क एश में, ये एक प्रॉपर्टी हमको देखने को मिली कि ये अपने आप ही जब इसको मिलाते हैं इस खास अनुपात में जो हमने रखा 15 और 10 का, और 75% सीमेंट और पानी का एक विशेष मात्रा फिक्स करी जिसमें पानी को हम कम किया, तो अपने आप ही सारे जॉइंट फिल हो जाते हैं।
0: अरे वाह।
2: तो इसको ठासने की जरूरत नहीं पड़ती, इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती, इसको हमारे किसान परिवार या किसी भी निर्माण में आसानी से प्रयोग की दृष्टि से लिया जा सकता
0: है। अच्छा,
2: तो ये खास बात इसकी रही।
0: अच्छा तिवारी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि अपने जो सीमेंट अपन बाजार से लावा उसमें अपन 25% जो है ये दोनों चीज मिले थे, 15% तो यह मिले थे पराली, जैसे आपने बताई सोयाबीन की है नी, जली हुई पराली जो वह भी काम आई जाए, न साथ में 10% मार्बल को चूरो एकदम पाउडर, वो जो कितनी जगह तो मुफ्त में मिल जाएगा और बहुत कम कीमत है उनकी, तो 25% अपन इनमें ले लेंगे तो अपनी जो लागत है सीमेंट की वो भी कम हो जाएगी, पानी भी कम लगेगा तराई को, और मजबूती उत्ती की उत्ती, मजबूती में तो कोई फर्क नहीं है,
2: मजबूती में कोई फर्क नहीं है। और निर्माण की दृष्टि से हमने इसको बीम जो लेबोरेटरी में किया, जो आप घरों पर 10 फीट लंबे बीम या 12 फीट का स्पान वाले बीम लेते हैं, इसी तरीके के वास्तविक आकार के साइज के बीम बनाकर हमने टेस्ट किया है। अमर ने इस पर बहुत मेहनत की, अमर के साथियों ने भी मेहनत की, तो उसका परिणाम का प्रयोग है, और ये पूरा जो श्रेय है हम किसानों के प्रति समर्पित करते हैं।
0: वाह, बहुत अच्छी जानकारी दी विवेक तिवारी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। न भाई अमर गुर्जर, तुमने भी सर के साथ बैठ के ना उनका निर्देशन में इतनी अच्छी खोज करी, जानकारी ली, जो सारे किसान भाई उन शुरू काम आएगी। आपके दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
3: सीमेंट में पराली को उपयोग कैसे करा, इना बारा में सहायक प्राध्यापक विवेक तिवारी और अमर गुजर से बात करी थी भाई धरणीधर मिश्रा ने। अन्य देखो इतनी अच्छी बातचीत का बाद एक लोकगीत तो और बने हैं, सुना प्रेमलता।

0: अभी आप खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: सुर्खियों में नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी। इस सप्ताह की शुरुआत में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद अब ध्यान सरकार के गठन पर केंद्रित हो गया है और वही है आज हमारी चर्चा का विषय, पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारी, राजनीतिक गतिविधियां और चुनौतियां। इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और संचिता गुहा और भाजपा प्रवक्ता केया घोष। आप सबका आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में स्वागत है।
2: नमस्कार,
3: धन्यवाद।
1: आज कोलकाता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सुवेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा की। चलिए सुनते हैं गृह मंत्री ने क्या कहा।
4: भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहाँ आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: तो अभी हमने सुना कि अमित शाह जी ने शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगा दी जो कि पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी, शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में वो क्या कारक थे जिन्होंने उनको इस पद के लिए उपयुक्त बनाया। खेया जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि ये जो जनादेश मिला है इसको आप किस नजरिए से देखती हैं?
3: सबसे पहली बात ये है कि ये जो लड़ाई थी, मैं लड़ाई इसलिए बोल रही हूँ कि ये लड़ाई से किसी भी हद से कम नहीं था। लगातार ये कुशासन पश्चिम

0: बंगाल में जो हुआ है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पूरा एक युवा पीढ़ी रस्ते में बैठ गया है। तो ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई एक दिन में तो नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो लड़ाई जो तृणमूल सरकार थी उनके वर्सेस पश्चिम बंगाल के आम जनगण उनका, जनता ने इस बार तय कर लिया था कि तृणमूल को हटाना है, और उनके सामने एकमात्र विकल्प था भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आजकल देखिए इंटरनेट की जमाना है, हर जगह की खबर मिलती रहती है, जैसे कि लोगों को ये भी पता लगता है कि असम जैसे छोटे राज्य में भी इतना बड़े तादाद में इंडस्ट्री हो रहा है, तो लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल में हमारे यहाँ क्या है, तस्करी है, राशन घोटाला बोलिए, शिक्षक की नौकरी को लेके घोटाला बोलिए, तो ये तो पश्चिम बंगाल की संस्कृति नहीं है
1: जी।
0: तो लोगों ने इस बार तय किया था कि पश्चिम बंगाल से जो सरकार इनका बिल्कुल सुपरा साफ करना
1: जी। तो शेखर जी, वो कौन सी ऐसे कारक थे, कौन से फैक्टर्स थे जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में जिन्होंने काम किया?
2: अनुभव जी, आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो लंबा सा एक मुहिम चला जिसका एक बड़ा चेहरा था शुभेंदु अधिकारी
1: जी,
2: पिछले चुनाव से पहले आए थे, और उसके बाद जिस तरह नंदीग्राम में ममता को डिफीट किया, और इस बार दोबारा भवानीपुर में, दक्षिण कलकत्ते के एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, वहां पे ममता को अपने गढ़ में जाके डिफीट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और लगातार जिस तरह तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो राजनीतिक जो हिंसा चली आई है उसको मुकाबला करना, आपने देखा दो दिन पहले किस तरह घटना घटी
1: जी,
2: उनकी सेक्रेटरी को गोली मार के हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो कल्चर है, ये साइकिल ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस जो हमने देखा है, खास करके पहले वामपंथी सरकार में था, इसके बाद में अभी तृणमूल के ए में भी एक प्रकार से हथियार बन गया, कुछ भी नहीं ऐसे ही चल रहा था मामला, केवल लोक कल्याण के काम पे कुछ स्कीम्स दे रहे थे, और लोग के अंदर ये था कि अगर चुनाव बिना भय सुरक्षित रूप में अगर होगा तो जरूर वहां पे परिवर्तन आ सकता है। तो इस बार हमने देखा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो व्यवस्था की जिसकी वजह से लोगों ने बिना डर घर से बाहर आके वोट किए, पहली बात जो SIR को ममता ने बड़ा मुद्दा बनाया उसको ने भी लोगों ने नकारा दिया, क्योंकि SIR के माध्यम से जितने फर्जी वोटर्स गोस्ट वोटर्स भी निकल गए, पश्चिम बंगाल के जनता की जो आशाएं अपेक्षाएं उसको रिफ्लेक्ट करके इतना बड़ा मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी।
1: संचिता जी, आपसे भी यही पूछना चाहूंगी, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन से ऐसे कारक हैं जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में इनके पक्ष में काम कर रहे हैं?
3: शुभेंदु अधिकारी का जो पर्सनल जो फैक्टर है वो दो दो बार ममता बनर्जी को हरा चुके हैं
1: जी,
3: पर बीजेपी ऐसा पार्टी नहीं है, बीजेपी एक इंडिविजुअल के नाम पे नहीं चलता है, बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशनली ड्रिवन पार्टी है। जैसे शेखर जी ने बताया कि जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो तो बहुत ही, ये 15 साल में पहली बार नहीं, 50 साल में पहली बार शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। किन को वोट दिया है वो बड़ी बात नहीं है, पर वोट दे सकते हैं सबसे बड़ी फैक्टर थी जो ममता बनर्जी के खिलाफ गया है। वो आजकल रेप मर्डर का असली खूनी जो थे वो तो कभी पकड़ा नहीं गए, तृणमूल को शायद लगा था कि लोग भूल गए हैं, वो कोई फैक्टर नहीं होगा, पर वो बहुत बड़ी फैक्टर थी, लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। पिछले साल मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ, अप्रैल 2025 में जो वायलेंस हुआ, दैट वॉज अनदर लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री, वो भी लोग भूले नहीं है। वक्फ बिल पास होने के बाद वेस्ट बंगाल में मुसलमान लोग जैसे हिंदुओं के घर जला दिए हैं, वो कभी हम सोच भी नहीं कर सकते थे। और ये जो बंगाली अस्मिता, बंगाली अस्मिता जिसको जो मुद्दा बनाए थे ना ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने, कि जो बंगाली बोलते हैं वही इंडियन है, पश्चिम बंगाल के लोग और बांग्लादेशी उनको एक ही कर रहे थे, ये अच्छा नहीं लगा
1: जी, जी।
3: और सबको समझ में आ गया ये क्या हो रहा है, और इस बार का वोट उसके खिलाफ है, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फैक्टर है।
1: और इससे पहले के कार्यक्रम में आगे बढ़े, चलिए सुनते हैं कि विधायक दल की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने और क्या कहा।
4: सबसे पहले मैं दो हाथ जोड़कर जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहाँ पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी, सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
1: मैं किया जी से अगला अपना सवाल करना चाहूंगी कि अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आपकी सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी और कौन सी चुनौतियां हैं जिनका आपकी सरकार को अगले कुछ सालों में सामना करना पड़ेगा?
0: हमारे सामने चुनौतियां तो बहुत है, क्योंकि सिर्फ ये 15 साल नहीं, इसके पहले 3.5 दशक का, मतलब करीब 50 साल का जो अपशासन पश्चिम बंगाल में हुआ है, जब सारा देश आगे बढ़ रहा था, हम बंगाली हम लोग पीछे जा रहे थे। तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, भारी इंडस्ट्री नहीं हमारे राज्य में, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा, तो जैसे हमारे संकल्प पत्र में हमने वादा किया है कि पहले जो मंत्रिसभा मंत्रिमंडल की बैठक होगा उसमें आयुष्मान कार्ड सबके लिए हम लोग अवेलेबल करेंगे, वो हमारे सबसे जो पहला वादा वो है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ये प्रतिश्रुति देके गए हैं, पहला बात। दूसरी बात ये कि 45 दिन के अंदर जो 7th पे कमीशन पश्चिम बंगाल का जो पेंडिंग है वो बैठाएंगे, क्योंकि राज्य सरकारी जो कर्मचारी है उनका डीए इतने सालों से पेंडिंग है। ममता बैनर्जी जी वो जनता के पैसा, टैक्स की पैसा खर्च करके वो डीए बंद करवाने के लिए कहां कहां नहीं गई, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हर जगह चली गई। तो ये हमारा वादा है, ये पूरा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जॉब क्रिएशन, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जॉब नहीं है
1: जी।
0: वो आप माइग्रेंट लेबरर बोलिए या व्हाइट कॉलर जॉब, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कौन जॉब करेगा। तो वो हमको वापस लाना है, हमारा बंगाल के जो टैलेंट है, इतने अच्छे अच्छे जो लोग हैं उनको वापस बंगाल में लाना है, जॉब क्रिएशन है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो अर्थनीति है, जीडीपी है, बहुत नीचे, सारा देश के मुकाबले इतना बड़ा राज्य है उसके मुकाबले बहुत नीचे चला गया है। तो चुनौती तो बहुत सारे हैं और एक दिन में तो नहीं होगा, ये तो कोई एक महीना में भी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जो हम एक एक कदम हर दिन के लिए हमारे लिए चैलेंज होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी सरकार पे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बार बार बोल के गए हैं कि डबल इंजन की सरकार, और आपको तथ्य मैं दे दूं कि ऑलरेडी केंद्रीय सरकार 2,900 करोड़ रुपए का एक मूव जो है हमारे यहाँ ग्रांट किया है कि पश्चिम बंगाल के जो हम लोग पीछे रह गए थे उसको थोड़ा सा पैरिटी लाने के लिए ये राशि नव निर्वाचित पश्चिम बंगाल सरकार को दी जाएगी।
1: शिखर जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? जब हम चुनौतियों की बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो अगली जो सरकार है उसके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी?
2: बिल्कुल अनुभव जी, वहाँ पे सबसे बड़ी बात है 15 साल के बाद सुशासन का शुरुआत होगा
1: जी,
2: यानी गुड गवर्नेंस। और प्रधानमंत्री की तरफ से यही बड़ी गारंटी है कि जो जो केंद्र के बड़े कार्यक्रम जो है, पीएम आवास योजना हो, आपके जल जीवन मिशन हो, जितने कार्यक्रम को जो ममता ने इम्प्लीमेंट नहीं किया और इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया, या आयुष्मान भारत हो, ऐसे कई कार्यक्रम को राजनीतिक कारण से वहां पर रुकावट डाले थे ममता जी ने, वो सारे चीजें अभी हट जाएगा। अब बंगाल भी राष्ट्रीय जो एक जर्नी चल रही है विकसित भारत के लिए उसमें शामिल हो जाएंगे, खास करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री। देखिए, एक पैसा भी वहां कोई भी इन्वेस्टमेंट की कोई ये नहीं थी, स्कोप ही नहीं थी, क्योंकि ऐसा एक शासन था, लोगों को डर था भाई पैसा डालो तो पहले टोलबाजी होगी यानी कटबनी होगी। देखिये, पहले से बिगड़ा हुआ था वामपंथी सरकार के समय, 34 ईयर्स जो वहां पे वामपंथी की सरकार, चीजें बहुत बिगड़ी थी, सबको पता है। उसके बाद जब बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश किए, तब उसको विरोध करके ममता ने बड़ा ये छेड़ा कैंपेन, और जिसके वजह से ममता को फिर मैंडेट मिली, ममता ने चीजों को और बिगाड़ा। और आज एक परिस्थिति आ गई है बंगाल में, नौजवान के लिए सबसे बड़ी चीज नौकरी चाहिए, इसलिए आप देखेंगे सारे बंगाल के जो हमारे बच्चे हैं जो शिक्षा लेकर आते हैं बाहर, सबको बाहर जाना पड़ रहा है। ये चीजों पर एक रोक लगेगी, जितनी जल्दी वहां पे इंडस्ट्री की छोटे बड़े जो भी उद्योग शुरू हो सकता है उसका होगा। और सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा एक रूल चल रहा था कि शासन और पार्टी और सरकार पुलिस कोई फर्क नहीं था, सब कुछ पार्टी के दादा तय करते थे और आपस में भी लड़ते थे इलेक्शन के लिए। देखिए, एक चीज बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल की भ्रष्टाचार को भी हमें समझना है, इतने सालों से क्या हो रहा था, क्या भ्रष्टाचार होता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो कोई कमीशन ले लेते, यहाँ पे प्रोजेक्ट तो होता ही नहीं है, या प्रोजेक्ट में जो भी पैसे वो खा जाते थे, और लोक कल्याण के लिए भी जो पैसा खर्चा होता था उसमें भी पैसे खाते थे। तो ऐसी एक हालत बन गया है जो उसको पूरा पूरा खत्म करके, और अभी जो नया गवर्नमेंट बनेगा उसपे आप देखेंगे बहुत चीजें होंगी, और सबसे बड़ी बात शांति कायम हो जाएगी, पॉलिटिकल वायलेंस की बिल्कुल बंद, और तीसरी बात लोगों को एक सुरक्षा महसूस करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है।
1: संचिता जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इस बार तृणमूल कांग्रेस को केवल 80 सीटें ही मिल पाई हैं, जो कि 2021 में उसके द्वारा जीती गई 2015 सीटों के मुकाबले में बहुत कम है, आधे से भी कम है, फिर भी तृणमूल कांग्रेस जो है वो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। तो नतीजों के बाद जो जिस तरह के घटनाक्रम हमने देखे हैं उसे देखते हुए आप राज्य की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और इसकी प्रमुख

0: ममता बनर्जी की भूमिका को किस तरह से देखती हैं?
1: देखिए, ममता बनर्जी तो अभी तक अपनी हार स्वीकार कर ही नहीं पाई, अभी तक अपने आप को चीफ मिनिस्टर बोल रही है, जबकि गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व कर दिया है उसके बाद भी। तो आई थिंक ये बात उनके दिमाग में थोड़ा बैठने में टाइम लगेगा, और जो वो बोल रही है कि वो अभी पूरा भारतवर्ष घूम घूम के बीजेपी को सारे हटाएंगी, उसके बारे में तो क्या ही बोले। तो तृणमूल कांग्रेस से अभी टोन जैसे आ रहे हैं लीडर से, मेरे ख्याल से कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब बीजेपी उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं वो तो बीजेपी की बात है, और कुछ लोग तृणमूल टीएमसी में रह जाएंगे। जितना तक मैंने सुना है कि बहुत सारा टीएमसी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में, जो एक दूसरे से लड़ाई जो चल रही थी, वो सब एकदम बाहर आ रही है, ये और भी बाहर आती जाएगी। हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि जैसे सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत इन्वेड किया था और अमेरिका ने उनको हटा दिया, उन्होंने सारे जो ऑयल वेल था, तेल की खनी, आग जला दिए, तो सद्दाम हुसैन हट जाने के बाद भी वो आग जलती रही। तो ममता बनर्जी भी ऐसा ही कुछ करना चाह रही है।
0: शेखर जी, जो भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह प्रभावित या फिर आप कहिए कि परिवर्तित किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल आज तक पारंपरिक रूप से वामपंथ का गढ़ रहा है, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक जो है, भाजपा की जीत ने उसको किस तरह से प्रभावित किया है?
2: देखिए, बहुत बड़ा फर्क यही पड़ेगा, हमारे राजनीति में सुशासन एक माइलस्टोन बन गया है कि कोई पार्टी की हार या जीत इस ये पे मेजर किया जाएगा, वो लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, किसान के लिए क्या कर सकते हैं, महिला के लिए क्या कर सकते हैं। एक प्रकार से जो राजनीतिक हिंसा पर भी एक बड़ी रोक लगेगी और बड़ी मैसेज जाएगी। आपने सही कहा कि बीजेपी के लिए अपना एक इमोशनल जर्नी है, पहले जनसंघ की जो फाउंडर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके प्रति एक बहुत बड़ा ऑनर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो कल्पना थी सोनार बंगला का, आज उस सपना को साकार करने में पहला कदम है ये।
0: शेखर अय्यर जी, संचिता गुहा और किया घोष, आपने आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुई और पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की जो तैयारियां हैं उसके परिपेक्ष में राजनीतिक गतिविधियों और चुनौतियों पर हमसे बातचीत की, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

0: दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को शालिनी का नमस्कार।
1: आपकी खूबसूरत आंखों में समा सकता हूँ क्या? मैं अंदर आ सकता हूँ?

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या है सितारों को झुका सकते हैं आप।

0: मौसम सुहाना है, दिलकश जमाना है,
1: फिर भी उदासी है
0: ये रात, प्यासी है।

श्रोतो, मोहब्बत में सबसे हसीन चीज क्या होती है? वफा, एक दूसरे का साथ, शायद नहीं। मोहब्बत में सबसे हसीन चीज होती है इंतजार। जब दिल ये जानता है कि वो आएंगे, बस इस यकीन पे सदियों का इंतजार भी कम लगता है। एक रात वो गया था जहां बात रोक के, अब तक रुका हुआ हूं वहीं रात रोक के।

इंतज़ार में उम्मीद होती है, ख्वाब होते हैं और ढेर सारी कल्पनाएं होती हैं। कहीं वो आके मिटा न दे इंतज़ार का लुत्फ, कहीं कबूल न हो जाए इल्तिज़ा मेरी।

इंतज़ार अधूरापन नहीं है, ये तो इबादत का हिस्सा है। जहाँ मैं तुम्हें खुद से ज़्यादा महसूस करती हूँ, तुम्हारी यादों की खुशबू इन हवाओं में है और तुम्हारी बातें इस खामोशी में। आहटें सुन रही हूँ यादों की, आज भी अपने इंतज़ार

वो घड़ी की सुइयों का धीरे से चलना, वो रास्तों का बेमतलब ही तकना, दिलों का हर आहट पे जोर से धड़कना और फिर एक ठंडी आह भर के रह जाना, ये सब अधूरापन नहीं वफा का सबूत है। हमें भी आज ही करना था इंतजार उसका, उसे भी आज ही सब वादे भूल जाने थे।

इंतज़ार हमेशा दर्द नहीं देता, कभी कभी इंतज़ार इंसान को खूबसूरत बना देता है। बीज भी तो मिट्टी में इंतज़ार करता है बारिश का, फूल भी इंतज़ार करते हैं बसंत का, इंसान इंतज़ार करता है एक अच्छे वक्त का, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि अंधेरी रात चाहे जितनी लंबी हो सुबह ज़रूर आएगी। इस उम्मीद पे रोज़ चराग जलाते हैं कि आने वाले बरसों बाद भी आते हैं।

तो इंतज़ार कीजिए लेकिन मुस्कुराते हुए, सपनों का इंतज़ार कीजिए लेकिन मेहनत के साथ, किसी का इंतज़ार कीजिए लेकिन खुद को मत भूलिए, प्यार का इंतज़ार कीजिए लेकिन अपने आप को खोकर नहीं, अच्छे वक्त का इंतज़ार कीजिए लेकिन आज की मुस्कान को मत खोइए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
3: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
2: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
3: वही दोपहर 1 बजे।
2: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
0: थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
5: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
4: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
5: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
4: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। संवैधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
4: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
7: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
4: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। PMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट 1 महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
4: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
5: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिदाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले पांच वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
6: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली

0: प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

लता मंगेशकर का गाया हुआ ये अनाड़ी फिल्म का गीत था। गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में फिल्म मधुमति का गीत आप सुन रहे थे। रचना शैलेंद्र की, संगीत सलिल चौधरी का। और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर का गाया किस्मत फिल्म का गीत। गीत को एस एच बिहारी ने लिखा है और ओपी नैयर ने संगीतबद्ध किया है।

महेंद्र कपूर का गाया हुआ ये किस्मत फिल्म का गीत था। गीत लिखा एसएच बिहारी ने और संगीत से सवारा ओपी नैयर ने। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था अनामिका। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत था और इस गीत का संगीत तैयार किया राहुल देव बर्मन ने। फरमाइश आप सबकी थी सर्वानिया महाराज नीमच से, गोविंद पाटीदार, ममता, पूजा, मधुसूदन, यशस्वी, हंसवी पाटीदार। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। बीआर राश्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज, सुवती, आपका खत हमारे पास सोमारी नगर इंदौर से आया। कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति और शिवानी श्रीमाली। वंदना नगर इंदौर से स्वाति बाला खर्चे, परी खर्चे, ललिता, बबीता, शोभा, पूजा रघुवंशी और नारायण भाऊ खर्चे। इसी गीत की फरमाइश का खत हमें मिला मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण गरोवर और रमेश मिगलानी का। और अहिल्यानगर शेगांव से बाबा साहब कंगणकर, साकरबाई कंगणकर, परमेश्वर, रोहिणी, श्रावणी, ईश्वरी और कंगणकर परिवार।

किशोर कुमार के स्वर में फिल्म घर का गीत आप सुन रहे थे। गीत लिखा गुलजार ने, संगीत राहुल देव बर्मन का। गीत की फरमाइश भेजी धर्मपुरी जिलाधार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी ने। पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश सहजवानी, हनी जिम्मी, दियाना अमिता और जियांश मटाई। राजपुर से घीसु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता स्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे। रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक। बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र, अंजू और मोहित नारंग। शास्त्री नगर खंडवा से रमेश पंचोली, बीनू देवी, प्रकाश, उर्मिला, दीपक, दीपिका, नंदिनी, निखिल और गौरांश पंचोली। मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति क्षीरसागर, सतीश सराफ और जगदीश तांबट। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवि श्रीवास्तव। महुनाका से प्रिया, विकास नाहर। अनुराग नगर से मुकेश। नंदानगर से धीरज, प्रीति, खुशी, स्वप्निल, संजिल, अजय, नीना, सानवी और परिवार के सदस्य। पितरामल उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मुणत। मक्सी से दयाराम जाटव, चैन सिंह आरोल, नानूराम कांसोटिया, नंदकिशोर कांसोटिया और दीपक कांसोटिया। दुबे का बगीचा इंदौर से अग्रता रायकवार, कृष्णवी, सरिता, नितिन, महेश रायकवार, अहिल्याबाई रायकवार और समस्त रायकवार परिवार।

लता मंगेशकर और मुकेश का गाया ये कभी कभी फिल्म का गीत था। गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत खयाम का। गीत की फरमाइश आप सबने भेजी। नावदाखेड़ी जिला देवास से प्रेम नारायण जाट, संजय जाट, पवन सिंह, माही, सार्थक और आदित्य जाट एवं परिवार के सभी सदस्य। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासोरे। भूरसुदा से भगवानी, संतोषी, गजेंद्र, चिराग, चंद्रप्रकाश, नेहा सेन। पोफली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार, वंदना धुले, अर्पिता, यशोदाबाई, धम्ममित्र, पीबी सिंगणकर और समस्त सिंगणकर परिवार। भड़बूंजी जिला आगर से रघुनाथ मालवीय, मंजू, बबीता, राधा, आयुष और ओम प्रकाश। मोहत जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक, परवेज, बिटिया रोजमीन, तैमूर तड़वी और भैया तड़वी। राजेंद्र नगर गंजबासुदा विदिशा से भागचंद साहू, राज, करिश्मा साहू, प्रेमबाई, अजय, शनी शर्मा और राजेश साहू। जाफराबाद जालनाहुन से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, साक्षिताई, जगुताई, संचित, प्रथमेश, सोहम, प्रणाली, सानवी और समस्त राजे जाधव, देशमुख और वायाल परिवार। शांतिपुरा से सुभाष गोडिया, नजूम भाई बोहरा, ललित जाधव। राजाराम नगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, राकेश महाजन, चीकू और सल्लू। और सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार।

लता मंगेशकर के स्वर में मेरे हमसफ़र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ था और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। गीत आप सबकी फरमाइश थी। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। सरावत से कालू सिंह बड़ोले, सीताराम बड़ोले, हीरालाल, तेज सिंह डावर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा, कंचन और भावना। सुदामानगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा भंडारे, समता, चित्रा और निशा। शांतिपुरा देवास से सुभाष गोड़िया, लक्ष्मीपुरा देवास से नवीन वर्मा, मीनू वर्मा, विराट वर्मा, राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, कैलाश महाजन। मोहसिनपुरा से जमील खान, असलम शेख और फुरकान, मुस्तफ़ा जकी और अनिल। मूसाखेड़ी इंदौर से रवि डामोर, बबीता डामोर, संदीप दुर्गा, अभिषेक, गौतम, विवान और समस्त परिवार। गुमाश्तानगर इंदौर से अनिल कवचाले, सबीहा, फजल, सीमा, पूजा, नेनावा, सुषमा, स्मिता, श्वेता, राखी और मीनू। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। खमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गोगलानी, मीनाक्षी तिवारी और सुनील शर्मा। मंदसौर से भगत राम चौहान, कृष्णपाल, मयंक और प्रीति चौहान। और बेमित्रा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा।

हिमालय की गोद में। इस फिल्म का गीत आपने सुना। गीत को मुकेश ने आवाज़ दी थी। कमर जलालाबादी का लिखा हुआ गीत, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। और फरमाइश आप सबकी। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय, राधिका, तुषार तामुरिया, डॉली, बेबी पूजा और प्रभा देवी तामुरिया। बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश और अंजलि सारवा। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा। छबड़ा से नूर बानो, सलमा बानो और सिमरन। धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे। बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय। नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। गाजीपुर से अवधेश, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, पथिक और सोनाली। खोरडावाड़ी हिंगोली से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान, सारिका, सुरेखा और सोनम बोड़के। पाठरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बरांडे, प्राची, अनुश्री और धनुश्री बुरांडे।

और वसमत जिला हिंगोली से रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत टिक्कू, रमाबाई सुरेंद्र, मयूरी सुरभि, मंजुषा और गौतम इंगोले। निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श और बेगम राबिया। अशोकनगर बसमत से पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोकरे। झुमरी तलैया से देव इंगोले, छकुली छोटू दादा और आरडी इंगोले।

किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सफ़र का गीत आप सुन रहे थे। गीत इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। फरमाइश आप सबकी। अन्नपूर्णा रोड इंदौर से सुरेश मंगवानी, लक्ष्मी, शोभा, निर्मल, ज्योति मंगवानी, नेहा मंगवानी, गोपाल, हेमंत, राहुल, समस्त मंगवानी परिवार। घंटागौर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। सरावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा कटारिया, कृष्णा विराज, अर्णव और काव्यांशी कटारिया। ग्राम लोहारी जिला खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल, शीला और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी महिमा और नीतू वैद्य। इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतासा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां।

लता मंगेशकर का गाया ये मौसम फिल्म का गीत था। गीत गुलजार का लिखा हुआ, संगीत मदन मोहन का। फरमाइश आप सबकी। मालीपुरा बिजलपुर से मोहनलाल चौहान, ललिता, प्रियंका, पंकज, सोनू, नितिन, राहुल, गुंजन, मुस्कान, अदव्या, अंकित, सलोनी, लड्डू, कान्हा, ऋषि और हेमंत चौहान। सुंदरखेड़ राजमाता नगर महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार। जरुड़ वरुड़ से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे, चंद्रप्रभा वाड़ोदे। चापाखेड़ा खाचरोद से प्रेम शंकर शर्मा, पूजा शर्मा, राधेश्याम, कुमकुम, मनोरमा, राम गोपाल शर्मा, लक्की शर्मा, विवेक और राधा प्रजापत। धानोरा विटाली से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन, प्रेम, श्रेया, श्रुति पाटिल। जलगांव जामोद से उषा काटे और संतोष काटे। दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। जलगांव सोमनाथ जालना से नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश, कार्तिक, अश्विन। वैष्णवी जगदाले, हरसुल सावंगी, औरंगाबाद से वैभव गौरव लोखंडे, भावसिंहपुरा से मेघराज युवराज कोलते, रिंधुरा देवी, रुद्र कोलकर, वालकुणी, बदनापुर से।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में साथ साथ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शब्द रचना जावेद अख्तर की, संगीत कुलदीप सिंह का। इस गीत की फरमाइश आप सबने भेजी राजापेट अमरावती से दिलीप लकड़े, सुरेखा सारंग, धनश्री लकड़े और शुभम लकड़े, शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, ऋतिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और समस्त राजावत परिवार। मालेगांव से दत्ता घायाल, सुनीताबाई घायाल, सानिका और गजानन घायाल। जौनपुर लपरी ग्राम मुंडेला से चंद्रा कुमारी, चांदनी कुमारी, आकाश कुमार और कन्हैया लाल और रीता देवी। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनिया करमरकर। और इचलकरंजी महाराष्ट्र से वसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश, आदित्य और मिंताश हजारे। मधुबनी से राजकुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रविराज, गौरव कुमार, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता, एम के गुप्ता और मित्रगण। छपरा दालदरी बाजार से संजय गुप्ता, संजीत, सर्वजीत, सुधांशु गुप्ता। सीतामढ़ी महावीर स्थान से प्रभात, अरविंद, मंटू, निक्की गुप्ता। और फुलवारी शरीफ पटना से अविनाश चंद्र, ज्योति, जानवी और पीहू।

किशोर कुमार का गाया हुआ ये नमक हराम फिल्म का गीत था। गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया राहुल देव बर्मन ने और फरमाइश भेजी आप सबने शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से वी एस महोबिया और कमला महोबिया, रामगंज से विजय महोबिया, कविता संजय महोबिया, नंदिनी, विशाल, विवेक, सोनू मोनू, डॉली, देवराज महोबिया और भैयू दादा, कालका से सुभाष चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा, हिंगड़ी से जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज धाकड़ और शिवांगी धाकड़, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशनी कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, संस्कृति नगर इंदौर से बबलू केशरी, छाया केशरी, हर्ष मिताशी और सोमानी बाई केशरी, और अम्बेडकर नगर अकोला से प्रकाश खेड़कर, मीराताई, आरती, संतोष, पूजा और समस्त खेड़कर परिवार। और श्रोताओं, अब आज का मनभावन कार्यक्रम समाप्त करने की शालिनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप मन भावन कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में लीजिए श्रोताओं, आज सुनिए बसंत काबरा का सरोद पर बजाया राग झिंझोटी, विलंबित गत रूपक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं दिलशाद अहमद खान।

0: रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा।